0: our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
1: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
2: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
3: अपने मकान की next month closing है. कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, Brampton TV and Appliances, जहाँ special sale चल रही है. टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
3: दैट्स वंडरफुल.
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैकलॉगलन. टेलीफोन 9054502828 और विजिट brampton appliances.ca.
5: SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ पेप एंड मार्टिमोर. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए. ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज. इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज्ड टायर्स भी अवेलेबल हैं. ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी. मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782. 416-466-8782. टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू. कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से रब्ता कीजिए. शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं. इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं. मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल. कॉल शिराज हुसैन 6472714147. 6472714147. आवाज वो जादू सा जगाती हुई आवाज, आवाज जो रूह के तारों को छेड़. जी हाँ, ये आवाज है उस्ताद राहत फतेह अली खान और शाह जमान खान की, जो आ रहे हैं आपके शहर टोरंटो में. एट प्रेस्टीजियस स्कोशिया अरेना ऑन 27 सितंबर, संडे 7 PM. फॉर टिकट्स लॉग ऑन टू ticketmaster.ca. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल वाजिद मलिक 416-827-3333. ऑफिशियल मीडिया पार्टनर रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एंड टोरंटो 360 TV. प्रेजेंटेड बाय ट्रू साउंड लाइव. अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं. आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं. तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं. इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 डिक्सी रोड में सिसागा. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
6: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
7: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
6: 26 locations across Canada.
8: For more information, visit rajdhanisweets.ca.
9: Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit MWCanada.org.

0: तलावट्टी को कॉल मिलाएं।
1: तलावट 6472957861 Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team. तलावट 6472957861 तलावट 6472957861
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेज पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ 6887 Dixie Road, Mississauga. For more information and booking, call Mr. Alam 437-425-2500 or Brompton May Queens Manor Event Center, 2 Auction Lane, Brompton. For more information, call 416-814-3600.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
4: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Students mein rabte ke number 416-593-0003 aapki live calls lenge students mein aap call kar sakte hain 416-593-0003 aaj jo ahem tarin mauzuat rahe hain unme sabse ahem mauzu to Imran Khan sahab ke hawale se hi hai Imran Khan sahab ko Supreme Court ne ilaaj ke liye Al-Shifa Hospital muntakil karne ka jo hai wo hukm diya hai aur is duran ye bhi kaha gaya ki family appeal hai ki udharan media जो है कोई बात ना करें और अगर ऐसी सूरत हाल बनी तो हुकूमत ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये फैसला वापस भी ले सकती है दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से आजम नजीर तारड़ साहब जो हैं वो लग ऐसा रहा है कि वो इसको चैलेंज करने जा रहे हैं अपील जो है वो कोर्ट में जो है वो करने जा रहे हैं उनका ख्याल ये है कि किसी सरकारी हॉस्पिटल में जो है इमरान खान साहब को जो है उनका इलाज जो है किसी सरकारी जो है हॉस्पिटल में जो है वो होना चाहिए और तीसरी खबर यह है कि बाबर आजम जख्मी हो गए हैं अब वो पहला टेस्ट जो है वो नहीं खेलेंगे लेकिन शान मसूद जो है वो फिट हैं वो टेस्ट मैच जो है वो खेलेंगे तो चलिए कॉल्स कर सकते हैं आप स्टूडियोज का नंबर नोट कर लें 416-593-0003 5415 हमारे पहले कॉलर हैं खुश आमदीद कहेंगे जी सर आप ऑन एयर बात कीजिए 5415 चॉइस साहब
5: जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू
4: वालेकुम सलाम सर
5: मीडिया टाक जरा जेल देके तमाशा कर दो इन बंद करो इमरान खान की पहला बीमारी का इलाज करा लो उस भी सियासत कर लो उस तो बाद जिस शुरू तो खबर पहला भी आई है तो रिपोर्टिंग जी उन्होंने फौरी तौर पर हूं ही हफ्ता मुंतकिल कर दिया गया हालांकि ऐसी कोई गल नहीं है उन्होंने कहा कि मतलब एक अपना दो दिन के चेक करो पहला बोर्ड बनेगा
4: ठीक है
5: हूं बोर्ड किन्हें बनाना पटी साहब
4: नहीं गवर्नमेंट बनाएगी लेकिन उन्होंने डॉक्टर्स भी कहे नाल उन्होंने डॉक्टर फैसल भी होंगे और उन्होंने सिस्टर
5: नहीं नहीं डिसीजन देखो
4: शामिल रखे अपडेट कर दे रहे मतलब ठीक राय देनी होंगी सर फैसला तो नहीं करना होता ना किस चीज का
5: अपनी राय देने
4: ठीक है
5: ਇਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ
4: ਜੀ।
5: ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦਾ ਤੇ ਗੌਰ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਗੌਰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ? ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ ਇਹਨੂੰ ਜਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਦਲੋ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੇ ਕਹੋ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁੱਠੇ ਕਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ
4: ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ,
5: ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ
4: ਜੀ ਜੀ।
5: ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਜਾਂਦਾ।
4: ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
5: ਤੇ ਚਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤੇ ਚ ਵੀ ਉਂਝ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਅਸੂਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ?
4: ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ।
5: ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ
4: ਜੀ।
5: ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਲ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਨਾ।
4: ਠੀਕ ਹੈ,
5: ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵੇਖੋ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨੇ ਨਾਸਰ ਬੱਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ,
4: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਆਜ਼ਮ ਨਜ਼ੀਰ ਤਾਰੜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਇਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।
5: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮੀਡੀਆ ਟਾਕ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
4: ਠੀਕ ਹੈ,
5: ਗੌਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਵਿਨ ਵਿਨ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ,
5: ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਵਾਸ਼ੀ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸੀ? ਇਹ ਤੇ
4: ਇਹੀ ਦੋ ਹੀ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖੈਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਇਤਨਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ।
5: ਚਲੋ ਠੀਕ
4: ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲਰਾਈਟ ਆਲਰਾਈਟ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸਰ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਚੌਧਰੀ ਅਕਰਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ, 5794 ਆਪ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰ।
6: ਅਸਲਾਮੁ ਅਲੈਕੁਮ
4: ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਸਰ।
6: ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇ ਤੋ ਕੱਲ ਹੀ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅਗਰ ਅਦਲੀਆ ਕਹਤੀ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਾਬ ਉਨਕੋ ਹਾਸਪਿਟਲ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਤੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਆ ਆਜ ਯੇ ਅਦਲੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਆਜ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਦਲੀਆ? ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਯੇ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਵਾਲੇ ਤੋ ਕਹਤੇ ਥੇ ਕਿ ਅਦਲੀਆ ਬਿਕ ਗਈ ਹੈ, ਡਰਾਈਵ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੇ ਹੈ, ਹਮੇ ਇਸ ਸੇ ਕੋਈ ਤਵੱਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੋ ਯੇ ਕਿਆ ਆਜ ਅਦਲੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ?
4: ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ।
6: ਨਹੀਂ ਆਪ ਕਿਆ, ਆਪਕੇ ਕਿਆ ਰਾਏ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਸ ਮੇਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੇ ਹੈ, ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਂ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਮ ਕਿਸੀ ਕੇ ਨਾ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ ਖਿਲਾਫ।
4: ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬਾਤ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ
6: ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਰਾ ਬਲਾ ਕਰੇ। ਬਾਤ ਬੱਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੇ, ਯੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਯਾ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਕਾ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਮੌਕਫ ਥਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੋ ਤੋ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ, ਵੋ ਬਿਕਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋ ਮਰ ਜਾਏਗਾ।
4: ਬਿਮਾਰ ਤੋ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਵੋ ਤੋ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਸਭ ਕੋ
6: ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਤੋ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਨਾ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀ ਟੀ ਆਈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਕਾ ਫਿਰ
4: ਚਲੇ ਵਕਤ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਝ ਸਿੱਖਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੀ ਬਾਤ
6: ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਬਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਹਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਤੇ ਥੇ ਯੇ ਜੋ ਬਾਤ ਆਜ ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾ ਜਿਸ ਪੇ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਹੈ, ਯਾ ਇਨਕੀ ਬਹਿਨੋਂ ਨੇ ਯਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਮਨ, ਅਬ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਸ਼ੇਰ ਫਰੀਦੀ ਨੇ ਕਿਆ ਤਕਰੀਰ ਵੀ ਕੀਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾ ਜਾਏਗਾ।
4: ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੋ ਯੇ ਕੁਛ ਗਾਰੰਟੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੋ ਅੱਛੀ ਬਾਤ।
6: ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਾਤ, ਮੇਰਾ ਆਜ ਸੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਜ ਸੇ 10 ਸਾਲ ਕੀ ਮੇਰੀ ਬਾਤੇ ਸੁਣ ਲੇ
4: ਜੀ,
6: ਯੇ ਬਾਤ ਅਬ ਵੀ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਤਨੇ ਡਰਾਈਵ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਆਜ ਵੀ ਇਤਨੇ ਡਰਾਈਵ ਹੋਈ ਹੈ। ये बात ऐसी नहीं है कि अदलिया पहले मतलब 3 साल सोई हुई थी तो आज वो उसकी ज्यारत जाग गई है या आजाद हो गई है, ऐसी नहीं होता। ये पाकिस्तान का ये असूल है, कानून है कि ये हमेशा, जब आपको पता है कि फैज हमीद भी क्या कि भाई वो तो इस तरह भी करते हैं कि भाई नवाज शरीफ का कोर्ट में इस्लामाबाद में आ रहा है तो भाई आप क्या करोगे, उसने कहा भाई मैं तो कानून के मुताबिक फैसला करूंगा।
4: ठीक है,
6: तो उन्होंने कहा भाई इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो बात सिंपल करने की है, ये हाँ साहब ने आज जो झुक के ये अपने लिए मसले से ये अपने लिए बेहतरी पैदा की है, ये
4: पहले गवर्नमेंट अगर करती है अपील करती है कि मॉडिफाई की, उनका ख्याल है कि सरकारी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, कैदी सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं तो
6: देखें भट्टी साहब इसमें तो देखें अलशफा में क्या पड़ा हुआ है,
4: आंख हाँ तो आंख का ही मसला है ना सर, पहले तो आंख का मसला है तो उसको सही करना तो है ना, बस स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए ना।
6: नहीं भट्टी साहब लेकिन उधर तो ब्लड प्रेशर और आगे
4: नहीं वो उसके साथ ही एसोसिएट हो जाते हैं ना सर, एसोसिएट हो जाते हैं।
6: देखिये ये बात आप इस तरह कर लें कि ये एक कम्प्रोमाइज किस्म का डिसीजन आया है कि भाई इनको ठीक है उधर जाने दे, और ये कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि भाई अब हो सकता है कि पीटीआई सूबे बनाने में भी और एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को और पीपल्स पार्टी को थोड़ा सा यानी बैकफुट पे रखकर वो अपना काम भी निकलाना चाहती है, और उसने एक गेंद फेंकी है कि भाई शफा में इनको ले जाओ और ये काम थोड़ा सा अगर इनसे निकलता है तो निकलवा लें। लेकिन सूबों के बारे में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ये कत्ताने नहीं मानेंगे, ये मेरे बात लिख लें
4: सूबे तो सूबे या सूबे या एडमिनिस्ट्रेटिव जो यूनिट्स हैं वो तो
6: बनेंगे।
4: मुल्क की जरूरत है, इतने बड़े बड़े सूबे नहीं कंट्रोल हो रहे, चीजें नहीं हो रही
6: नहीं हो रहे, लेकिन भट्टी साहब भिन्न होने की जरूरत है, उसमें आप 10 सूबे 50 भी बना ले, सूबों का तो इससे तल्लक ही कोई नहीं है, वो पाकिस्तान में क्या करते हैं तो का लाइसेंस लेने के लिए आप अप्लाई करें और आपको तरह की शार्ट का मिल जाएगा। ये भी एस्टेब्लिशमेंट हर दौर में इस तरह करती है, लेकिन अभी ये टू अर्ली टू से समथिंग है, अभी देखे क्या मामला आते हैं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ अंडरग्राउंड आप जिस तरह बता रहे हैं ये अभी बहुत अर्ली बातें हैं, तो इनको देखते हैं क्या होता है। लेकिन हमें खुशी है, देखे अदलिया ने कहा है तो नवाज शरीफ को भी जिस तरह अदलिया ने कहा था कि इनको बैग भेजे, तो मैं तो कहता हूँ ये बात पीटीआई वाले सुन लें कि ये आज इतना हुआ है, कल को हो सकता है वो बाहर भी चले जाए, तो ये इनका ही बयानिया इन जमीन बहुत होगा कि नहीं भाई वो तो बीमार भी नहीं होगा। और हाँ साहब की अगर आप चला सकते हैं तो आप लोगों को बता दें ये क्या कहते थे कि ये जब जेल जाते हैं तो बीमार हो जाते हैं और यह करते हैं, तो आज फिर बीमार होकर ही उधर गए हैं ना।
4: ठीक
6: है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, मुल्क को चलाना चाहिए, बैठना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए जिससे मुल्क आगे जाए।
4: ठीक है सर,
6: को छोड़े सियासी पार्टी आपस में बैठे मिल बांट के बात करने क्या मुल्क को जरूरत है, समझाए अगर उनके साथ ही खेलना है तो फिर ये तो
4: ठीक सर। थैंक यू मलिक,
6: थैंक यू वेरी मच सर, अल्लाह
4: हाफिज। 8156 सर आप ऑनर है, 8156
7: हेलो
4: जी जी सर।
7: हाँ जी, देखिए आज का फैसला खुशहाल है और उनको हॉस्पिटल उनका इलाज होगा, सबसे पहले तो डायग्नोज होगा भाई प्रॉब्लम क्या है, इलाज होगा, उनकी फैमिली मुतमईन है, तो बहुत अच्छा फैसला है
4: जी जी।
7: मैं तो ये कह रहा हूँ
4: जी बिल्कुल।
7: तो फिर अदालत ने भाई आप डॉट कनेक्ट करें ना, सोहेल अफरीदी का 1 हफ्ते पहले इंटरव्यू मेन मीडिया में प्राइम टाइम में चल जाना, कोई वहां तो कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता था, वो चलाना, उसके बाद वो जो जमात इस्लामी के हैं हाफिज नईम रहमान वो लाहौर में धुआंधार तकरीरें कर रहे हैं, किसके खिलाफ कर रहे हैं, पीपल पार्टी और गवर्नमेंट के, ना पुलिस हरकत में आई ना कुछ आई, तो ये सब सोची समझी स्कीम
4: तो आप मतलब कह रहे हैं डील हो गई है,
7: डील नहीं ये फैसला जो बेंच बनाता उसी वक्त ही लोगों ने कह दिया था, यह बात जजों का बेंच है तो फैसला कुछ फेवर में आने की है,
4: ठीक
7: तो पीछे एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है, कुछ जज तो सामने रख के फैसला कराया, लेकिन पीछे फैसला एस्टेब्लिशमेंट का।
4: ठीक हो गया।
7: एक और खबर जो एक एंकर ने की
4: जी,
7: कि दो दिन पहले तुर्की का चैनल है टीआरटी, वहाँ खबर चला दी गई थी हुकूमत के जराये से कि इमरान खान को जेल से बाहर आ जाएंगे बहुत जल्द जो है।
4: ना सर, वो फेक न्यूज होती है, वैसी जो न्यूज होती है वो तो कितनी चीजें चलती हैं, वो ऐसी न्यूज होती है, मतलब बाहर वालों को क्या पता कि यहाँ क्या हो रहा है। नहीं, वो तो ऐसी न्यूज चलती रहती है। नहीं सर, नहीं है ना, पहले कितनी बातें रहती हैं कि जी तुर्की के सदर ने कहा कि हम नहीं आएंगे, ये होगा वो, वो नहीं, ये फेक न्यूज होती हैं। जो ऑथेंटिक यही न्यूज हैं कि आपकी बात में वजन है कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जाहिर एस्टेब्लिशमेंट की रजामंदी से ही ये सारा कुछ हो रहा है, ये बात दुरुस्त है। जी बिल्कुल दुरुस्त, ठीक। 18वीं तो वापस जाएगी अब,
7: 28वीं
4: जी बिल्कुल ठीक है। ठीक सर, थैंक, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इसहाक मलिक साहब आप ऑनलाइन हैं सर, इसहाक मलिक साहब आप ऑनलाइन हैं, बात कीजिए। इसहाक मलिक साहब,
8: अस्सलाम वालेकुम।
4: सलाम जनाब
8: जी, मैं बस ये कहूंगा इमरान खान से, जो उनको जो अदालत ने जो फैसला दिया है, तो हम ये क्यों भूल जाते हैं कि बाकी सबके साथ भी तो यही चीज
4: होती है, ऐसे ही हुआ है सबके साथ बचपन में, सब है ना, माजी में ऐसे होता है, ये भी होगा।
8: सकता कि आप ये बोलें कि इनको क्यों अदालत नहीं और ये हो गया और वो गया, भाई तो ये तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है।
4: हाँ, वहाँ सब पहले अदालत जेल में जाते हैं, फिर अस्पताल में जाते हैं और उसके बाद फिर अल्लाह करे।
8: तो ये चीज है, अल्लाह ताला सेहत दे, जितने भी शाहजादान है, सब पार्टी सब मुसलमान है, सब पाकिस्तानी है,
4: बिल्कुल ठीक,
8: तो सबके लिए दुआ करनी चाहिए। और दूसरा ये कि जो सुबह का जो है वो तो बनना ही चाहिए भाई, क्योंकि मुल्क की आबादी देख लो आप, शहरों की आबादी देख लो, आपके पास डैम नहीं है, आपके पास तो हर चीज को इन सियासी पार्टियां रहे कौन सी गई, अब ये चाहे वो नू लीग हो या पीपल्स पार्टी हो या कोई भी हो, तो इन सबको मिल बैठ के मुल्क की आने वाली नस्लों के लिए सोचना होगा। ये नहीं है कि मेरा बेटा आएगा या मेरी बेटी आएगी, ऐसा नहीं है, असल में सूबे बनने चाहिए आबादी के हिसाब से, क्योंकि जितना कंजस्टेड होते जा रहा है हर शहर, कराची को आप देख लें या दूसरे शहरों को देख लें, तो उनका हाल देख लें आप, तो जब तक ये चीजें नहीं होंगी, जब तक आवाम तक वो चीजें नहीं पहुंचेंगी।

0: वो पब्लिक तो क्या, पब्लिक तो पाकिस्तान की ऐसी खत्म है, वो बिचारी क्या करेगी। इसका जवाब ऊपर वाले ने लेना है। और अभी दो तीन डिक्टेटर मरे हैं। अभी आज जियाउल हक की मेरे ख्याल में मौत हुई थी, क्या हुआ था
1: कल, गुजरे दिन
0: कल गिरा था
1: जी।
0: कितने लोगों ने फातिया पढ़ी है जरा पूछ ले,
1: पढ़ी होगी उनकी फैमिली होगी, बहुत से लोग उनको भी करने वाले होंगे।
0: एक सेकंड, जो नेशनल लीडर्स होते हैं ना, 10-12-15 साल थे वो, पता नहीं आप उस वक्त कितने छोटे थे कितने बड़े थे, हमने तो उनके सब दौर देखे और जो जो करते रहे वो भी हमें पता था। कहने की बात यह है कि जुल्म जो है ना, और इसका प्रॉब्लम, इस जुल्म का प्रॉब्लम वो अल्लाह का इंसाफ ऐसा है कि वो कुछ लोग नहीं भुगतते, वो पूरी कौम भुगतती है। जो पाकिस्तानी जो है हमारे, सबसे अच्छा मुल्क दुनिया का पाकिस्तान है, लेकिन सबसे वर्स्ट लोग वो है जो ताकतवर इस मुल्क पे काबिज, वो किसी भी पोजीशन में। ये जब तक आप अपने मुल्क में इंसाफ, अभी ये सुप्रीम कोर्ट, आप अपने दिल पे हाथ रख के बोले, 3 साल तक इंसाफ करने का आपके पास नहीं था। ये जजों को तो, ये जजों पे केस बनने चाहिए और इनको सजाएं होनी चाहिए। और जिस आदमी ने इनको रोका था, अगर इस्टेब्लिशमेंट ना बोला करे, फौज बोला करे,
1: चले
0: उन्होंने इनको रोका था,
1: चले
0: इनको भी, वो भी काउंटेबल है। वो बोले कि भाई हमने नहीं किया था, ये जज खुद ही बदमाश थे।
1: बदमाश अच्छा लफ्ज नहीं है, अच्छा लफ्ज नहीं, जजेस
0: अच्छा नहीं, नहीं बड़े नहीं, बड़े बड़े
1: आपके फैसले ठीक नहीं किए, मतलब ये कह लें, ठीक है सर।
0: ये कभी भी फैसले हमारे जो कोर्ट, और देखिए इसका खबर, आप और मैं मुल्क से बाहर क्यों है, मुल्क में सुकून ही नहीं है।
1: ठीक हो गया सर, थैंक यू सर जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ जरदारी साहब है, हैदर अली साहब। जरदारी साहब आप ऑन एयर, सर बात कीजिए। जरदारी साहब
2: बैठे साहब,
1: जनाब अली
2: मुबारक हो भाई नून लीग वालों को कि उनका बहुत आला दर्जे का अपोजिशन लीडर पहुंच गया, क्योंकि जरदारी और बिलावल तो बच्चा था, पता नहीं कच्चा था और ये था और वो था।
1: अपोजिशन तो पीपल्स पार्टी ही होगी असल में तो
2: नहीं नहीं वो तो बड़े, मैं आपके कितने दिनों के बाद आज बोल रहा हूँ, मैं तो सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। मैंने कहा इनको बोलने दो अपना सर फोड़ने दो। आज पता चला ना
1: जी,
2: वही एस्टेब्लिशमेंट जिसने हवा दिखा के उसने दोनों पार्टी को ब्लैकमेल किया, उस बंदे को ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं ना ये हिंदुस्तानी, मैं तो ये कह रहा हूं
1: आपको, आपको लगता है कि इमरान खान को वापस लेके आए?
2: लेट मी फिनिश माय पॉइंट। जो हिंदुस्तानी आके कह रहे हैं ना सूबा बनना चाहिए,
1: नहीं ऐसे ना,
2: तो यूपी से भाग के पाकिस्तान आ गए,
1: ऐसे ना कहना प्लीज।
2: नहीं आपके वर्ड में, वो उस एक सूबे की यूपी की 24 करोड़ आबादी है, अंटारियो, न्यूयॉर्क सिटी, सॉरी न्यूयॉर्क स्टेट, ये पाकिस्तान जितने सूबे बनेंगे तो तुम्हारा चाचा मामा वजीर आला नहीं बनेगा, पंजाब से या मानसरा से वजीर आला बनेगा, ये खुश पहनी है।
1: नहीं
2: सर आप रोके नहीं ना, मुझे बोलने दे ना, मेरे वर्ड है ना।
1: अच्छा,
2: मैं अपने वर्डों का खुद जिम्मेदार हूँ ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, आपका सराय की सूबा बनने का लिखा था, बन गया,
1: बनेगा बनेगा
2: का बनना था, बनेगा
1: हमारा सुबह बनेगा, जनूबी पंजाब का सुबह बनेगा,
2: बने हुए ना सब कुछ, आया हुआ फिर भी नहीं बना ना। तो भाई ये मंजन नहीं बेचो, तुम्हारा बच्चा तुम्हारा भाई वजीर आला नहीं बनेगा। एम क्यूम जो कि मेरी ससुराल है, इनकी तो 90 की दिहाई से ये ख्वाहिश है कि कराची को सूबा बनाए, फिर असेंबली में कर्दाज लाए। वी आर नॉट पार्ट ऑफ द पाकिस्तान, वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया और यूनाइटेड नेशन, आओ हमें प्रोटेक्ट करो।
1: नहीं, नहीं, वो तो सर अब चेंज हो गए ना सर, वो एमकेएम बदल गई, ऐसे ना करें, वो एमकेएम बदल गई है, वो एमकेएम पहले और थी अब और है, ऐसे ना करें ना,
2: ये वही है वही।
1: नहीं नहीं अब चेंज हो गया, 2018 के बाद चेंज हो गया,
2: वही तोते बोल रहे हैं एजेंट।
1: अच्छा, नहीं ऐसे ना करें ना, फिर वो बुरा
2: हम आखिरी गोली आखिरी आदमी से लड़ेंगे।
1: चले ठीक, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा एक नाम है कौसर सुसाना, आप बात करना चाहेंगे? मुझे पता नहीं, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा आपका नाम, आप बात करना चाहेंगे या सुन रहे हैं सिर्फ?
3: जी
1: प्लीज गल करो।
3: हाँ जी पटी साहब, एक दिल की ख्वाहिश थी और बहुत जल्द अल्लाह पाक पूरी करने वाला मेरी, वो ये थी कि खान साहब बाहर आन, मैं अपने दोस्तों के मुंह जेड़े जनाब फौज नू आसम नीम नू गाला कर दे सन्ना, इन्हें नारा लाना है और खान साहब ना लुवाना है, मैं बस अनकरीब देखने वाला। अल्लाह पाक खैर रखे।

0: रानी राजधानी।
1: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
1: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com।
0: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AHA se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्टिव रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: आप सुन रहे CMRF 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: don't care.
1: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9. Cashpoint, one-stop shop for all your money transaction needs. Hum provide karte hain honest aur reliable services for all your financial needs. Jaise ki worldwide money transfer, check cashing, currency exchange and buyback gold loan at exceptionally low rates. Duniya ke kisi bhi kone se send or receive money transfers, reliable, convenient and affordable. That's what Cashpoint money transfer services give you. Cashpoint offer karta hai top dollars for your gold. Unwanted or used gold ke liye Cashpoint dega fair market value. Located at 3852 Finch Avenue, Easton, Scarborough, Unit GO3. Aaj hi call karein. 416-284-7000. 416-284-7000.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर. It deserves.
3: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी.
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबैन मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा.
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca.

0: with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं. वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं. विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स. 416-746-3795. एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत. आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड inc.com.

0: आप सुन रहे हैं CMRX 9 मंडे टू फ्राइडे 9 AM टू 11 AM. स्टे ट्यून्ड. कैश पॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स. हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स. दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल. दैट्स व्हाट कैश पॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू. कैश पॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड. अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैश पॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू. लोकेटेड 3852 Finch Avenue, Easton Scarborough, Unit GO3. आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000.
1: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें. वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स. नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ ही ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी. और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री. सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं. और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील, कॉल 9046-1000 for Midland and Sues and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे. जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस.
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक. QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें.
2: 26 locations across Canada.
4: For more information, visit rajdhanisuites.ca.

0: You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.
1: वही डेली रूटीन में फंसे हैं। चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210. Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan Today at Morningside Nissan.
0: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com. You're listening to CMR at 9. For advertising, call 647-220-4834. 647-220-4834. Stay tuned to CMR at 9.

0: Another Dawn clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: क्या एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी. पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट लें. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स द केयर. It deserves.
4: आप सुन रहे हैं CMR at 9, Monday to Friday, 9 a.m. to 11 a.m. Stay tuned.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड inc.com.

0: क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं। टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400 एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड टेपाटो रिसोर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका। हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स। खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ। So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795 एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें asiagoldinc.com।
0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट ले, कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ It deserves.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: Another Dawn Clean with the Dawn Ducks.
1: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
2: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
1: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
2: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
1: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
2: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
1: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
0: Dawn Platinum, the better grease getter.
3: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून-अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लिए एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिबेट भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन फ्लूइड्स एटसेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद अ मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 905-946-1000 for Midland and Sears and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere or visit mymechanicauto.ca.
0: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
0: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca.
6: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: FM.
1: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Ab fikr na karein, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 hours नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर फेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
2: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन? तो जाए एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस. वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस. साथ ही ले 30-point इंस्पेक्शन फ्री. मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही. आज ही अपॉइंटमेंट ले. कॉल रमेश एट 416-990-2462. एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वेयर योर कार गेट्स अ केयर it deserves.
3: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: कैशपॉइंट वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर मनी ट्रांजैक्शन नीड्स। हम प्रोवाइड करते हैं ऑनेस्ट और रिलायबल सर्विसेज फॉर ऑल योर फाइनेंशियल नीड्स, जैसे कि वर्ल्ड वाइड मनी ट्रांसफर, चेक कैशिंग, करेंसी एक्सचेंज एंड बायबैक गोल्ड लोन एट एक्सेप्शनली लो रेट्स। दुनिया के किसी भी कोने से सेंड और रिसीव मनी ट्रांसफर्स, रिलायबल, कन्वीनियंट एंड अफोर्डेबल। दैट्स व्हाट कैशपॉइंट मनी ट्रांसफर सर्विसेज गिव यू। कैशपॉइंट ऑफर करता है टॉप डॉलर्स फॉर योर गोल्ड। अनवांटेड और यूज्ड गोल्ड के लिए कैशपॉइंट देगा फेयर मार्केट वैल्यू। लोकेटेड एट 3852 फिंच एवेन्यू, ईस्टर्न स्कारबरो, यूनिट GO3। आज ही कॉल करें 416-284-7000, 416-284-7000।
1: Another Don clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: क्या आपकी कार अब समर रोड ट्रिप्स के लिए रेडी है? नहीं तो उसकी समर मेंटेनेंस ट्यून अप माय मैकेनिक ऑटो एंड रिपेयर के कार एक्सपर्ट्स को दे दें। वो बदल देंगे विंटर टायर्स टू समर टायर्स। नए टायर्स लें एट अनबीटेबल प्राइसेस और $200 तक की टायर रिपेयर भी, साथ में ब्रेक, सस्पेंशन, फ्लूइड्स एक्सेट्रा के कॉम्प्लीमेंट्री चेकअप भी। और हाँ, विद मंथली टायर स्वीप डील आप जीत सकते हैं $1000 के ब्रांड न्यू सेट ऑफ टायर्स बिल्कुल फ्री। सभी तरह की बॉडी और कोलिजन रिपेयर्स में स्पेशलाइज करते हैं और इंश्योरेंस से डायरेक्ट डील। कॉल 9046-1000 for Midland and Sioux and 416-757-1000 for Midland and Ellesmere, or visit mymechanicauto.ca.
5: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं सीजन? तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस। वहाँ बदलवाएं अपनी सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस। साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री। मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी, पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही। आज ही अपॉइंटमेंट लें। कॉल रमेश एट 416-990-2462। एक्टिव ग्रीन एंड रॉस, वे योर कार गेट्स अ केयर इट डिजर्व्स।
1: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
2: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
3: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
2: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
4: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: Looking for your next ride? Morningside Nissan par ye hai perfect time. Drive away in a brand new Nissan Rogue with an incredible 0% finance for 60 months on all Rogue models. Ji haan, aapne theek suna. 0% financing for 60 months, making it easier than ever to own your dream SUV. Aur fikr na kare, hum sab credit types ke saath kaam karte hain, jisse sabko approve hone ka mauka mil sake. Visit Morningside Nissan today and mile AAG se or call 416-804-2365. Drive home your new Nissan today at Morningside Nissan. क्या आप भी वही डेली रूटीन में फंसे हैं? चलो एक ब्रेक ले लेते हैं. टोरंटो से जस्ट 2 आवर्स नॉर्थ ऑन हाईवे 400, एक परफेक्ट गेटअवे ग्रैंड डिपार्चर रिसॉर्ट नियर पेरी साउंड मुस्कोका. हर सीजन के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन, प्राइवेट बीच, इंडोर स्विमिंग पूल और स्टे इन कोजी सुंदर कॉटेजेस एंड होटल रूम्स. खाना हमारे स्पेशल रेस्टोरेंट में बहुत स्पेशल क्विजीन्स हैं बाय अ ब्रिलियंट इंडियन शेफ. So call today at 705-378-2210, 705-378-2210.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं. वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं. विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स. 416-746-3795. एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत. आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक.
2: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.

0: नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं सनी जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर, मंडे टू फ्राइडे 12 टू 2 पीएम साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो, जहां न्यूज, व्यूज, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट की खबरें होती है बिल्कुल अनलिमिटेड। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055। बाहर का तापमान 24 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 28, एंड मैक्सिमम टेम्परेचर्स विल हिट 26 डिग्रीज टुडे विद अ लॉट ऑफ सन। एंड सनसेट होगा 8:15 बजे, 8:15 PM। टुमारोज टेम्परेचर्स 26 एंड 14, फ्राइडे 25 डिग्रीज मैक्सिमम टेम्परेचर्स देखने को मिलेंगे। और के की आवाज में न्यूयॉर्क फिल्म थी जॉन अब्राहम, कटरीना कैफ, नील नितिन मुकेश की, जिसका गीत है जुनून, जिससे हमने दिन की शुरुआत की है विद अ लॉट ऑफ जुनून। और उम्मीद करते हैं कि आपका जुनून भी जो है पूरे तरीके से पॉजिटिव रहेगा आज। 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है, जहां पर आप अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं ऑल द वे टिल 2 PM। विल कीप प्लेइंग दो सॉन्ग्स जो आपकी रिक्वेस्ट हैं। 2 रिक्वेस्ट मुझे टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए आई हुई हैं, आई विल प्ले दोज एज वेल। कुसुमा को लेकर कल उम्मीद थी कि भाई उम्मीद, क्योंकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो कि कनाडा और US के बीच में कुछ फैसला हो जाएगा, लेकिन नथिंग हैपेंड। 3 मोर डेज के लिए जो है ट्रंप ने 3 दिनों के लिए 50% टैरिफ हमारे कनाडा पर जो है पॉज कर दिए गए। एंड ट्रंप का कहना है कि भाई इट्स ऑल सब्जेक्टेड टू अ डील दैट वी रीच और नॉट। सो फिलहाल US की ये डिमांड भी है कि US बूज शुड बी गोइंग बैक ऑन द शेल्व्स। और प्रीमियर डग फोर्ड कह रहे हैं कि भाई जब तक ऑटो इंडस्ट्री को लेकर ये टैरिफ हटाए नहीं जाएंगे, तब तक वी विल नॉट टेक दैट डिसीजन। मोटरसाइकिलिस्ट राइडर हैज़ बिन किल्ड इन ब्रैम्पटन, ये तकरीबन बोवेड, और इट वॉज इन कलिजन विद अ ट्रांजिट बस। एंड ये हुआ है बोवेड और डिक्सी के इलाके में, ग्रेट लेक्स एंड बोवेड के इलाके में, जहां पर एक मोटरसाइकिलिस्ट जो है मारा गया है। ही वाज इन हिज 50s। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एक्सटेंड्स टैरिफ डेडलाइन ऑन कनाडा फॉर 3 डेज, ताकि भाई फ्राइडे तक डील जो है कहीं ना कहीं रीच हो जाए। गॉड ओनली नोज। ट्रंप ने पोस्ट किया ऑनलाइन दैट अ डील हैज़ बिन रीच्ड व्हिच इंक्लूड्स पॉसिबल रिवाइवल ऑफ द कीस्टोन पाइपलाइन। ट्रंप को हर चीज जो है सपने में दिख जाती है पहले ही। जो मुझे लगता है ट्रंप का दिमाग सोचता है, वो उस चीज के बारे में वो कहने लग पड़ते हैं। जैसे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फुल कंट्रोल अमेरिका का हो चुका है, ये ट्रंप का मानना है और कहना है। और ट्रंप का ये भी कहना है कि भाई ईरान ऑफिशियल्स जो हैं वो तो मतलब गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं डील साइन हो जाए, सब कुछ हो जाए। बट एवरी वीकेंड, every other week something or the other happens, meetings hoti hain, and then nothing comes out of it. So I don't know what exactly the situation is, but yahan par hamari situation inke sath kafi jo hai gambhir bani hui hai. Win lifetime trading 9052061008. Mohammed sahab ka kehna hai ki free seminar hota hai har Saturday afternoon 12:30 to 3 PM. aap apni seat please reserve karwa le, please don't walk in. 9052061008. And Rajdhani स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट 30+ लोकेशन से सर्व करते हैं 100% प्योर वेजिटेरियन फूड, जबरदस्त मिठाइयों का दूसरा नाम राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट इन GTA, बियॉन्ड GTA, नाम याद है आपको, राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट। क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, ब्रैम्पटन जॉर्जटाउन, 2 लोकेशन से सर्व करते हैं वरुण जी। और नेम ब्रांड सनग्लासेस पर समर की एंड ऑफ समर सॉर्ट ऑफ बैक टू स्कूल वाली डील्स चल रही हैं, अमेजिंग डील्स, टेक एडवांटेज ऑफ दैट। एंड वील टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, 12:15 की हेडलाइंस लेकर फौरन आते हैं वापस।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम, BZB इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
2: Hi Anju, kaisi ho? How's your son doing?
3: Nisha, pooch mat. Sara din computer, TV, phone par laga rehta hai. Aankhein to kharab hongi hi. Homework ke time battery gul.
2: Main samajh gayi. Use chahiye prescription wale smart glasses from Clear Optical.
4: She's right. Chahe bacche ho ya bade, wear smart glasses every day. Ye prescription smart glasses aapke kharab hote vision ko stabilize kare bina kisi bhi stress and fatigue on your eyes. Visit 8005 Financial Drive, Brampton, 905 457-3232. Clear Optical by Varun Kanda.
5: आदाब, मैं आप सबको तहे दिल से दावत देना चाहती हूँ शाम रेख्ता में। शाम रेख्ता रेख्ता फाउंडेशन का एक खास ऑडिटोरियम कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ एक शो या कॉन्सर्ट नहीं, बल्कि उर्दू के हुस्न, उसकी तहजीब और उसकी रूह के साथ गुजारी हुई एक यादगार शाम है। 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा। बुक योर टिकट्स ऑन टिकट मास्टर।
6: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
7: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
8: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
7: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
9: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisuites.ca।
10: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate.
11: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। Visit veinsautogroup.com।
10: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें एशिया गोल्ड इंक।
12: गुड आफ्टरनून, शुरू करते हैं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइंस।
0: Welcome back, friends, and the headlines are brought to you by Brampton TV and Appliances, Clear Optical by Varun Khanda, McVean Dental Care, Kavya Homeo Care, CholeBhature.ca, Win Lifetime Trading. Shuru karte taaza tareen headlines. Donald Trump ne 3 dinon ke liye 50% tariffs on Canada ko kar diya hai pause aur kaha this is subject to a deal that we reach. Trump ke order ke baad South Korea US apne joint drills ko ek hafte pehle hi end karenge. Central African Republic mein gold mine ke collapse hone se 30 log mare gaye, kai log filhal trapped hain. US mein ek 26 saal ki transgender mahila ko 6 saal ki jail hui over plot to kill Trump's treasury chief. Fired ex-Ukrainian defense minister ne wartime elections ki maang ki. He was fired in the month of July. Reports ke anusar, Donald Trump ne Iran ke saath talks ko hold off kiya jab tak Tehran puri tarah se tayar nahi hai to make a deal. World court ka kehna hai ki US sanctions undermine the rule of law. United Nations nuclear watchdog chief ka kehna hai ki Syria mein tons of nuclear material mila hai. 29 US states ne Meta se $200 billion penalty ki demand ki hai aur kaha Meta hooked and exploited children. ट्रंप ने हॉर्मुज की नई AI फोटो पोस्ट की विच सेज न्यू US टेरिटोरी, ऑल माइंस हैव बीन रिमूव्ड। लोकल समाचारों में फ्रैंक स्टोनैक सेक्स असॉल्ट कन्विक्शन में क्राउन अपील्स मिस ट्रायल। नॉर्थ यॉर्क के मल्टीव्हीकल कलिजन में 3 लोग पहुंचे अस्पताल एंड अनडेटोनेटेड ब्लास्टिंग कैप्स फाउंड एट अ मार्कहम होम। पुलिस ने स्मिथ फॉल्स के एरिया प्रॉपर्टी में थर्ड सेट ऑफ ह्यूमन रिमेन्स लोकेट की। हेल्थ यूनिट का कहना है कि टाइगर मस्कीटो डिटेक्टेड इन नायग्रा रीजन। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा पर 50% टैरिफ्स को फिलहाल पॉज किया, मगर प्राइम मिनिस्टर कार्नी वार्न्स इंपॉर्टेंट वर्क स्टिल नीडेड। भारतीय समाचारों में किरण रिजिजू ने अरुणाचल पर कहा यह दावा गलत होगा कि चाइना एंटर्ड 60 किलोमीटर्स इनसाइड. इंडियन गैंगस्टर मनोज सिंह अपीयर्स ऑन एफबीआईज मोस्ट वांटेड लिस्ट. आम आदमी पार्टी के सतेंद्र जैन को अरेस्ट किया गया इन करप्शन केस लिंक्ड टू दिल्ली जल बोर्ड. हरियाणा मेडिकल कॉलेज में दो एमबीबीएस इंटर्न्स को सेक्सुअली हरास किया गया. अक्यूज्ड हैज बीन अरेस्टेड बाय पुलिस. मुंबई दिल्ली ट्रेन में एक फॉरेनर ने फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे किया. जांच के दौरान हुई मौत. लखनऊ के महोत्सव में फेरिस व्हील कैबिन के क्रैश होने से 5 लोग हुए जख्मी, 2 इन क्रिटिकल कंडीशन. एंड पोल बॉडी डेटा के अनुसार 2 करोड़ से ज्यादा वोटर्स फेस SIR एक्सक्लूजन इन महाराष्ट्र. US एनवॉय सर्जियो गोर अपनी 2 डे जम्मू कश्मीर विजिट पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से करेंगे मुलाकात. गवर्नर से भी होगी बातचीत. ट्रंप के बयान के बाद केंद्र ने कहा इंडिया की पोल मशीनरी आज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है, तारीफ की खास वजह है. बेंगलुरु की महिला को अरेस्ट किया गया फॉर किलिंग हस्बैंड एंड सन. US एनवॉय सर्जियो गोर का कहना है कि जम्मू कश्मीर विजिट कर रहे अमेरिकन्स पर ट्रैवल एडवाइजरी को करेंगे रिव्यू. और दिल्ली के फ्यूल पंप पर CNG सिलेंडर के एक्सप्लोड होने से 2 लोग मारे गए, 4 हुए जख्मी. पाकिस्तान की खबरों से, पाकिस्तान ने इंडियन एयरक्राफ्ट के लिए एयर स्पेस बैन को सितंबर 24 तक के लिए कर दिया है एक्सटेंड. बैन में इंडियन रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट्स और एयरलाइंस दोनों आते हैं. बैन 2025 से लागू है. पाकिस्तानी क्लेरिक मदनी के बयान ने फिर से उस सवाल को हवा दी कि जम्मू कश्मीर में LET टेररिज्म इन्वॉल्वमेंट किस हद तक शामिल. पाकिस्तानी क्लेरिक ने दावा किया कि हाफिज सईद सेंड 10,000 टेररिस्ट टू कश्मीर. मीर रजा केस में इन्वेस्टिगेटर्स ने लोकेशन पर लेट नाइट रिकंस्ट्रक्शन कंडक्ट की जहां डिसीज्ड की बॉडी मिली थी. पुलिस को फिलहाल केमिकल रिपोर्ट का इंतजार है. CCTV पर क्राइम सीन के पास पुलिस प्रेजेंस देखने को मिला. एंड लॉ मिनिस्टर कहते हैं कि इमरान खान के हॉस्पिटल ट्रांसफर पर गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का रिव्यू करना होगा. तरार ने कहा कि मेडिकल बोर्ड यह फैसला करता है कि अगर कैदी को हस्पताल केयर चाहिए या नहीं. बोर्ड का रेकमेंड करना लाजमी है. क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर सारे कैदियों पर लागू होगा. पीएम शरीफ ने पाकिस्तान के गूगल ऑफिस को इनॉग्रेट किया. कॉल्स इट ब्यूटीफुल न्यू जर्नी. पीएम का कहना है कि ये एक ग्रेट डे है फॉर पाकिस्तान. गूगल के साथ पार्टनरशिप आगे बढ़ेगी. गूगल कॉन्ट्रीब्यूटेड 3.9 trillion रुपीज टू पाकिस्तान इकोनॉमी. अदालत के ऑर्डर के बाद इस साल पहली बार पत्नी बुशरा बीबी और बहन से मिले इमरान खान. और रावलपिंडी इस्लामाबाद में भारी बारिश के चलते नुला लाई फेसेस फ्लड रिस्क. स्पोर्ट्स जगत से, इंडिया ने श्रीलंका को फर्स्ट टेस्ट में हराया. 10 विकेट हॉल फ्रॉम मानव सूतर. इंडिया ने अपने 600 टेस्ट में मैसिव 165 रन की जीत हासिल की. देवदत्त पडिकल ने कहा कि टेस्ट क्रिकेट ही मेरा अल्टीमेट गोल है, सो आई मॉडल माई गेम अराउंड द रेड बॉल. इंडिया वर्सेज श्रीलंका के फर्स्ट टेस्ट में रविंद्र जडेजा ने 350 विकेट इन टेस्ट क्रिकेट पूरे किए. इंग्लैंड वर्सेज पाकिस्तान के फर्स्ट टेस्ट का प्ले स्टॉप हुआ ड्यू टू रेन आफ्टर डिजास्ट्रस स्टार्ट बाय पाकिस्तान. बॉलीवुड खबरों से, सुनीता ओझा ने डिवोर्स प्ली वापस ली. गोविंदा के मैनेजर ने पूछा वाई द तमाशा. रजनीकांत की फिल्म जेलर 2 ने रिकॉर्ड 160 करोड़ रुपए की OTT डील हासिल कर ली है. दिस इज द बिगेस्ट एवर फॉर अ तमिल फिल्म. प्रभास वर्सेज सलमान खान E2027 क्लैश नहीं होगा. डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट अब जून 2027 को रिलीज होगी. कॉपीराइट डिस्प्यूट की वजह से सयानी गुप्ता की डायरेक्टोरियल डेब्यू आसमानी पुल्ड फ्रॉम इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ न्यूजीलैंड. और फिल्म रामायणा पहली इंडियन फिल्म होगी टू रिलीज इन ScreenX फॉर्मैट वर्ल्ड वाइड. ScreenX एक्सटेंड्स चोजन पोर्शंस ऑफ अ फिल्म ऑनटू द साइड वॉल्स ऑफ द ऑडिटोरियम. और वरुण धवन ने फार्म बाय किया. एंड वरुण धवन कॉल्स इट द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ हिज लाइफ. ये थी साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो की ताजा तरीन हेडलाइन. स्टूडियो का नंबर 416-593-0055 416-593-0055 स्टूडियो का नंबर है जिस पर आप कर सकते हैं कॉल. एंड अगला गीत हमने लाइनअप कर दिया है. द फिल्म वॉज विजय पथ, फिल्माया ऑन अजय देवगन एंड तबू. अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज़ में रहा में उनसे मुलाकात. बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 29.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो. एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940 6478631940. मॉर्गेज का कोई भी काम याद रखें एक ही नाम, मॉर्गेज आर्किटेक्ट्स के सनी जोशी. फर्स्ट मॉर्गेज, सेकंड मॉर्गेज, होम इक्विटी, रिन्यूअल्स, बैड क्रेडिट, इनकम इश्यूज के लिए लेट्स टॉक. बेस्ट रेट्स, बेस्ट सर्विस एंड बेस्ट मॉर्गेज प्रोफेशनल सनी जोशी. 6478631940 6478631940. रियल एस्टेट इज नॉट इजी बिजनेस, और जो इजी नहीं उसे इजी बनाते हैं रियल्टर राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली. घर खरीदना या फिर घर बेचना, फर्स्ट टाइम होम बायर्स या फिर इन्वेस्टर्स, सबकी पसंद का रखते हैं ख्याल. ये है राज जोशी, रियल्टर बेमिसाल. कॉल राज जोशी फ्रॉम रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली रियल्टी 6478661086 6478661086. राज जोशी, सिर्फ नाम ही काफी है.
1: सुनो, आज मेरे भाई की फ्लाइट है इंडिया से.
2: अच्छी, याद है, याद है. अच्छा, उसको कहना कि आते हुए एक प्लेट छोले भटूरे पैक करा के ले आए इंडिया से.
1: अजी, इंडिया जैसे स्वाद वाले छोले भटूरे खाने के लिए इंडिया के सपने ना लो, सीधा choleBhature.ca पे चलो.
3: choleBhature.ca, बेस्ट पंजाबी रेस्टोरेंट इन ब्रैम्पटन. छोले भटूरे, पतीले वाले मटर कुलचे, पाव भाजी, अमृतसरी कुलचे और भी कई डिलीशियस ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल फूड के लिए पहुँचे. choleBhature.ca, कॉल 9054582448.
0: सर्विंग फ्रॉम 4 डाइनिंग लोकेशंस, 2 इन ब्रैम्पटन, 1 इन मिसागा एंड 1 बाय वॉन मिल्स.
4: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए. सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं, और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी. ऑफर सिर्फ August 31st तक है. एट डॉन वैली नॉर्थ हंडे, वी स्पीक योर लैंग्वेज. विजिट DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
5: Don Valley North Hyundai,
4: a proud member of Wayne's Auto Group.
0: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस, हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है. काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर. 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 6477602779, 6477602779. वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है. साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर पहुंच चुके हैं काव्या होम्यो केयर गोल्ड मेडलिस्ट होम्योपैथ नीता ओझा पिनाकोझा जी हमारे साथ हैं. एंड 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, यूनिट 104, ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं. नॉर्थ पार्क एयरपोर्ट रोड का मेजर इंटरसेक्शन है. फॉर योर कन्वीनियंस, द क्लिनिक इज ओपन 6 डेज अ वीक, मंडे टू सैटरडे, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM इन द इवनिंग. नाउ द गुड थिंग इज आप वॉक इन कर सकते हैं एट एनी गिवन पॉइंट, या अपॉइंटमेंट बना लीजिए या फोन पर कंसल्टेशन भी की जा सकती है. इफ़ यू डोंट ड्राइव, इफ यू लेट्स से कमिंग ऑल द वे फ्रॉम नायगरा फॉल और ओशवा, अपॉइंटमेंट बनाइए, आपको दवाई शिप कर दी जाएगी. इट्स डन ऑल अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका. काव्या होम्यो केयर 6477602779. मीता जी, स्वागत है आपका.
6: थैंक यू सो मच सनी जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लिसनर्स.
0: जी गुड आफ्टरनून मीता जी. आज इस स्पेशल हेल्थ सेगमेंट में किस टॉपिक पर करेंगे बातचीत?
6: बेकर सिस्ट के बारे में आज देखेंगे.
0: जी,
6: सो सिस्ट का मतलब क्या होता है कि फ्लूइड से भरी सैक. सो बेकर सिस्ट, जिसको पॉपलिटियल सिस्ट कहते हैं, जिसमें क्या होगा कि आपके नी जॉइंट में बैक साइड में पानी से फ्लूइड से भरा सिस्ट बन जाता है, जो जिस करके नी जॉइंट का पीछे का जो हिस्सा है वो बल्ज हो जाएगा, वहां पे स्वेलिंग हो जाएगी. एंड यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ आर्थराइटिस बेकर सिस्ट जो है ये डेवलप होता है, जिससे नी जॉइंट में टाइटनेस फील होना, वहां पे स्वेलिंग, पेन फील होते हैं, आप डिसकंफर्ट फील करते रहते हैं. कहते हैं। अब हमारे जॉइंट के आसपास साइनोवियल फ्लूइड होता है जिससे कि जिसको हम ऑयल कहते हैं, ग्रीस कहते हैं, कि जॉइंट की मूवमेंट है ये ऑयल करके फ्रीली हो, वहां पे फ्रिक्शन कम हो तो नी जॉइंट को ये लुब्रिकेट करता है। अब वहां पे जब प्रेशर बिल्डअप होता है तो ये फ्लूइड स्क्वीज होके नी में बैक साइड में लंप या सिस्ट बना देता है, जो किसी भी तरह के आर्थराइटिस के साथ, इवन जिनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस या फिर गाउट कह ले हैं तो उनको भी ये बन सकता है। कार्टिलेज टेयर के साथ कई बार ये ऑयल बाहर आके सिस्ट बन जाना, सो मोस्टली आप कह लो कि स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी या फिर नी के बल गिरने पे कई बार ये हो जाता है कि वहां पे चोट लगी है, नी का ज्यादा यूज आप कर रहे हैं तो ओवर यूज से भी ये होगा। कई बार ऐसे होता है कि बेकर सिस्ट जब ये बना है तो उसके साथ कोई आपको पेन नहीं है, जस्ट नी जॉइंट के पीछे स्वेलिंग है, तो कभी कभार लेग में भी वो स्वेलिंग जाती है और साथ में एकदम से अकड़न फील करते हैं, और ये स्टिफनेस करके आप जॉइंट को फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं, वहां पे टाइटनेस सी आपको फील होती है। और ये बेकर सिस्ट समटाइम्स ये रप्चर हो जाता है जिससे आपको काफी सीवियर पेन होना, वहां पे स्वेलिंग के साथ ब्रुइसेस बन जाते हैं, ब्लू कलर का वो एरिया जहां पे ब्लड जम जाता है, और ये पेन भी उस टाइम पे बढ़ जाता है। सो जब आप पूरे नी में पेन है, स्वेलिंग की कंप्लेन लेके अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाते हैं, वो फिर आपका अल्ट्रासाउंड या स्कैन कराते हैं, तभी इस कंडीशन का पता चलता है कि आपको बेकर सिस्ट बना है। सो यहाँ पे बॉडी में कहीं पे भी आपको सिस्ट है, होम्योपैथी ऑफर्स वेरी गुड ट्रीटमेंट, और ये जो मेडिकेशन होती है वो सिस्ट को ड्रेन करने में हेल्प करेगी। और फिर कई बार क्या होता है कि नीडल लगा के आपके स्पेशलिस्ट जो है वो फ्लूइड को ड्रेन तो कर देते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस वो भर जाता है, तो रिपीटेडली फिर आपको ड्रेन करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे ये ट्रीटमेंट जो है वो अंडरलाइन कोज को टारगेट करेगा, जिस करके बार बार ये प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये सिस्ट जो है ड्रेन करने में, उसकी साइज रिड्यूस करने में, उसको हटाने में ये हेल्प करेगा, साथ में आपके जो सिम्टम्स आ रहे हैं इन्फ्लेमेशन कम करके, जो भी आर्थराइटिक चेंजेस आगे बढ़ रहे हैं उसको वो जो है पहले आगे बढ़ने से रोकेगा, उसके बाद जितना भी पॉसिबल है उसमें रिपेयर होगा। सो आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बेकर सिस्ट बन गए हैं, ऑयल या ग्रीस कम हो जाना कई बार जॉइंट में, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम आएगी कि अर्ली एज में ही क्रैकलिंग स्टार्ट हो गई है, कि पटाखे बजने जिसको कहते हैं, कि खास करके जब वाइल क्लाइंबिंग स्टेयर्स, क्लाइंबिंग अप स्टेयर्स या डाउन स्टेयर्स, तो उस वक्त आपको ये ट्रबल आती है। तो ऐसे में ये ट्रीटमेंट आपको हेल्प करेगा। बॉडी में कहीं पे भी सिस्ट बने हुए हैं, नोड्यूल्स बने हुए हैं, फील फ्री टू कॉल अस काव्या होम्यो केयर से, आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। इसके अलावा 1 वीक 2 वीक्स की मेडिकेशन आपको चाहिए कि कोल्ड फ्लू हो गया, खांसी की प्रॉब्लम आ गई, छोटे बच्चों में टीथिंग वगैरह की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए भी आप क्लिनिक पे जरूर आ सकते हैं।
0: बिल्कुल दोस्तों, अगर आप भी सिस्ट जैसी चीज से जूझ रहे हैं तो काव्या होम्यो केयर पर जरूर अपॉइंटमेंट बना के पहुंच जाइए या वॉक इन कर लीजिए। गोल मेलिस होम्योपैथ मीता ओजा पिनाक ओजा जी, 10 कॉटरेल बुलेवार्ड यूनिट 104 ब्रैम्पटन से आपको सर्व करते हैं। नॉर्थ पार्क एंड एयरपोर्ट रोड का ये मेजर इंटरसेक्शन है। काव्या होम्यो केयर हैज़ बिन देयर फॉर ओवर अ डेकेड नाउ। मंडे टू सैटरडे द क्लिनिक इज ओपन फॉर योर कन्वीनियंस, 10 AM इन द मॉर्निंग टू 6 PM। The number to call is 647-760-2779. Meeta ji, bahut bahut shukriya.
6: Thank you so much, Sanish.
0: Thank you ji, 647-760-2779. Friday ko CNE shuru ho raha hai. एंड जब CNE का शुरू होने की जो एक्साइटमेंट होती है परिवारों के अंदर वो बहुत होती है, एंड वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज हर टाइम CNE में यू नो नई नई कोई ना कोई फूड एंट्रीज होती हैं जो हम ट्राई करते हैं, कोई डोनट हो गए, कोई कुछ अलग अलग तरह की चीज़ें, कोई राइड्स होती हैं अंदर, बट CNE ऑल्सो सॉर्ट ऑफ गिव्स यू एन आइडिया कि भैया समर इज कमिंग टू एन एंड, सो CNE ग्राउंड्स पे पहुंचिए, इंजॉय करें, बिकॉज फिर वही है जो मैं कल कह रहा था, 365 दिन की होगी अब वेट, क्यों फिर समर आएगी 365 दिन बाद, सो इन्जॉय वाइल इट्स देयर, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल वेदर। एंड स्टूडियो का नंबर 416-593-0005। अगर आपको होम एंड ऑटो इंश्योरेंस की तलाश है, रिन्यूअल इज कमिंग अप, ऑब्वियसली यू आर लुकिंग फॉर द बेस्ट रेट्स, बिकॉज सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है जब ऑटो इंश्योरेंस के रेट आते हैं, क्लीन रिकॉर्ड, कोई टिकट नहीं मिली, कोई एक्सीडेंट नहीं, बट योर इंश्योरेंस गोज अप। गुरविंदर बामरा ऑल स्टेट के लिए काम करते हैं, गुरविंदर जी से संपर्क करें एंड सेव हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स। इफ यू इंश्योर 2 कार्स एंड अ होम, you can save an average of $2,100. 647-303-3207. Gurvinder ji works with all state insurance. Khaskar agar aapki jo hai, agar aap naye immigrant hain, naya naya license mila hai, कोर्ट के लिए आप गुरविंदर जी को अभी के अभी कॉल कर लीजिए. 647-303-3207. गोल्ड खरीदना है तो एक ही जगह जहां पर आपको अमेजिंग डील्स आपका इंतजार कर रही है, एशिया गोल्ड. हाई क्वालिटी एंड यूज ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स चल रहे हैं. शादी के लिए खरीदना है तो दिस इज द प्लेस टू गो. एशिया गोल्ड नियर किपलिंग एंड स्टील्स, 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको. एशिया गोल्ड नाम याद रखें, 416-746-3795. asiagoldinc.com पर जाकर भी अमेजिंग डील्स को चेकआउट करें. छोटी सी ब्रेक लेते हैं, कुछ प्यारी सी लाइनें हैं आपके लिए लेकर आए, एंजॉय करें. विल बी बैक. उस पुराने कमरे के पीछे एक धूल सी सनी चारपाई और वो छोटी सी अमराई. उस पुराने कमरे के पीछे कुछ तिजोरियां थी उन पुरानी बातों की, जो गिरवी रख कर हम चल दिए उस पुराने कमरे के पीछे. हम उन सब बातों को अब भूलने लगे हैं, अब तो वो आम भी पक गए हैं, शाख से टूटने लगे हैं उस पुराने कमरे के पीछे. उस पुराने कमरे के पीछे.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो पर. आयशा मुनव्वर जी हमारे साथ हैं, जिनका 3 decades से लंबा एक्सपीरियंस है, खासकर जहां पर शी इज अ डेट सॉल्यूशन स्पेशलिस्ट, इंसॉल्वेंसी काउंसलर. आयशा मुनव्वर 416-428-2165. और आयशा जी ऑलवेज आपको अलग अलग डेट ऑप्शंस देती हैं कि भाई क्या ऑप्शंस हैं आपके पास. जरूरी नहीं होता, बिकॉज कई बार हमारे दिमाग में होता है कि दी ओनली ऑप्शन इज बैंक्रप्सी. नहीं, ऐसा नहीं होता. देर आर मेनी मेनी मोर ऑप्शंस दैट आर अवेलेबल, जिसके लिए इस सेगमेंट के बाद आप आयशा जी से संपर्क करें 416-428-2165 पर. फिर उसके बाद एक प्यारा सा मैंने SP बाला सुब्रमण्यम साहब का सरप्राइज सॉन्ग आपके लिए लाइनअप किया हुआ है. आई विल टॉक अबाउट दैट इन अ बिट, लेकिन उससे पहले आयशा जी का स्वागत करते हैं. आयशा जी आपका स्वागत है ऑन साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो.
2: बिल्कुल, आई हैव टू लेट यू नो व्हाट ऑप्शंस आर अवेलेबल डेट सेटल करने के लिए. तो हमारी जो सर्विसेज हैं उनमें आ जाती हैं कंज्यूमर प्रपोजल्स, लमसम प्रपोजल्स, क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज हैं. इसके अलावा हम बैंक्रप्सी में भी हेल्प आउट करते हैं, कलेक्शन कॉल्स रोक देते हैं, लीगल एक्शन रुक जाता है, इंटरेस्ट भी रुक जाता है, आपके एसेट्स जो है वो सेव रहते हैं. तो बेसिकली ये हमारी सर्विसेज हैं और मोर देन 20 years से मैं कम्युनिटी को हेल्प आउट प्रोवाइड कर रही हूँ. और उसमें यह कि बेताशा क्लाइंट्स अब सक्सेसफुली डेट फ्री हो चुके हुए हैं और अपॉइंटमेंट्स ऑलवेज फ्री एंड कॉन्फिडेंशियल होती हैं. और वन ऑन वन अपॉइंटमेंट इसलिए जरूरी होती है कि हर पर्सन की सिचुएशन फर्क होती है, हर पर्सन की फाइल एक यूनिक फाइल होती है, तो उसको प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि बैंक्स किस तरह से जो है इसको मैक्सिमम सेटल करेंगे और लीगैलिटी क्या है, प्रोसेस क्या है, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो सब कुछ आपको बताया जाता है. एंड देन एंड के ऊपर वी हैव टू लेट यू नो कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है, क्रेडिट को आप किस तरह से दोबारा एस्टेब्लिश करेंगे और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा. तो basically this is you know what we do in first appointment to review your situation to know your options. aur khali hum options discuss karke consultancy bhi provide karte hain, hum services provide karte hain. basically we can file consumer proposals for you, bankruptcies for you, and also we provide credit counseling services. to kai tarah ke debts hote hain, unsecured, secured. to basically all kind of unsecured debts can be settled, aur business debts ho, personal ho, iske alawa CRA ke taxes hain, HST mein agar aap behind hain. aur kai लोग ऐसा करते हैं कि इधर उधर से गलत मशवरे लेके आ जाते हैं, तो आई विल सजेस्ट यू के यू नो ऑलवेज गेट योर एडवाइस फ्रॉम राइट प्रोफेशनल. ओनली पीपल हु आर फेडरली लाइसेंस दे कैन प्रोवाइड यू नो दीज सर्विसेज, जो कि ट्रस्टी ऑफिसर्स होते हैं और वी आर वन ऑफ देम. और उसमें यह कि हम डायरेक्टली वन ऑन वन बैंक्स के साथ डील कर रहे हैं, कोई तीसरी पार्टी बीच में इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए आपके केसेस के खराब होने के चांसेस जो है वो क्लोज टू जीरो हो जाते हैं. एंड हमारा जो सक्सेस रेट है वो close to 99.9% aap samajh le, it's really high. Or you know, we know the right options for you, so all you have to give me a call to review your debt problems and know your right options to settle your debts. So phone number is 416-428-2165. That is 416-428-2165. Thank you.
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा जी. और आयशा मुनव्वर जी का नंबर एक बार फिर से 416-428-2165. और कर्जों की चपेट में अगर आप आ चुके हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है, सिंपल कॉल आयशा मुनव्वर जी, कर्जों को गुड बाय कहें, 416-428-2165. एंड 1981 में एक फिल्म आई थी एक ही भूल, एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब का म्यूजिक था, बड़ा ज़बरदस्त. एंड द फिल्म हैड जितेंद्र एंड रेखा इन द मेन लीड. फिर इसी फिल्म की काफ़ी साल बाद एक फिल्म बनी थी 2003 में, अभिषेक बच्चन, करीना कपूर एंड अक्षय कुमार की, हाँ मैंने भी प्यार किया. वॉज एक्चुअली अ कॉपी ऑफ एक ही भूल. एक ही भूल अपने वक्त में हिट फिल्म थी. हाँ मैंने भी प्यार किया डिड नॉट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस, लेकिन एक ही भूल का ये गाना मेरे आज हाथ लगा. एंड आई एम अ बिग SP बाला सुब्रमण्यम फैन, बिग फैन, ह्यूज फैन, मतलब सो मच रिस्पेक्ट फॉर SP जी. और उनका ये ब्यूटीफुल सा गीत है, अगर आप गीत के लिरिक्स पे ध्यान देंगे तो इट्स इस तरह के लिरिक्स जो है अक्सर किशोर कुमार साहब गाते थे, बट देन SP हैज़ हिज ओन ग्रेट स्टाइल. और ये लेजेंड्स जो हैं धरती से चले जाते हैं, बट अपनी ऐसी छाप छोड़ के जाते हैं कि you know, we just think they are right here with us. Enjoy the beautiful song, Ek Hi Bhool, S.P. Balasubramaniam Saab ki awaaz mein.

0: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: This part of the program is brought to you by Win Lifetime Trading. पिछले 15 सालों से successfully online trading से बहुत से परिवारों को side income provide करते आ रहे हैं, जिसमें आप हर महीने $2,000 से $6,000 US कमा सकते हैं. Flexible schedule है, surety with full confidence के साथ minimum $2,000 to $6,000 आप कमा सकते हैं. Free seminars attend करें हर Saturday afternoon. Make sure please make your appointment. Walk in ना करें. 12:30 PM to 3:30 PM होता है seminar, and call करके अपनी seat reserve करवा लें. 905-206-1008 905-206-1008. Mittal CPA Professional Corporation for all your tax related matters. 289-748-4040 289-748-4040.
2: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा।
3: और मैं कृष्णा के लिए मग्गर लेकर आऊंगी।
4: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर, और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे, और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे।
5: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं। खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी। इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
6: अगर उर्दू से मोहब्बत है तो ये शाम आपके लिए है। This September, Toronto will gather for an evening where Urdu takes center stage. Shairi, Sangeet, Dance, voices from Hindustan and Canada come together for Shami Rekhta, an intimate mehfil celebrating a language that has moved hearts for generations. 19th September, Living Arts Center, Mississauga. Book your tickets on Ticketmaster.
0: Genesis Markham mein luxury milti hai ek aise experience ke saath jo expectations se bhi aage ho. Beautifully designed 2026 GV70 ya 2026 GV80 ko lease kare sirf 2.4% se for up to 39 months. Book your test drive today. Visit genesismarkham.ca, located at Woodbine Avenue and John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
7: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho kisne jana.
8: जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना। वाकई जिंदगी बहुत ही सुहाना सफर है, और कल क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। एक सुझाव मैं आपको देता हूँ कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट या इंश्योरेंस के लिए, जैसे ऑटो, होम, लाइफ एंड कमर्शियल इंश्योरेंस, एक भरोसेमंद नाम पूजा गुप्ता जी को कॉल करें। 6476280040 that is 6476280040।

0: इमिग्रेशन
1: कम्युनिटी का जाना बचाना और भरोसेमंद नाम मनन गुप्ता आपके लिए लाए हैं कैनेडियन इमिग्रेशन की प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल मनन गुप्ता 416-451-0040 दैट इज 416-451-0040 और विजिट skylakeimmigration.com।
2: साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो प्रेजेंट्स इमिग्रेशन अनलिमिटेड बाय मनन गुप्ता पावर्ड बाय स्काईलेक इमिग्रेशन।
3: वेलकम बैक फ्रेंड्स, और मैं सनी जोशी फिर से आपका स्वागत करता हूं। जी हां, इमिग्रेशन अनलिमिटेड वाला सेगमेंट है। मनन गुप्ता जी हमारे साथ हैं फ्रॉम स्काईलेक इमिग्रेशन। आपके सवाल मनन जी ऑन द हॉट सीट, उनके जवाब। 416-451-0040 इज द नंबर, 416-451-0040 मनन जी का नंबर है। आफ्टर द सेगमेंट यू कैन कॉल हिम। मनन जी आपका स्वागत है।
4: थैंक यू वेरी मच सनी जी फॉर हैविंग मी। प्रोग्राम सुन रहे सभी लिसनर्स और परिवारों को बहुत प्यार भरी नमस्कार, गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, आदाब, थैंक यू सो मच
3: जी। आपको भी नमस्कार एंड गुड आफ्टरनून। सबसे पहले हमारे जो लिसनर हैं कमल सूद, सूद साहब पूछते हैं कि मनन जी आई अप्लाइड फॉर PR कार्ड रिन्यूअल इन अ रूटीन प्रोसेस, हाउएवर ड्यू टू फैमिली इमरजेंसी नीड द PR कार्ड राइट अवे अर्जेंटली, कैन आई सेंड दिस रिक्वेस्ट टू IRCC और नो?
4: देखिए इट्स वैसे तो जब PR कार्ड अप्लाई करना होता है रिन्यूअल के लिए तो उस वक्त IRCC की ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ही होती है कि आपको अर्जेंटली चाहिए फॉर वॉट एवर रीजन, जेन्युइन रीजन, या आपने रूटीन में करना है। अगर आपने रूटीन में किया है एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपको कोई ऐसे सर्कमस्टांसेज आ गए हैं कि आपको PR कार्ड जल्दी चाहिए, देर इज नो हार्म इन सबमिटिंग अ वेब फॉर्म विद द जेन्युइन रीजन। जेन्युइन रीजन जौन से हैं वो बड़े क्लियरली डिफाइंड है IRCC की तरफ से। कोई बहुत ही हेल्थ इमरजेंसी, आपके कोई फैमिली लव्ड वन या आपका या किसी की कोई समबडी हैज पास्ड अवे, आपको इसलिए ट्रैवल करना है। लेकिन यहां पर मैं एक चीज जरूर बताना चाहता हूं सनी जी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी एल्स कि अगर आप अर्जेंट बेसिस पर भी PR कार्ड अप्लाई करते हैं फिर भी उसको 2-3 हफ्ते लग जाते हैं। सो आई डोंट नो कि इन्होंने एग्जैक्टली कब PR कार्ड अप्लाई किया था। आज की डेट में तकरीबन जो हमारे क्लाइंट्स के PR कार्ड रिन्यूअल होकर आ रहे हैं ऑलमोस्ट 40 डेज का प्रोसेसिंग टाइम है। 40 डेज में PR कार्ड, अगर आपकी सब फाइल कंप्लीट है, फोटोग्राफ एक्यूरेट है एज पर स्पेक, तो आपको 40 दिन में PR कार्ड आपके घर में आ जाता है जी।
3: मैं कमल सूद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा इस सेगमेंट के बाद आप स्काईलेक इमिग्रेशन के मनन गुप्ता जी उनकी टीम से संपर्क करें और ज्यादा डिटेल आप प्रोवाइड करेंगे तो मनन जी आपकी मदद कर पाएंगे। 416-451-0040 मनन जी अगला सवाल सुरभि जी का है, सुरभि अग्रवाल। सुरभि जी पूछ रही हैं कि हे मनन, माय PGWP वाज इशूड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ड्यू टू पासपोर्ट एक्सपायरी डेट्स, हाउ कैन आई गेट द PGWP एक्सटेंडेड नाउ?
4: ओके, वेल दिस इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट सिनेरियो। PGWP का सनी जी फुल फॉर्म होती है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। तो अगर सुरभि जी को PGWP इनिशियल जौन सा इशू हुआ था इनको आफ्टर हर स्टडीज, अगर वो लिमिटेड टाइम के लिए जारी किया गया ड्यू टू हर पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, तो डेफिनेटली शी हैज द ऑप्शन टू सबमिट फॉर एक्सटेंशन ऑफ PGWP। PGWP सिर्फ इन्हीं हालातों में एक्सटेंशन मिलती है क्योंकि इट्स अ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी कि PGWP इशू हो आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। और अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी नहीं है तो फिर अगर मान लीजिए अगर आपको 2 साल का PGWP है तो वो सिर्फ 1 साल के लिए या जब तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो इशू होता है। सो सुरभि जी आपने क्या करना है कि आपका जैसे ही नया पासपोर्ट, आई एम एज्यूमिंग कि नया पासपोर्ट आपको अब तक मिल गया होगा, आपने इशू करवा लिया होगा, तो आपको जैसे ही नया पासपोर्ट आ गया है तो आप अपना PGWP एक्सटेंशन की एप्लीकेशन भेज दें विद द रिक्वायर्ड फीस। फीस इसकी दोबारा लगेगी और जो भी आपकी बाकी क्राइटेरिया है वो आप उसमें सबमिशन लेटर में साथ लिख दें, तो जो भी बैलेंस पीरियड है वो आपका PGWP का वो आपको एक्सटेंड होकर आ जाएगा
3: जी। एंड बाकी मैं तो सुरभि जी से यही कहूंगा कि अभी भी अगर देयर आर एनी डाउट्स यू कैन जस्ट कॉल स्काईलेक इमिग्रेशन राइट आफ्टर द सेगमेंट, 416-451-0040। आखिरी सवाल बलदेव नागरा जी का है। नागरा जी का पूछना है कि मनन जी, आई अप्लाइड फॉर सिटीजनशिप इन March 2026 बट हैवन्ट रिसीव्ड AOR एज ऑफ डेट, व्हाट कैन बी डन ऑन दिस?
4: देखिए अगर इन्होंने बलदेव

0: उनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं जी.
1: बिल्कुल. एंड कोई भी इमिग्रेशन रिलेटेड मैटर है, ऑलवेज रिमेंबर स्काईलेक इमिग्रेशन, द नंबर वन कंपनी स्काईलेक इमिग्रेशन. मनन गुप्ता जी एंड हिज टीम, कॉल करें, अपॉइंटमेंट बनाए. और मेरी ऑलवेज गुजारिश होती है, प्लीज मेक श्योर टेक ऑल योर डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद यू. एंड क्योंकि फिर ऐसा होता है कि मनन जी के लिए भी थोड़ा सा ईजी हो जाता है, उनकी टीम के लिए, कि भाई आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाए. 416-451-0040, 416-451-0040, और गूगल बाबा AI ये सबको थोड़ा सा ब्रेक दे दीजिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू इमिग्रेशन मैटर्स यू नीड एक्सपर्ट. और एक्सपर्ट कौन है स्काईलेक इमिग्रेशन के? मनन गुप्ता जी. 416-451-0040. मनन जी बहुत बहुत शुक्रिया.
0: थैंक यू सो मच जी, हैव अ गुड वन.
1: यू टू. 416-451-0040. एंड गीत संगीत का कारवां चलेगा, क्योंकि रिक्वेस्ट आ रही है वो प्ले करनी जरूरी है. बाहर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, फील्स लाइक 29. मोटरसाइकिलिस्ट किल्ड इन क्रैश एट बोवेड एंड ग्रेट लेक्स ड्राइव. एंड दिस हैज हैपेंड दिस मॉर्निंग इटसेल्फ. ट्रांजिट बस के साथ हुई थी टक्कर. Very sad. Motorcyclist was in his 50s. Lata ji and Kishore Kumar saab ki awaaz mein kora kagaz tha ye man mera. Beautiful song. The first superstar of Indian cinema par filmaya. Rajesh Khanna. Enjoy. I'll be back.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम आपको बता दें कि आज का दिन बहुत बड़ा दिन है सीएमआर 101.3 एफएम के लिए, बिकॉज आज 22 साल पूरे हो चुके हैं सीएमआर 101.3 एफएम के फॉर बीइंग ऑन एयर। सो सारे प्रोड्यूसर्स का बहुत बहुत शुक्रिया है, मैनेजमेंट का शुक्रिया है, हमारे लिसनर्स का बहुत बिग थैंक यू है फॉर बीइंग विद अस फॉर 22 लॉन्ग ईयर्स ऑन सीएमआर 101.3 एफएम। और बैकबोन जो इस रेडियो स्टेशन के हैं द स्पॉन्सर्स, बिग थैंक यू, बिग शाउट आउट टू ऑल द स्पॉन्सर्स दैट हैव मेड दिस डे पॉसिबल। एंड खासकर हमारे सीईओ मिस्टर स्टैन एंटनी, जिनकी सपोर्ट हम सबको मिली है उनकी लीडरशिप में, जो है आज सीएमआर 101.3 एफएम ने 22 इयर्स पूरे किए हैं। 22 साल से सीएमआर 101.3 एफएम इज ट्राइंग इट्स लेवल बेस्ट टू सर्व द साउथ एशियन कम्युनिटी थ्रू क्वालिटी प्रोग्रामिंग। और कई प्रोड्यूसर्स आए गए और बट सीएमआर हैज़ रिमेन स्ट्रॉन्ग एज ऑलवेज एंड ट्राइंग टू प्रोवाइड with a lot of quality that is required in today's time। and हर दिन यही कोशिश हर producer की होती है, और जितने producer थे भी पहले सबकी कोशिश मुझे लगता overall always यही रही है कि भाई किस तरह से बेहतर programming आप तक पहुँचाया जाए। and इसी वजह से we always have a very open door policy जहाँ पर हमारे listeners जो हैं अपनी feedback हम तक पहुँचाते हैं। and cmr.fm पर जाकर आप दुनिया के किसी भी कोने से CMR 101.3 FM के शोज को एंजॉय कर सकते हैं। एंड वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द हिंदी, उर्दू, पंजाबी और तमिल, तेलुगु या डिफरेंट भाषाओं में, नेपाली शो होता है वीकेंड को, इस तरह के अलग अलग शोज के जरिए हम आपको सर्व करने की कोशिश करते हैं। सो वन मोर टाइम बिग कंग्रेचुलेशन टू CMR 101.3 FM फॉर कंप्लीटिंग 22 ईयर्स in business and many many more years to come। We'll take a very short break। Sukhi Korji, Home Life Signature Realty से हमारे साथ होंगी, उनसे भी करेंगे बातचीत।
1: Summer drive का excitement बढ़ाएं with Tundra at Don Valley North Toyota। आपके next adventure के लिए built और financing सिर्फ 3.49% से for 36 months। Big selection, big summer momentum। BZB in stock आपकी electrifying experience के लिए। We pay top dollar for your trade। It's time to Toyota at Don Valley North Toyota.com। Located here 3300 Steeles Avenue, East Markham, Per.
2: At Don Valley North Toyota।
1: A proud member of Vane's Auto Group।
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisuites.ca।
6: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪਰਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਇਲਟ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਾਇਦ
7: ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਲਾਇਸੈਂਸਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਹੀ ਵਰਤੋ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਉਹ ESA ਪਰਮਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ higherlicense.ca ਤੇ ਜਾਓ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
8: Hi Anju, कैसी हो? How's your son doing?
9: निशा पूछ मत, सारा दिन कंप्यूटर, टीवी, फोन पर लगा रहता है, आंखें तो खराब होंगी ही, होमवर्क के टाइम बैटरी गुल।
8: मैं समझ गई, उसे चाहिए प्रिस्क्रिप्शन वाले स्मार्ट ग्लासेस फ्रॉम क्लियर ऑप्टिकल।
10: She is right, चाहे बच्चे हो या बड़े, wear smart glasses every day। ये प्रिस्क्रिप्शन स्मार्ट ग्लासेस आपके खराब होते विजन को स्टेबलाइज करे बिना किसी भी स्ट्रेस एंड फटीग ऑन योर आईज। विजिट 8005 फाइनेंशियल ड्राइव, ब्रैम्पटन, 905 4573232। Clear Optical by Varun Kanda।

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
4: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर। वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
5: ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਮੋਰਟਗੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫਰਸਟ ਔਰ ਸੈਕੰਡ ਮੋਰਟਗੇਜ, ਪਰਚੇਸ ਔਰ ਰੀਫਾਈਨਾਂਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫੰਡਸ? ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ,
6: ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਕੋਲ ਹੈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਫਾਰ ਐਵਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ।
5: ਇਹ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਟਸ, ਇੰਪੇਅਰਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਹੈ, ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ।
6: ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੇ AB ਐਂਡ ਟ੍ਰਸਟਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡਰਸ।
5: ਯੂ ਸ਼ੌਪ ਅਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਨੀਲਮ।
6: ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੀਲਮ ਸਿਧੂਵ ਨੂੰ,
5: 647-739-8710, license number M200-34504.
7: Hi, I'm Realtor Sikhi. Jee tusi ghar bechan ja khareedan bare soch rahe ho, ta ik var mainu phone zarur karo. Main tuhanu professional advice deke tuhada ghar list karangi sirf $1,000 vich. Ji haan, bilkul theek sunya. Only $4,000. No hidden fees, no surprises. Call me at 647-408-7066. That is 647-408-7066. Just remember, you say sell and I say sold.
8: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एंड होम लाइफ सिग्नेचर रियल्टी की एक्सपर्ट रियल्टर सुखी कौर जी हमारे साथ हैं। सुखी जी का एक्सपीरियंस बड़ा लंबा है, एंड उसके साथ सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर सुखी कौर आपकी रियल्टर हैं तो आपको ये इस बात का सुकून होता है कि भाई मॉर्गेज से लेकर ड्रीम होम की चाबियां तक सारा कुछ विल बी टेकन केयर बाय सुखी जी टीम, बिकॉज शी इज अ एक्सपर्ट रियल्टर। शी हैज़ अ मॉर्गेज टीम दैट्स वर्किंग इन द ऑफिस फॉर यू, गेटिंग योर प्री अप्रूवल, गेटिंग ऑल द अप्रूवल्स डन, अप्रेजल, इंस्पेक्शन, लॉयर फीस, सारा कुछ सुखी जी टेक केयर करती हैं। 647-408-7066। सुखी जी आपका स्वागत है।
9: थैंक यू सो मच सनी जी, आपको एंड सभी लिसनर्स को मेरे तरफ से वेरी वेरी हैप्पी वेडनेसडे
8: जी, आपको भी। एंड सुखी जी, तकरीबन जहाँ पे सात महीने आर ऑलमोस्ट डन, वी आर रिमेनिंग विद सितंबर टू दिसंबर, और मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अब आप उन आने वाले महीनों के ऊपर थोड़ी सी हमें रियल एस्टेट की अपडेट दें।
9: जी सनी जी, आने वाले जो मंथ है विंटर स्टार्ट, रियल एस्टेट की जो मार्केट है, हमें पता है 20 मंथ जो अभी इवन अगस्त एंड सितंबर स्टिल लिटिल बिट हॉरर मंथ्स देन कंपेयर टू विंटर।
8: जी
9: तो
8: जी,
9: अगर आप सेलर हैं, प्रॉपर्टी सेल करने के लिए सोच रहे हैं, तो अभी भी आपके पास वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज, राइट टाइम है, क्योंकि देर आर सो मेनी बायर्स आउट देयर, स्पेशली फर्स्ट टाइम बायर्स हैं। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है जो कि वेदर इज अ टाउन हाउस और सेमी डिटैच एंड यू हैव 3-4 बेडरूम हाउस, आई एक्चुअली हैव बायर्स दैट दे आर लुकिंग फॉर प्राइवेट डील्स। सो अगर आप घर मार्केट में नहीं लाना चाहते बट सेल करना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर लीजिए 7066. कई बार क्या होता है सनी जी, सम सेलर्स को होता है कि यू नो व्हाट, अभी हम वी आर नॉट श्योर कि हमें राइट बायर मिल जाएगा कि नहीं, हम हर मार्केट में नहीं करना चाहते, पर अगर आपके पास कोई बात हो तो प्लीज लेट मी नो. I am telling you, we have investors for every single city in Ontario. Agar aap apna ghar market mein laake bina sell karna chahte hain, to please get in touch with me. I will make sure ki aapki property ke liye right buyer ko aapko diya jayega.
8: Ji, main aapka number ek bar yahan pe de dun, 6474087066 647 408 70 66. सुखी जी, कुछ अमेजिंग लिस्टिंग जरूर शेयर करें, बिकॉज ये वो वक्त है जहां पे परिवार जो है वुड वांट टू गेट टुगेदर, गो एंड चेक आउट द प्रॉपर्टीज इन जीटीए, बियॉन्ड जीटीए, जहां जहां भी आपकी अमेजिंग प्रॉपर्टीज आपने लाइनअप की हुई है.
9: ऑफ कोर्स, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे, अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन में घर लेना चाहते हैं तो मैक्सिमम एरिया में फ्री होल्ड, एब्सोल्युटली फ्री होल्ड, नो मेंटेनेंस फी, नो पीओटीएल फीस. टाउन हाउसेज आ रहे हैं जो कि तीन और चार बेडरूम के हो सकते हैं, स्टार्टिंग जो स्क्वायर फुटेज है अराउंड 1800 से लेकर हमारे पास ऑलमोस्ट 2900 स्क्वायर फीट की टाउन हाउस अवेलेबल है. स्टार्टिंग प्राइस इज अमेजिंग, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 799, डिपेंडिंग ऑन आप कौन सा लॉट पे कर सकते करते हैं, कितने बेडरूम आपको चाहिए. 799 से स्टार्ट हो रहे हैं. इनकी जो इसकी जो लोकेशन है बहुत ही अच्छी है, क्लोज टू हाईवे 48 एंड द गो स्टेशन, स्टफ ऑफ गो स्टेशन, एंड वी हैव डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन दैट यू कैन चूज फ्रॉम. कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज गिव मी अ कॉल एट 6474087066. अगर आप किचनर में घर लेना चाहते हैं, मेरे पास तीन बेडरूम का डिटैच घर है, सिंगल कार गैराज है, एक्सटेंडेड ड्राइववे है, बैकयार्ड इज ह्यूज, बहुत ही बड़ा बैकयार्ड है, उसमें डेक बना हुआ है, प्रॉपर्टी फुली रेनोवेटेड है, घर में कोई काम नहीं होने वाला, आपको मिड 600s में ये घर मिल सकता है इन किचनर, फुली फुली फुली डिटैच. प्लीज डू नॉट डिले. एंड अगर आपको कुछ डाउट्स है कि आपको पता नहीं इनफ डाउन पेमेंट है, आपको नहीं पता इफ योर इनकम इज इनफ, आपको नहीं पता इफ योर क्रेडिट स्कोर इज गुड इनफ, प्लीज गिव मी अ कॉल. अपनी सिचुएशन को समझने के लिए कॉल कीजिए. आई विल मेक श्योर आपको पहले प्री अप्रूव करवाकर फिर ही घर दिखाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपका बजट क्या होना चाहिए, क्या है, एंड कैसे आपको घर किस तरह का इस प्राइस में मिल सकता है. इवन लाइक आपके पास नहीं है, वी हैव सो मेनी सोर्सेज दैट वी कैन help you in getting your down payment in place. 647-408-7066.
8: जी, बहुत बहुत शुक्रिया. मैं सुखी जी का नंबर दे दूं, 6474087066. एंड बिलीव मी व्हेन आई एम सेइंग दिस, सुखी जी का जो एक्सपीरियंस है, सुखी जी की जो पकड़ है कि भाई किस तरह से निगोशिएशन टेबल पर आपके हजारों डॉलर की बचत करनी है, वेदर शी इज रिप्रेजेंटिंग यू एज अ बायर और सेलर, जो भी आप की सिचुएशन है, एक बार सुखी जी से संपर्क कर लीजिए, इनकी अमेजिंग लिस्टिंग्स चेकआउट करनी है. याद रखें कि मॉर्गेज का सारा काम सुखी जी विल ऑलरेडी गेट इट डन फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू वरी अगर मॉर्गेज के कोई इश्यूज हैं. उसके अलावा लॉयर की जो फीस है, लॉयर, अप्रेजल, इंस्पेक्शन, काफ़ी खर्चा होता है जो सुखी जी आपको उसमें भी बिल्कुल असिस्ट करेंगी. 6474087066. सुखी जी, बहुत बहुत शुक्रिया.
9: थैंक यू सो मच सनी जी, हैव अ वंडरफुल वीक अहेड.
8: यू टू. 6474087066. सुखी कॉल 6474087066. एंड माफी चाहूंगा, होम ऑटो इंश्योरेंस में बचत के लिए गुरविंदर बामरा जी ऑल स्टेट के लिए काम करती हैं. एंड टॉक टू हर, कॉल हर, यू विल सेव अ लॉट ऑफ मनी, ये पक्की बात है. अगर दो गाड़ियां हैं, घर है, तो तकरीबन जो है एवरेज $2100 तक की बचत आप कर सकते हैं सालाना, एनुअली. 6473032 07 6473032 07. choleBhature.ca, serving Delhi wale chole bhature from four locations, two in Brampton, one in Mississauga. Dine and takeout option har location par available hai. Pyara sa geet, Sonu Nigam ki awaaz mein, Vastav was the film. सोनू निगम की आवाज में. वास्तव वॉज द फिल्म, फिल्माया ऑन नम्रता शिरोदकर एंड संजय दत्त.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940। दिस सेगमेंट इज ब्रॉट टू यू बाय क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा, जो कि दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ब्रैम्पटन एंड जॉर्ज टाउन। एग्जाम्स के लिए डॉक्टर्स अवेलेबल 7 days a week, 905-457-3232। फॉर नेम ब्रांड सनग्लासेस, ऑलवेज रिमेंबर क्लियर ऑप्टिकल बाय वरुण कांडा। द सेगमेंट इज ऑल्सो ब्रॉट टू यू बाय होम लाइफ मिरेकल के सुपरस्टार रियल्टर्स सरबजीत गिल, सीपी चटवाल फॉर रियल एस्टेट बाइंग सेलिंग इन्वेस्टमेंट्स। एक बार इनसे जरूर संपर्क करें, सम अमेजिंग प्रॉपर्टीज that they have in the range of 700,000 and 800,000 in Brampton, in GTA. Sarabjit Gill, CP Chatwal, 647-887-2707 ya 416-627-4737. And the segment is also brought to you by Rajdhani Sweets and Restaurant, jo ki 30+ locations se serve karte hain 100% pure vegetarian food. Zabardast mithaiyon ka dusra naam, Rajdhani Sweets and Restaurant.
1: Don Valley North Hyundai ke Hyundai Upgrade Your Ride sales event ka fayda uthaiye. सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
2: Don Valley North Hyundai, doing
1: a proud member of Wayne's Auto Group.
0: क्या आपकी होम और ऑटो इंश्योरेंस की रिन्यूअल ड्यू है? क्या आपको तलाश है गुड रेट्स की फॉर द राइट कवरेजेस? तो आज ही कॉल करें गुरविंदर बामरा को फ्रॉम ऑल स्टेट्स मिसागा साउथ एजेंसी एट 289-891-0296। इट्स 289-891-0296। आज ही कॉल करें एंड यू कैन सेव एन एवरेज ऑफ $2,163 व्हेन इंश्योरिंग टू कार्स एंड अ होम। Remember, you're in good hands with Allstate. ऊंची इमारतों के बीच अपना मकान ढूंढता है, दो बाहों के दरमियान अपना जहां ढूंढता है। ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी, ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें नहीं है मेरी, मेरे भीतर का बच्चा अपना आसमान ढूंढता है, मेरे भीतर का बच्चा अपना आसमान ढूंढता है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम पहुंच चुके हैं ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस, 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट एट द कॉर्नर ऑफ बोवेड एंड चिंकूसी इन ब्रैम्पटन। 905-450-2828 इज द नंबर। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंस इज ओपन 7 days अ वीक, 11 AM टू 7 PM। एंड ब्रैम्पटन अप्लायंसेज डॉट कॉम पर जाकर भी आप अमेजिंग डील्स को चेकआउट कर सकते हैं। सुल्तान जी हमारे साथ हैं, एक एक करके एक एक सेक्शन की अमेजिंग डील्स आप तक पहुँचाते हैं। सुल्तान जी आपका स्वागत है।
3: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: सुल्तान जी, सबसे पहले टीवी सेक्शन की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि टीवी सेक्शन में मुझे पता चला है कि भाई आपने बहुत बहुत बहुत अमेजिंग डील्स साल की लगा दी है ऑलरेडी, तो मैं चाहूंगा कि पहले इसी पे रोशनी डालिए।
3: जी सनी भाई, बिल्कुल, टीवी सेक्शन में 85 इंच, अगर कस्टमर सोनी सेलेक्ट करेंगे तो उन्हें सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ। अगर कस्टमर सैमसंग लेना चाहेंगे तो उन्हें सैमसंग मिनी एलईडी 2026 का लेटेस्ट मॉडल मिलेगा 85 इंच। एनी ऑफ वन ब्रांड आप सेलेक्ट कर सकते हैं $2,200 से ओनली $1,599 में। $700 आप सेव करेंगे और $1,599 सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। इसी तरह बिग स्क्रीन की जब बात करते हैं तो 98 इंच सैमसंग, इसकी भी $3,500 प्राइस है, लेकिन 1999 में आप बाय करेंगे $1,500 की सेविंग है और 1999 सिक्स मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है
0: जी।
3: साथ ही साथ आपने बात की जी कि अमेजिंग अमेजिंग और भी डील दी जाए
0: जी।
3: तो फिर डेफिनेटली 50 इंच सिर्फ 299 में, 55 इंच सिर्फ 399 में, 65 इंच सिर्फ 599 में, इवन 75 इंच सिर्फ 699 में मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे। और आपको पता ही है जी, अब बहुत जल्दी बैक टू स्कूल जाएंगे बच्चे, जिन्हें अपने बेडरूम के लिए 40 इंच टीवी चाहिए तो सिर्फ 199 में 40 इंच टीवी भी ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस से लिया जा सकता है। कोई भी परचेज करें, 6 मंथ में पे कर सकते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी होगी। विजिट करना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है जी। ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी एपीपी, ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ये हमारा टिकटॉक अकाउंट है, इसको फॉलो जरूर करें ताकि आपको अपडेट्स मिलती रहें। 905-450-2828, 905-450-2828 जी,
4: 905-450-2828। टीवी की आपने अमेजिंग डील्स एज प्रॉमिस्ड दे दी, लेकिन अब बचते हैं 2 सेक्शंस अप्लायंस एंड लॉन्ड्री, और हमें चाहिए कि भाई अमेजिंग डील्स इसमें भी हमें मिल जाए, तो फिर सोने पे सुहागा हो जाएगा सारा।
3: जी डेफिनेटली जी, इसमें तो हमारे पास इस वक्त जो बाय मोर सेव मोर इवेंट है, इसका मतलब ये है सिंगल पीस लेंगे, किसी में $400 किसी में $500 सेव करेंगे, लेकिन अगर 3 पीस किचन बंडल लेंगे तो पूरा $2000 सेव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपको डिशवाशर चाहिए तो $1000 वाली डिशवाशर स्टेनलेस स्टील में $499 की मिलेगी, $500 आप सेव करेंगे। आपको सिंगल पीस स्मूथ टॉप इलेक्ट्रिक स्टोव चाहिए $1200 वाला, $799 में मिलेगा, $400 आप सेव करेंगे। लेकिन अगर आप फ्रिज स्टोव डिशवाशर 3 पीस किचन बंडल लेते हैं $5000 वाला, $2999 में मिलेगा, $2000 3 पीस किचन बंडल पे सेविंग होगी, और $2999 भी आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है जी, 6 मंथ नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान है। इसी तरह लॉन्ड्री सेक्शन में भी, क्योंकि वॉशर एंड ड्रायर 2 पीस हो जाते हैं, सिंगल वॉशर लेना है वो आपको $1000 वाला $599 में मिलेगा, $400 की सेविंग होगी। लेकिन अगर आप वॉशर एंड ड्रायर लेंगे तो पेयर में आपको $800 की सेविंग होगी, और ये भी फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर है, वॉशर भी स्टीम ड्रायर भी स्टीम फीचर के साथ है जी, और इसमें प्लैटिनम सीरीज प्लैटिनम कलर टॉप ऑफ द लाइन $2600 वाला फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर सिर्फ $1799 में मिलेगा, $800 आप फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर पे सेव भी करेंगे और $1799 आप 6 मंथ में पे करेंगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। $3000 तक की भी शॉपिंग करें तो $500 अ मंथ करके पे कर सकते हैं, फ्री होम डिलीवरी के साथ। बोवेड एंड चंकूजी पे है जी। BramptonAppliances.com हमारी वेबसाइट है, और विजिट करना है आपको 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस 905-450-2828। हमारा नंबर जरूर पास ऑन करें अपने फ्रेंड्स फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव को, ह्यूज सेविंग्स आप कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स 32 इंच से लेके 98 इंच टीवी तक, और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साथ होम अप्लायंसेस एंड लॉन्ड्री सेक्शन में, चाहे आपको फ्रंट लोड वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, टॉप लोड वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, स्टैकेबल वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, कॉम्पैक्ट वॉशर एंड ड्रायर चाहिए, बिग सेविंग्स की जा सकती हैं। BramptonAppliances.com 905-450-2828 905-450-2828।
4: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस।
5: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
6: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी फ्रिज वॉशर ड्रायर किचन रेंज हुड माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
5: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ,
6: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
5: दैट्स वंडरफुल,
6: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
5: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
6: ऑन बोवेड जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन, टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट BramptonAppliances.ca।

0: lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: काव्या होम्यो केयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्यो केयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group.
1: अगर गोल्ड खरीदना है तो ये है परफेक्ट टाइम, क्योंकि एशिया गोल्ड पर अमेजिंग डील्स चल रही हैं। वहाँ हाई क्वालिटी एंड यूज्ड ब्रांड न्यू ज्वेलरी कलेक्शन पर स्पेशल डिस्काउंट्स भी हैं। विजिट करें एशिया गोल्ड एट 5010 स्टील्स एवेन्यू वेस्ट इटोबिको नियर किपलिंग एंड स्टील्स। 416-746-3795। एशिया गोल्ड, हर चमक में भरोसा, हर खरीद में बचत। आज ही विजिट करें AsiaGoldInc.com।
2: टोरंटो के दोस्तों, हम आपके लिए शामी रेख्ता लेकर आ रहे हैं, जहां आप एक ही स्टेज पर शायरी की नफासत, म्यूजिक की रूहानियत, डांस की दिलकशी और थिएटर की रंगीनियों का एक नायाब कॉम्बिनेशन देखेंगे। हर परफॉर्मेंस उर्दू के एक नए रंग से आपको रूबरू कराएगी। इस खास पेशकश के लिए हिंदुस्तान से 25 बेहतरीन आर्टिस्ट टोरंटो आ रहे हैं और उनके साथ कनाडा के अपने बाकमाल फनकार भी इस सफर का हिस्सा होंगे। 19 सितंबर, लिविंग आर्ट सेंटर, मिसिसागा। टिकट्स ऑन टिकट मास्टर।
3: एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बनता, एक घर सिर्फ सपनों से नहीं बनता, एक घर बनता है इरादों से, जी जान मेहनत से। अपने इरादों को एक नया मुकाम दें, अपनी मेहनत को अंजाम दें। कॉल करें रॉयल लेपेज क्रेडिट वैली रियल्टी के राज जोशी को, जो काम करते हैं आपके लिए विद अटमोस्ट ट्रांसपेरेंसी एंड डेडिकेशन। 6478661086 राज जोशी, नाम ही काफी।
4: वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। रॉयल लिपेज क्रेडिट वैली के नॉलेजेबल रियल्टर राज जोशी जी हमारे साथ हैं। राज जी से करते हैं बातचीत ऑन 147th एडिशन ऑफ द कैनेडियन नेशनल एग्जीबिशन ओपन्स ऑन दिस फ्राइडे, CNE। सो एंजॉय द वेदर, एंजॉय CNE। एंड राज जी, आपका भी स्वागत है।
5: सनी जी नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब आपको और पहले प्यारे लिस्टर्स को वेरी गुड आफ्टरनून
4: जी।
5: चलिए जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है ब्रैम्पटन के लिए। अगर कोई भाई बहन ब्रैम्पटन को अपना होम बनाने की ड्रीम रखते हैं या उनकी विश लिस्ट पर है, तो एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। फर्स्ट फेज अनाउंस हो रहा है फॉर दिस सैटरडे। 600 होम्स की ये कम्युनिटी है और लोकेशन है जस्ट नॉर्थ ऑफ मेफील्ड एंड चिंकूसी का एरिया। बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है, जिसमें टू स्टोरी टाउन होम्स विद बैकयार्ड्स, थ्री स्टोरी टाउन होम्स विद अप टू 4 कार पार्किंग, और इसमें डिटैच होम्स एंड सेमी डिटैच होम्स अवेलेबल हैं। बहुत ही जबरदस्त प्राइसिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द 680s। डिटैच होम्स में 36 फुट, 42 फुट के लॉट्स है और सेमी डाउन 25 फुट लॉट्स। एक्सेलेंट लोकेशन, एक्सेलेंट प्राइसिंग, ऑल कन्वीनियंसेस आर अराउंड यू और प्राइस अनबीटेबल है। हाई 600s में यू कैन नॉट इवन इमेजिन गेटिंग इनटू होम ओनरशिप इन ब्रैम्पटन। हमें कॉल कर ले जल्द से जल्द और अपनी अपना नेम हमारी लिस्ट में बुक करा लें टू गेट इनटू फेज वन। सरी जी, बहुत सारी ऐसी जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड हैं तो बता दूं, सिर्फ 2 लॉट रिमेनिंग है बर्लिंगटन में। यहां पर डिटैच होम्स की बहुत जबरदस्त डेवलपमेंट है और अगेन इसकी लोकेशन है साउथ ऑफ डंडास, जस्ट वेस्ट ऑफ एप्पलबी लाइन। सिर्फ और सिर्फ 2 होम्स रिमेनिंग है, क्लोजिंग जिनकी इस फॉल में है। अगर कोई भाई बहन इंटरेस्टेड है बर्लिंगटन के लिए तो हमें कॉल कर लें। दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जबरदस्त पैकेज हमारी ओर से बायर्स के लिए, और हमेशा फॉर सेलर्स वी ऑफर फ्री होम इवेल्युएशन. पूरी टीम है हमारी, मॉर्गेज, होम इंस्पेक्शन, यू नो, कोई भी सर्विसेज जो क्लोजिंग में चाहिए, वेदर लॉयर्स हैं, हमारी पूरी टीम है, एंड वी असिस्ट यू ऑल द वे, एंड वी आर योर हेल्पिंग हैंड इन योर जर्नी इन रियल एस्टेट. बहुत बहुत शुक्रिया सनी जी, विशिंग एवरीवन अ वंडरफुल आफ्टरनून.
4: जी बहुत बहुत शुक्रिया राज जी. 6478661086 राज जी का नंबर है, 6478661086. हैव अ वंडरफुल डे, कल होती है मुलाकात.
5: थैंक यू सर.
4: थैंक यू सर. 6478661086 एंड एशिया गोल्ड की तरफ से ये प्यारा सा गीत अलका याग्निक बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में. मेरी तरह तुम भी कभी, अमीशा पटेल एंड आफ्ताब शिव दिसानी पर फिल्माया ये प्यारा सा गीत है. एंड क्या यही प्यार है वॉज द फिल्म. इंजॉय करें.

0: आप सुन रहे हैं आपका फेवरेट साउथ एशियन अनलिमिटेड रेडियो। एडवर्टाइजिंग के लिए कॉल करें 6478631940, 6478631940।
1: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। जेनेसिस मार्कम, डूइंग लग्जरी योर वे। अ प्राउड मेंबर ऑफ वेन्स ऑटो ग्रुप।
0: अपने करीबी को खोने से बड़ा कोई गम नहीं। ब्रैम्पटन क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर एंड एजैक्स क्रिमेटोरियम एंड विजिटेशन सेंटर में आप और आपके परिवार को शांति से इस अवसर पर अफसोस करने का वक्त मिलता है। 8 साल का लंबा तजुर्बा, हर फेथ और हर धर्म और कल्चर के लिए यहाँ कंप्लीट रेंज ऑफ क्रिमेशन एंड मेमोरियल आपके चॉइस की एक्सक्लूसिव फैसिलिटीज भी उपलब्ध है। हर कदम हम आपके साथ। 30 ब्रैम्पटन कोर्ट इन ब्रैम्पटन, 905-458-2222 और लॉग ऑन टू bcvc.info और 384 Finlay Ave in Ajax, 289-372-3330 और acvc.info।
2: अक्सर घर खरीदने में सिक्योरिटी हमारी आखिरी चॉइस होती है। ऐसा क्यों? नया इलाका और नया घर, अक्सर इन घरों में ज्यादा चोरियां होती हैं। घर नया ले या पुराना, बिना सिक्योरिटी के अधूरा रहेगा आपका प्लान। फॉर कंप्लीट पीस ऑफ माइंड एंड प्रोफेशनल सिक्योरिटी एडवाइस, पॉल सहगल 416-940-0624, 416-940-0624 और विजिट paulsecurity.com। प्रिवेंशन इज सॉल्यूशन।
3: नॉर्थ अमेरिका का सब तो वड्डा माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
4: यहाँ से आपको ठाका, चुन्नी, मेहंदी, जागो, मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 मेलेनी ड्राइव, यूनिट 9 और 10, ब्रैम्पटन। टेलीफोन 905-799-9400।
5: माझा मालवा दुआबा वेडिंग स्टोर।
6: क्रेडिट कार्ड, जीएसटी या कर्जों की समस्या, हम दिलवा सकते हैं 80% कर्जों से माफी और फीस लेंगे अप्रूवल के बाद। क्रेडिट बिल्डिंग में भी करेंगे मदद। सर्विंग यू फ्रॉम 4 लोकेशंस ऑल अक्रॉस जीटीए। ऑल डेट सॉल्यूशंस, मोहम्मद सिद्दीक, 416-671-0577, 416-671-0577, alldebtsolutions.ca।
1: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? Don Valley North Lexus पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें donvalleynorthlexus.com। A proud member of Wayne's Auto Group।
0: You're listening to the Sunny Joshi Show on South Asian Unlimited Radio, CMR 101.3 FM.

जी हाँ दोस्तों, यहां पे लेते हैं आपसे इजाजत। अब मुलाकात आपसे होगी कल 12 बजे ऑन CMR 101.3 FM। शो के बाद बातचीत करनी है, नंबर एक ही है 6478631940। टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: रेडियो टोरंटो कनाडा, वेरी गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, खुश आमदीद। मैं हूं शिवानी आपके साथ, मेरे साथ हैं आमिर और हमारे आपके साथ हैं आप सारे लिसनर्स। 23 डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर राइट नाउ, चमकता दमकता सूरज और बहुत प्यारी सी आफ्टरनून। समर के बचे हुए चंद हफ्ते आप इंजॉय कर लीजिए जितना कर सकते हैं, ऐसा वक्त एक साल बाद ही आएगा दोबारा, है ना। और ये अगस्त का महीना भी हमें बहुत जल्दी अलविदा कहता हुआ हम सेप्टेम्बर में जाते हुए दाखिल, और 416-303-3639 गोल्डन 50s, मेमोरेबल 60s, सेंसेशनल 70s, रॉकिंग 80s, म्यूजिकल 90s एंड ट्रेंडिंग मेलोडीज के साथ चलता है ये सफर आपके हमारे साथ। स्टे ट्यून्ड, स्वागत।
1: आप सुन रहे हैं अपना मनपसंद रेडियो टोरंटो कनाडा। हवा के दोष पर आप तक पहुंचती हुई ये आवाज आमिर तुफैल की है। कबूल कीजिए मेरा अकीदत भरा सलाम अलैकुम, स्वीकार कीजिए मेरी मोहब्बत भरी नमस्कार और दिल की अथाह गहराइयों से निकलती हुई सत श्री अकाल। मैं रेडियो टोरंटो कनाडा के ब्रैम्पटन स्टूडियो से आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मकदम है। लेडीज एंड जेंटलमैन, गाइज एंड डॉल्स, दिस इज लवी डवी शो एंड टुगेदर वी विल किस द एयरवेव्स ऑफ टोरंटो दिस फाइन afternoon.

0: साहब आपको बता दें कि ये वक्त जो गुजर रहा है, जो टाइम बीत रहा है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अहम है ऐसा पैसा होना आपके पास जिस पर कोई इंटरेस्ट ना देना पड़े। लोग क्रेडिट कार्ड्स पे, लाइन ऑफ क्रेडिट्स पे, बैंक से लिए हुए लोन्स पे बहुत ज्यादा ब्याज दे रहे हैं या इंटरेस्ट दे रहे हैं या सूद दे रहे हैं। आपको मुफ्त का पैसा मिल रहा है और कम नहीं मिल रहा, 1.5 से 2 लाख डॉलर तक आपको मिल सकते हैं। ये कैसे मिलेंगे ये जानेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
1: थैंक यू जी, सभी को सलाम।
0: मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि क्या फैमिली साइज आप आइडियल फैमिली साइज मानते हैं, मान लीजिए 1,20,000 से 1,25,000 तक की लोन के लिए?
1: हाँ जी, सो इसमें फैमिली ऑफ 4 और फैमिली ऑफ 5 को, अगर आपके 2 या 3 बच्चे तो ज्यादा बेनिफिट है आपको। आपको 1.5 लाख तक का लोन बनता है बिना गारंटी के, 0% पे, डायरेक्ट आपके खाते में गवर्नमेंट डालती है बिना किसी क्रेडिट चेक के। तो आपका स्कोर 50 भी है, 100 भी है तो भी चलेगा, कोई गारंटी नहीं है।

0: इसके अंदर गाड़ी के लोन पे गाड़ी उठा लेते हैं, घर के लोन पे घर उठा लेते हैं। देखिए ब्रैम्पटन में कितने घर पावर ऑफ सेल पे लगे, राइट। बट यहाँ पे आप हुकूमत आपको खर्चे पानी के लिए ही पैसे दे रही है। आप तालीम हासिल करते हैं, फंडिंग गवर्नमेंट देती है कि बच्चों के खर्चे आप कैरी ऑन कर पाए, तो इसलिए कॉल करें, असेसमेंट कराएं, अभी ऑफिस आए।
1: दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपका बहुत सा स्टाफ है वहां बैठा हुआ, मैं खुद जाके देख के आया हूँ, मिल के आया हूँ लोगों से, 8 से 10 लोग काम कर रहे हैं, इट्स वेरी वेरी बिजी इन्वायरमेंट। तो वो लोग जिन्होंने 1 साल का कोर्स ऑलरेडी कर लिया है, कहीं से भी किया है भले, क्या वो दूसरे साल के लिए आपके पास आ सकते हैं?
0: हाँ जी, हाँ जी, आप मान के चले जब हम अपनी फीस बताते हैं एयर पे, जो कि कोई नहीं बताता, तो वो सेकेंड कोर्स के लिए हमसे ही एनरोल होते हैं। और बाकी आप अपनी पर्सनल कैपेसिटी से आप हमें 10-12 क्लाइंट दे ही चुके हैं, वो सबका काम हो ही चुका है। और इसमें लाइक कोई चालाकी नहीं है, कोई मीठी बातें नहीं है। फीस हमारी $199 काम होने के बाद में फंडिंग किसके खाते में आती है? आपके खाते में। आपने अपनी ईमानदारी से हमें $200 देना है, दैट्स इट। हमारा मेहताना $200 है, आपके पास आ रहा है 1.5 लाख तक का लोन। कोई चालाकी नहीं है, कोई एज लिमिट नहीं है, हाउसवाइफ है, उबर ड्राइवर है, पीआर सिटीजन, प्रोटेक्टेड पर्सन है, मिस ना करें। 2 साल के बाद फिर से पॉलिसी चेंज हो जाएगी गवर्नमेंट की, लोन भी आधा कर देंगे ये। अभी एनरोल करें, 1.5 से 2 लाख तक का लोन हासिल करें, कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
1: अच्छा, मान लीजिए किसी को $1 लाख का लोन मिला है, तो उसको वापस करने का क्या तरीका होता है, क्या टर्म्स एंड क्या कंडीशंस होती हैं?
0: हाँ जी, अगर $1 लाख का किसी को लोन आया है, तो उसका साल का ब्याज सिर्फ $2,500 है। और कब स्टार्ट है? 2 साल का कोर्स है, तो ब्याज ही नहीं है। कहीं भी पैसे को यूज करें, जो भी करें, उसकी चॉकलेट खरीदे, उसका दूध खरीदे, डजंट मैटर। और 2.5 साल बाद जब पेमेंट आपकी स्टार्ट होती है, रीपेमेंट ऑफ द लोन, तब ब्याज दर क्या है? $1 लाख का सिर्फ $2,500 साल का ब्याज है, महीने का नहीं, बिना गारंटी के,
1: वाह,
0: बिना क्रेडिट चेक के। 15 साल में आसान किस्तों में लौटाते हैं। अगर आपकी जॉब हट जाती है, कोई दिक्कत है, गवर्नमेंट को कॉल लगाओ, लोन आपका 1 से 3 साल तक डेफर हो जाता है।
1: बिल्कुल ठीक। अच्छा, दूसरी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि लोन ये 1.5 लाख या 2 लाख लोन दोनों मियां बीवी पढ़े तब है, 4 से 5 बच्चे हों तब है, या कोई और भी सूरत हो सकती है इसकी?
0: हाँ जी, फैमिली ऑफ 4 या 5 है, हस्बैंड वाइफ दोनों आसान से घर के कंफर्ट से कोर्स कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, आराम से घर पे बैठे, कोई एज लिमिट नहीं है। घर पे आप बैठ के फोन पे लैपटॉप पे क्लास लगाते हैं, एग्जामिनेशन है नहीं, आसान सी असाइनमेंट सब फुली ऑनलाइन है। तालीम भी आ गई, आखिरी में सर्टिफिकेट भी आ गया बिजनेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और आखिरी में फंडिंग भी आ गई आपके पास थोड़े टाइम के अंदर ही, 2 से 3 महीने के अंदर। तो आपका इसमें विन विन सिचुएशन है। उस पैसे को इन्वेस्ट करें, खर्चा चलाएं, आपके ऊपर है। पैसे से पैसा बनता है, पीछे ना रहिए।
1: बिल्कुल
0: सारे लोग ले चुके हैं, आप पीछे ना रहिए। इससे सस्ता लोन कनाडा में तो नहीं, धरती पे भी नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल। सवाल आखिरी ये पूछना चाहता हूं, आपकी अपनी फीस क्या है? आप सर्व कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग काम कर रहे हैं, आपकी तनख्वाहें हैं, जाने वाली दफ्तरों के किराए हैं, तो हाउ डू यू मेंटेन ऑल दिस?
0: हाँ जी, देखिए जी, अगर हमने कमीशन लेनी होती तो हमारे महीने के 4 क्लाइंट से हमारा पेट भर जाता। बट हमारी छोटी सी फीस है $200, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि हमें तो कम से कम एक दिन में 6-7 क्लाइंट तो डालने पड़ेंगे ना खर्चे निकालने के लिए। तो
1: जी
0: हम
1: बिल्कुल,
0: वॉल्यूम में काम करते हैं, कोई चालाकी मीठी बातें नहीं है, कोई कमीशन नहीं है, कोई कागज नहीं हिल रहा है इसके अंदर। कागज नहीं हिल रहा तो सेटिंग नहीं है, सेटिंग नहीं है तो कमीशन नहीं है। साफ काम 8 साल से कर रहे हैं, बहुतों को असिस्ट कर चुके हैं, हजार से ज्यादा लोगों को असिस्ट कर चुके हैं, कोई चालाकी नहीं है।
1: बिल्कुल ठीक। यहां नंबर है 4372643175, नंबर अगेन 4372643175। बहुत बहुत शुक्रिया नागपाल, आपसे और भी बात होगी, थैंक यू।
0: थैंक यू।
2: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
3: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, 1 महीने से काम पर नहीं गई, और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
4: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
3: क्या वो मदद करेंगे?
4: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस
5: एक्सपीरियंस है एंड नो फी अंटिल विक्ट्री।
6: कार एक्सीडेंट या स्लिप एंड फॉल, डोंट कॉल एनी थर्ड पार्टी एजेंट, डायरेक्टली कॉल सैयद एम रजा ऑफ सैयद लॉ, सैयद लॉ से सैयद एम रजा,
5: जहां सिर्फ वादे नहीं रिजल्ट मिले।
6: कॉल सैयद एम रजा 416-937-5046, दैट इज 416-937-5046।
7: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
8: कल किसने देखा है जी, लाइफ कभी भी बदल सकती है, इसलिए आज प्लानिंग कीजिए ताकि कल आप टेंशन फ्री रहें। जॉब लॉस, डिसेबिलिटी या फिर लाइफ की कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, शबाना की फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्लान इज द सॉल्यूशन। लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस, सुपर वीजा इंश्योरेंस, RESP, RDSP, सब कुछ एक ही जगह। शबाना
9: अवार्ड विनिंग इंश्योरेंस प्रोफेशनल शबाना के लंबे एक्सपीरियंस से अब होगी आपकी फैमिली की कंप्लीट केयर, क्योंकि शबाना इज ऑलवेज देयर।
10: 242-623
11: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो। 6473278111, 6473278111।
12: The Lovey Dovey Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
13: रेडियो टोरंटो कनाडा, और इस वक्त 2:14 का वक्त है, और ये कहते हैं ना कि हमारा जो दिन के 24 घंटे होते हैं ना, वो पहरों में डिवाइडेड होते हैं। सुबह का पहर, उसके गाने भी अलग अलग होते थे। अब देखिए, जब हम लोग क्लासिकल म्यूजिक सीखते थे तो कहते हैं ना, ये सुबह का राग है, ये शाम का राग है, ये रात का राग है। तो ऐसे ही दिन के पहर भी होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि जो सुबह जिनको उठना अच्छा लगता है, वो कहते हैं कि अगर हमारा सुबह सुबह काम हो जाए। एक मैंने यहाँ किसी, मैं एक बहुत लीडिंग बिजनेसमैन से मिली, उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि आप तो बहुत मसरूफ रहते होंगे काफी लेट इवनिंग तक। उन्होंने कहा नहीं, मैं, मेरी मसरूफियत 12 बजे दोपहर में खत्म हो जाती है। तो मैंने कहा दोपहर में 12 बजे? कहा हाँ जी, मैं 4 बजे उठता हूँ, और जितना भी अकाउंटिंग या मतलब ऑनलाइन का काम है, मेरा पेपर वर्क का काम है, वो मेरा 9-9:30 बजे तक खत्म हो जाता है। उसके बाद लोगों से मीटिंग और जो है वो मेरी 1-1.5 बजे तक खत्म हो जाती है, और उसके बाद मैं वाइंड अप करने में 1.5 घंटा लगाता हूँ, एंड बाय लाइक 1:00, 1:30 आई एम परफेक्टली फाइन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट्स द डे इज ऑल माइन देन। तो वही चीज होती है कि पहर जो दिन का वक्त होता है ना, उसको कैसे आप यूटिलाइज करते हैं। कुछ लोग शाम को यूटिलाइज करते हैं, कुछ दिन को करते हैं। आमिर, आपका पसंदीदा पहर कौन सा है?
1: दोपहर।
13: एक नहीं, पसंदीदा दो तरीके के पहर,
1: दो पहर हैं। क्योंकि दोपहर में यहाँ हम प्रोग्राम करते हैं, आपसे बात होती है, मुलाकात होती है, आपसे अपनी सेहत के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिलता है, और शायरी सुनने के लिए मिलती है, खूबसूरत गजलें सुनते हैं, आपके पसंदीदा गीत सुनते हैं। तो मुझे लगता है दोपहर इज द बेस्ट टाइम।
13: देखिए,
1: सपहर भी हो सकती है, सपहर, जिसे सपहर कहते हैं।
13: वो क्या होता है?
1: दोपहर के बाद जो होती है, शाम से पहले जो होती है,
13: अच्छा,
1: वो सपहर होती है। सो दोपहर, सपहर और शाम, ये 3 पहर एक तरह से। अच्छा। लेकिन मेरी पसंदीदा दोपहर है, क्योंकि मोर और लेस तभी जागना होता है पूरी तरह से। ये जो अदीब, मुसन्निफ, लिखारी, ये सब लोग हमेशा रात को जागते हैं, और दोपहर का वक्त उनके लिए सुबह का वक्त होता है।
13: और ये उन्हीं के वंशज आमिर जो हैं। वैसे भी कहते हैं ना कि इट्स नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योर सेल्फ। बड़ा प्यारा सा थॉट किसी ने मुझे भेजा, कहते हैं ना कि हम सोचते हैं कि पढ़ने का वक्त, पहले हम सोचते थे पढ़ने का वक्त एक बचपन से लेके इतने तरीके की उम्र में पढ़ाई करना चाहिए, फिर जॉब करनी चाहिए, फिर सेटल हो जाना चाहिए। लेकिन आज की एक थॉट जो कहता है कि इट्स नेवर टू लेट टू री इन्वेंट योर सेल्फ, स्टार्ट अ न्यू करियर एट 40, फॉल इन लव एट 50.
1: Oh, fall in love at 50.
13: Yes, learn to dance at 60. Start a whole new life at 70. Stop saying you can't. Dreams don't have an expiry date.
1: वाह वाह वाह, क्या कहते हैं? कहते हैं कि ये जो ख्वाब हैं, ये कभी मरने नहीं चाहिए. इंसान तब नहीं मरता है जब इस दुनिया से चला जाता है. इंसान तभी मर जाता है जब वो ख्वाब देखना और ख्वाबों को हकीकत की शक्ल देना बंद कर देता.
13: और ख्वाब देखने के साथ साथ एक मुस्कुराहट भी अपने चेहरे पर लगाए रखें. कहते हैं इफ यू कैन नॉट फाइंड द राइट वर्ड्स फॉर द सर्टेन सिचुएशन, जस्ट गिव अ स्माइल.
1: वाह,
13: वर्ड्स मे कंफ्यूज बट अ स्माइल ऑलवेज कन्विंसेस.
1: कन्विंसेस,
13: यस, सब ठीक होगा.
1: बिल्कुल ठीक है, सब ठीक ही होगा. इस उम्मीद से, इस भरोसे से, इस तवक्कल से हम हमेशा आगे बढ़ते हैं. कदम आप उठाइए और उस कदम में बरकत, रहमत, और उस कदम में पुख्तगी, और उस कदम में मजबूती ऊपर वाला आपको दे देगा. लेकिन उसके लिए पहला कदम उठाना बहुत जरूरी है.
13: क्या बात है. तो चलिए मैं भी अगला कदम उठाती हूँ. और आमिर का जो पसंदीदा दौर है जिसमें दुनिया की कोई डिबेट उनको हरा नहीं सकती, वो है 90s का दौर. उसी का गाना आपके लिए 416-303-3639.

0: क्या आप सुन रहे हैं?
1: क्या आप सुन रहे हैं?
2: इसी तरह GTA में लाखों ये आवाज सुन रहे हैं।
1: रेडियो टोरंटो कनाडा पर एडवरटाइज कराइए, अपने कारोबार का दायरा बढ़ाइए,
2: इस आवाज को अपने बिजनेस की आवाज बनाइए। रेडियो टोरंटो कनाडा पर अपने बिजनेस की प्रमोशन करवाइए।
3: बुक योर एडवर्टाइजमेंट स्लॉट्स विद रेडियो टोरंटो कनाडा। कॉल 416-303-3639। इट्स 416-303-3639।
4: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कॉन्टेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
5: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कॉन्टेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
6: शगन का दिन चढ़ेगा, सजना घर आएंगे, टोली लेकर जाएंगे, दुल्हन सजेगी, शहनाई भी बजेगी, लम्हा के संग हर घड़ी यादगार बनेगी। शादी हो या थीम शो, कॉर्पोरेट पार्टी हो या कोई खास इवेंट, ये पल तभी यादगार बनते हैं जब प्लानिंग हो परफेक्ट और एग्जीक्यूशन हो बेस्ट। और ये सब आपको मिलता है लम्हा इवेंट्स के साथ। डेकोरेशन से लेकर एंटरटेनमेंट तक, लाइट से लेकर मेहमानों की मुस्कान तक, सब कुछ बेमिसाल सेलिब्रेशन जो याद रहे सालों साल। तो इवेंट की डेट आप फिक्स कीजिए, बाकी सब हम पर छोड़ दीजिए। लम्हा इवेंट्स, हर पल मुस्कुराइए, जिंदगी मनाइए। कॉल 416-522-0543।
0: रेडियो टोरंटो कनाडा, मैं हूँ शिवानी आपके साथ, और मेरे साथ हैं आमिर, और प्यारी सी शायरी के साथ, बहुत प्यारी सी आवाज आशा भोसले जी, एवरग्रीन आवाज। कुछ सिंगर्स ऐसे होते हैं उनके जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि वो कहीं गए नहीं, हमेशा हमारे दिलों में है। आशा भोसले जी सर्टनली वन ऑफ देम, और साथ दे रही हैं कुमार सानू, और मूवी का नाम जैसे मैंने जिक्र किया कल की आवाज़, तुम्हारी नज़रों में हमने देखा, अजब सी आगे मुझे पता नहीं, लेकिन बड़ा प्यारा सा गाना है। आइए प्ले करते हैं ये वाला गाना एक अच्छी सी शायरी के साथ, और ये शायरी कहती है, नजरें तलाशती हैं जिसको वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम, नजरें तलाशती हैं जिसको वो प्यारा सा ख्वाब हो तुम, मिलती है दुनिया सारी ना मिलकर भी तो लाजवाब हो तुम। और ये भी कहा जाता है कि दब गई नींद कहीं करवटों के बीच, दर पर खड़े रहे कुछ ख्वाब रात भर। ये प्यारा सा गाना आपके लिए।

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto Canada, Monday to Friday.
1: ख्वाब पूरा हो सकता है, आपका बच्चा भी अब डॉक्टर बन सकता है।
2: अपने बेटे या बेटी को मोस्ट अफोर्डेबल रिकॉग्नाइज्ड ऑल सेंट्स यूनिवर्सिटी डोमिनिका में इनरोल करवाएं,
1: उसे डॉक्टर बनाएं। 20 इयर्स ऑफ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड, नो एमकैट रिक्वायर्ड,
2: 90% पास रेट।
1: कॉल नाउ 416-743-9222
2: 416-743-9222
1: और विजिट allsaintsuniversity.org। All Saints University से डॉक्टर बनने के बाद आपका बच्चा अमेरिका, कनाडा, यूरोप और किसी भी मुल्क में एज अ डॉक्टर काम कर सकेगा।
3: जी दोस्तों, हमारे साथ ऑल सेंट से हमारे साथ डॉक्टर जुड़ चुके हैं और हमें बताने वाले हैं, वो हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें बता सकते हैं कि कैसे आप अपने बच्चे के डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी के साथ। और वेलकम करते हैं आपका सर, कैसे हैं आप?
4: वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच।
3: It's a pleasure having you with us. और जब आप आते हैं तो अपने साथ बहुत सारी पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं। देखिए, अगर जब हम डॉक्टर बनने की बात कहते हैं तो अगर हम बचपन में चले जाएं, मैं अगर अपने बचपन में चली जाऊं, तो एक बहुत ही एक ऐसी अभी भी एक गूज बम्स वाली फीलिंग आती है कि डॉक्टर बनना है एक बड़ी सी बात है, एक दिस इज अ बिग थिंग। और अक्सर ये होता है कि सपने तो लोग देख लेते हैं, ड्रीम्स तो देख लेते हैं, लेकिन हाथ में थोड़ी सी कभी नाकामी भी हाथ लगती है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, और कभी हमें लगता है कि इसका स्कोप जो है, इसमें सीट्स बड़ी कम है, कैसे हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, ऐसा तो नहीं है कि वो सपना एक सपना ही रह जाएगा। लेकिन जब आप आते हैं तो सपने पूरे करने आते हैं, तो जरा बताइए क्या क्वालिफिकेशन होती है, क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे उनको अपना बेबी स्टेप लेना है इस अच्छे से बड़े से रिवॉर्डिंग करियर को पूरा करने में।
4: वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप सब लोग अगर बचपन पे चले जाएं, हम फिर से फिर डॉक्टर बनने का बहुत चांसेस बहुत है। जैसे कि अभी अगर हमारा बच्चे अगर 12 इयर्स का स्कूल खत्म किया हो, 12 इयर्स हाई स्कूल का खत्म किया हो और 100% से ज्यादा एग्रीगेट परसेंटेज आया है और मैथमेटिक्स और इंग्लिश और साइंस सब्जेक्ट्स लाइक केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स किया हो, तो वे हमारा कॉलेज में मेडिसिन पढ़ने के लिए आ सकते हैं। ये प्रोग्राम है 5-year MD प्रोग्राम है, 5 साल तक पढ़ना पड़ेगा। और अगर हमारा बच्चे अगर साइंस ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएशन साइंस डिग्री 2 साल के किया हो कम से कम, तो वे 4 साल का एमडी में प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं।
3: अच्छा,
4: और ये एडमिशन के लिए कोई एग्जाम्स की जरूरत नहीं है। अगर आप बच्चे 70% से ज्यादा परसेंटेज है तो वे अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक इंटरव्यू रहता है, तो वो इंटरव्यू फोन पे रह सकता है, अगर कनाडा में है तो फिर हमारे ऑफिस में आके मिल सकते हैं।
3: जी, तो जैसा आपने अभी बताया कि अगर 12 ग्रेड 12 पास किया हो, मिनिमम 70% मार्क्स तो होने ही चाहिए, और उसमें जो सब्जेक्ट हो ग्रेड 12 में वो इंग्लिश, मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स हो, यानी वो सारे साइंस साइड के जो सब्जेक्ट्स हों, और उसके बाद 5 साल के लिए एमडी प्रोग्राम में उनका एडमिशन हो सकता है, और अगर 2 साल की कम से कम ग्रेजुएशन किया हो तो 4 साल का प्रोग्राम करते हैं। और ये आपके लिए अगर कोई हमारे कांटेक्ट करना चाहे हमारे लिसनर्स, तो जरा आप अपने आप आ जाए हैं तो अपना नंबर भी बता दीजिए, जिससे हमारे लिसनर्स आपसे नंबर सुन के या नंबर नोट कर सकें।
4: हमारा नंबर है 416-743-9222।
3: आई रिपीट, इट्स 416-743-9222, दैट्स 416-743-9222। और डॉक्टर, इसके साथ एक और इन्फॉर्मेशन भी आती है, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई इस कंट्री से बाहर इंटरनेशनल स्टूडेंट के तहत यहाँ आ रहा है और मेडिकल करना चाहता है, तो क्या आपके पास उनके लिए कुछ सीट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं?
4: बेशक, वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑस्ट्रेलिया से है, बोस्वाना, ब्राजील, इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, फ्रॉम एनीवेयर, जहाँ से भी आपको जाना आना है। तो अगर 12 इयर्स ऑफ स्कूल किया हो या 2 इयर्स ऑफ मिनिमम ग्रेजुएशन का कोर्स किया हो तो अप्लाई कर।
3: क्या बात, That's so amazing. तो देखिए, जो सपने हैं वो जात पात देखकर या देश दुनिया देखकर नहीं आते हैं, सपने किसी को भी आ सकते हैं और सपने पूरे भी कोई भी कर सकता है। सारे लोग क्वालिफिकेशन के तहत कंप्लीट होते हैं, यानी कि फुलफिल करते हैं अपने ख्वाब पूरे करने के लिए, उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं होती। और अगर डॉक्टर बनना है, इट्स नो एक्सेप्शन, आप आराम से डॉक्टर बन सकते हैं। ऑल सेंट्स कॉलेज में आइए, दाखिला लीजिए और इनका ऑनलाइन जाएंगे तो पूरा वर्चुअल जो आपको असिस्टेंस है वो पूरी मिलेगी, आपको बिल्कुल भी हैसल की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये 10 नंबर के फासले पर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए बिल्कुल अवेलेबल है, 416-743-9222, दैट्स 416-743-9222। कुछ ऐड करना चाहेंगे एंड में डॉक्टर साहब?
4: They can go on our website, allsaintsuniversity.org, जिसमें उनको सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगा,
3: सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और डॉक्टर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस, प्लेजर हैविंग यू विद अस, हैव अ ग्रेट डे।
4: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
3: थैंक यू सो मच, थैंक यू।
0: क्या आप YouTube पॉडकास्टिंग करना चाहते हैं?
5: Insta पे स्टोरी लगाना चाहते हैं?
0: TikTok पे रील वायरल करना चाहते हैं?
5: या Facebook पे अपलोड करना चाहते हैं इफेक्टिव पोस्ट? तो रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया कंटेंट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग कोर्स में एनरोल कीजिए।
0: इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनिए और प्रमोट योर ओन बिजनेस। डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर, रेडियो टोरंटो कनाडा।
5: बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।
6: मम्मा, व्हाई डोंट यू गो टू वर्क नाउ?
7: बेटा, तुझे क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी ही रुक गई है, एक महीने से काम पर नहीं गई और अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिनाई कर रही है।
8: जिंदगी रुकती नहीं, बस रास्ता बदलना पड़ता है। कॉल सैयद एम रजा, आर कम्युनिटी इंजरी लॉयर, इंजरी लॉ के एक्सपर्ट लॉयर।
7: क्या वो मदद करेंगे?
8: मदद करेंगे, उन्होंने एक क्लाइंट को $2 मिलियन की एग्रीगेट सेटलमेंट दिलवाई, तुम्हारे लिए भी लड़ेंगे। इनके पास 12 साल से ज्यादा का experience hai and no fee until victory.
9: Car accident ya slip and fall? Don't call any third party agent. Directly call Sayyed M. Raza of Sayyed Law. Sayyed Law se Sayyed M. Raza.
8: Jahan sirf vaade nahi, result mile.
9: Call Sayyed M. Raza 416-937-5046. That is 416-937-5046.

0: Show, driving you home, a melody above and beyond. Brought to you by Radio Toronto, Canada, Monday to Friday.
1: सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर खानदान की पीढ़ियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार नब्ज देकर सेहत से जुड़ी समस्याओं को समझकर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा यहां पर इलाज किया जाता है। यहां इलाज कराने वाले लोगों को बहुत बहुत फायदा हुआ है। एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, राइसिस और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स का जड़ से, जी हां, जड़ से इलाज किया जाता है। आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज जी को, सर्विंग फ्रॉम ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111।
2: लिसनर्स, सहज योगा से अब हमारे साथ वैद्य पीवी राज जी जुड़ रहे हैं और पीवी राज जी से हम बात करेंगे और वैद्य जी से उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले वैद्य जी, आपका स्वागत करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हमारे लिसनर्स के लिए।
3: सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम वैद्य रत्ना पीवी राज है, मैं साउथ इंडिया से हूँ। हम हमारा खानदान से नाड़ी देखकर सभी बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का दवाई देते हैं। हमारा खानदान 9 जनरेशन से यही काम करते हैं। हमारा केरला दवाइयों से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हम बीमारियों का जड़ से इलाज करता है। हम ब्राम्पटन और स्कारबोरो दोनों जगह में अवेलेबल है। आयुर्वेदा आजकल का बात नहीं है, आयुर्वेदा 5000 सालों से ये दुनिया में है। पुराना टाइम पे किसी को सांप होता है ना, स्नेक वो काटेगा तो, बिच्छू बोलता है ना, स्कॉर्पियन वो काटेगा तो कुछ पत्ता लेके खाने के लिए पीने के लिए कुछ दिएगा तो ऑटोमेटिकली शरीर से जहरा होता है ना पॉइजन, वो सब कुछ चले जाता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स भी घर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। ये दुनिया में सब बीमारी हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण से, वेदर का कारण से होता है। आप लोगों को भी पता है हार्मोन्स का बारे में, इसको आयुर्वेदिक भाषा में पित्त, वात और कफ बोलते हैं। आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद लोगों का शरीर में हार्मोन्स पूरा इम्बैलेंस टू बैलेंस में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।
2: बहुत बहुत धन्यवाद वैद्य जी। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। बहुत से हमारे जो लिस्टनर्स हैं वो ओवरवेट की वजह से परेशान हैं। ओवरवेट यानी ज़्यादा वज़न का होना, ज़्यादा वज़न से समस्याएं हो जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ऐसे में आयुर्वेदा में उनके लिए क्या गाइडेंस देंगे आप, बताइए हमारे लिस्टनर्स को।
3: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अपना लिस्टनर्स के लिए। नाउएडेज द मेन प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, ओवरवेट। आजकल बहुत लोगों को ये ओवरवेट का कारण से बहुत तकलीफ हो रहा है। लोगों को पेट भी ब्लोटिंग हो जाता है और उठने में, बैठने में, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। ये ओवरवेट का कारण से वो वेट का इफेक्ट पूरा कमर में पड़ता है, उसीलिए कमर में पेन हो जाता है, घुटनों में भी पेन हो जाता है, आर्थराइटिस बढ़ जाता है, नी रिप्लेसमेंट भी हो जाता है ओवरवेट का कारण से। ये ओवरवेट का कारण से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक्स भी आने का भी चांस होता है। इसीलिए वेट तो जरूरी कम करना है। ज़्यादा वेट रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ऐसा ओवरवेट पेशेंट्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा केरला दवाई है। ये दवाई खाने के बाद बहुत लोगों को फायदा हो गया, तो आप लोग हमारे पास आइए। ये ओवरवेट का कारण से लोग देखने के लिए भी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा वाला जैसे दिखता है। हमारा दवाई खाने के बाद वेट भी कम हो जाता है, देखने के लिए एंगेज जैसे भी दिखता है और फेस में भी ग्लोइंग आ जाता है, बॉडी में भी एनर्जी आता है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग आराम से हमारे पास आ सकते हैं। हमारा तो दो लोकेशन है इधर जीटीए में, एक तो ब्राम्पटन में है, एक स्कारबोरो में है।
2: तो हमारे साथ आज जुड़े सहज योगा से वैद्य पीवी राज जी। वैद्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
4: क्या आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं पर टूल्स समझ नहीं आते? इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो एनरोल कीजिए रेडियो टोरंटो कनाडा के डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन कोर्स में। सिर्फ 4 हफ्ते में बनिए डिजिटल मीडिया प्रोफेशनल। ऑडियो वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक्स, सोशल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, पॉडकास्ट, रील्स, सब कुछ सिर्फ 4 वीक्स में।
5: बी अ क्रिएटर ऑफ योर ओन कंटेंट। बिगिनर से प्रोफेशनल डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट बनने के सफर में आपका हम सफर। रेडियो टोरंटो कनाडा, बनिए टोरंटो की डिजिटल आवाज RTC के डिजिटल मीडिया कोर्स के साथ। कॉल 416-303-3639, 416-303-3639।

0: सबको मेरा सलाम। आदमी जब संत बनता है।
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: रेडियो टोरंटो कनाडा, आप हैं आमिर और शिवानी के साथ। और कल गुलजार साहब का 92nd बर्थडे था आमिर। और लिखते हैं, जब मैं छोटा था शायद दुनिया बहुत बड़ी हुआ करती थी। मुझे याद है मेरे घर से स्कूल तक का वो रास्ता, क्या क्या नहीं था वहाँ। चाट के ठेले, जलेबी की दुकानें, बर्फ के गोले, सब कुछ। अब वहाँ मोबाइल शॉप है, वीडियो पार्लर है, फिर भी सब कुछ सूना है। शायद अब दुनिया सिमट रही है। जब मैं छोटा था शायद शामें बहुत लंबी हुआ करती थी। मैं हाथ पे पतंग लेकर उसकी डोर हाथ में लिए घंटों उड़ा करता था। वो लंबी साइकिल वाली रेस, वो बचपन के खेल, वो हर शाम थक कर चूर हो जाना। अब शाम नहीं होती, दिन ढलता है और सीधे रात हो जाती है। शायद वक्त सिमट रहा है। जब मैं छोटा था शायद दोस्ती बहुत गहरी हुआ करती थी। दिन भर वो हुजूम बनाकर खेलना, वो दोस्तों के घर का खाना, वो लड़कियों की बातें, वो साथ में रोना। अब जब भी कई दोस्त हैं, दोस्त अब भी हैं, पर दोस्ती ना जाने कहाँ है। जब भी ट्रैफिक सिग्नल पे मिलते हैं, हलो हाय हो जाती है और अपने अपने रास्ते चल देते हैं। होली, दिवाली, ईद, नए साल पर बस टेक्स्ट मैसेजेस आ जाते हैं। शायद अब रिश्ते बदल रहे हैं। जब मैं छोटा था खेल बड़े अजीब हुआ करते थे। अब सब इंटरनेट, ऑफिस से फुर्सत ही नहीं मिलती। शायद जिंदगी बदल रही है। जिंदगी के सबसे सबसे बड़ा सच आमिर यही है, गुलजार साहब लिखते हैं, जो अक्सर कब्रिस्तान के बाहर बोर्ड पर लिखा होता है। मंजिल तो यही थी, बस जिंदगी गुजर गई यहाँ आते आते। जिंदगी का लम्हा बहुत छोटा सा है। कल की कोई बुनियाद नहीं है और आने वाला कल सिर्फ सपने में है। अब बच गए हैं कुछ पल। तमन्नाओं से भरी इस जिंदगी में हम सिर्फ भागे जा रहे हैं। कुछ रफ्तार कम करो मेरे दोस्त और जिंदगी को खुल कर जियो, खुल कर जियो।
3: जिंदगी एक ही बार मिलती है, सबसे कीमती तोहफा है। अगर हम इसका ख्याल ना रखें तो इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आपको अपनी इस्तेदात के मुताबिक कोई दोस्त बहुत कीमती तोहफा दे और आप घर के किसी कोने में यूं ही उसको फेंक दें। आप सोचिए कि वो दोस्त जब कभी आपको आपके घर में विजिट करेगा और देखेगा कि उसके खिलौने का क्या हाशिर किया है आपने, तो वो क्या सोचेगा, उसको कितना दुख होगा कि उसने आपको एक तोहफा दिया। शायद उसके लिए वो बहुत कीमती तोहफा हो और आपने ऐसे ही घर के कोने खुदरे में कहीं उस तोहफे को फेंक दिया।
2: वो दोस्त ऊपर वाला है आपको ये जिंदगी।
3: वाह वाह, इस केस में ये दोस्त ऊपर वाला है जिसने आपको ये खूबसूरत, हसीन, प्यारी सी जिंदगी दी। और इसका राज हम हर रोज बताते हैं और वो राज है लम्हाए मौजूद।
2: लम्हाए मौजूद,
3: इसमें रहिए, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। स्टे ट्यून्ड, दिस इज लवी डवी शो।

0: पैसे के हवाले से,
1: आज के दौर में अगर पैसा मिल जाए और वो भी बगैर किसी सूद और इंटरेस्ट के मिल जाए तो इससे बड़ी नेमत और कोई हो नहीं सकती। हमें दिलाते हैं लाख, 1.5 लाख, अप टू $170,000, $1,70,000 तक बगैर किसी ब्याज, बगैर किसी इंटरेस्ट और सूद के पैसा कैसे मिलेगा, यही जानेंगे नागपाल जी से। वेलकम करते हैं सर आपको।
2: जी सभी को सलाम नमस्ते।
1: शुक्रिया बहुत बहुत। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि रकम तो बहुत ज्यादा लगती है देखने में, 1.5 लाख, 1.75 लाख, तो ऐसे कैसे गवर्नमेंट दे देती है?
2: गवर्नमेंट इसलिए आपको 2 से लेकर 4 किस्तों में देती है क्योंकि आप खर्च ना करते सारा पैसा एक बार में। मजाक कर रहा था, कुछ नहीं है। इसमें 50,000 से 1,70,000 का लोन होता है, हुकूमत देती है, आपको बैंक नहीं देता, बिना गारंटी के, बिना क्रेडिट चेक के आपके खाते में आता है 30 से 90 डेज में। और कोई एज लिमिट नहीं है, आप तालीम हासिल करते हैं, हुकूमत आपको खर्चा करने के लिए ही लोन दे रही है कि आप बच्चों का सेवा पानी कर पाए, पढ़ते पढ़ते आप सड़क पे ना आ जाएं, खर्चे अपने दे पाए। इसलिए आप तालीम हासिल करें, हुकूमत से फंडिंग हासिल करें, बच्चे ज्यादा, फंडिंग ज्यादा, डायरेक्ट आपके खाते में गवर्नमेंट से सीधा, हम कोई बीच में, हमारे खाते में नहीं आता, आपके खाते में आता है साफ काम, साफ तरीके से। 8 साल से कर रहे हैं, PR सिटीजन प्रोटेक्टेड पर्सन है ओंटारियो में, कॉल करें, असेसमेंट कराएं।
1: मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ लोग इस शक में पड़ जाते हैं, पता नहीं पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, बाद में कोई इंक्वायरी, कोई तफ्तीश, कोई मसला ना हो जाए, ऐसे लोगों को कैसे आप इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि ये ओरिजिनल है, जेन्युइन है, कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है, लोगों को ये ग्रांट या फंडिंग या लोन मिला है? हाउ डू यू इंश्योर देम?
2: देखिए जी, सीबा लोन था, ठीक है, कोविड में मिला था
1: जी,
2: आपने आज अप्लाई करा, कल आपके खाते में है, ठीक है, गवर्नमेंट बिना चेक करके खूब पैसे बांटे, लोगों ने मजे भी लिए, ठीक है। अब आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 1 से लेकर 3 महीने में फंडिंग देती है, ये नहीं की राइट अवे दे देगी, और डॉक्यूमेंट चेक करके ही फंडिंग आपके खाते में आती है। अब जो चीज चेक करके आती है वापस क्यों जाएगी, बताइए, हमें 8 साल हो गए टचवुड, अगर आपने पढ़ते पढ़ते ओंटारियो वर्क अप्लाई कर दिया, ODSP अप्लाई कर दी, तो पहली क्लाइंट को मना करते हैं, हमने ये चीजें अप्लाई नहीं करनी, पड़ते पड़ते फर्क पड़ता है, फंडिंग आधी जाती है आपकी, आती है लेकिन आधी जाती है, राइट। तो यही जो दो चाबी है बस, ODSP ओंटारियो वर्क्स नाउ, फंडिंग हासिल करें, 50,000 से 1,70,000 का लोन हासिल करें, कहीं भी यूज करें उस पैसे को, गारंटी नहीं है, 2.5 साल बाद किस्तें स्टार्ट हैं, शुरू में ब्याज 0%, 2.5 साल बाद ब्याज 2.5% साल का, मतलब $1,00,000 पे $2,500 ब्याज है, पैसे को कहीं भी लगाएं, कहीं भी यूज करें और अपना खर्चा चलाएं, पैसे से पैसा बनता है, पैसे से पैसा बनाएं।
1: बिल्कुल सही। और एक बात हमें और बताइएगा कि सीनियर सिटीजन होते हैं, रिटायर्ड लोग होते हैं, काम नहीं कर रहे होते हैं, घर में बैठे हैं या बाहर कहीं दोस्तों के साथ शुगल मजाक के लिए चले गए हैं, ऐसे लोगों के लिए या घर में जो लेडीज हैं, फारिग हैं, उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं?
2: उनके लिए बढ़िया चीज़ है, देखिए जी, अगर बच्चे छोटे हैं आपके, लेडीज घर पे हैं, बच्चे छोटे हैं, तो कॉलेज की जो फीस है ग्रांट से कवर हो जाती है, आपके पास 1.5 लाख का लोन आया, 1.5 लाख आप कहीं भी यूज करें,
1: बिल्कुल ठीक।
2: बाकी आप तालीम भी ले लेते हैं, आखिरी में सर्टिफिकेट भी आता है, फिर बाद में आपके पास मुकम्मल फंडिंग भी आती है आपके खाते में डायरेक्ट, तो मतलब एक तीर दो निशाने, सब कुछ आ गया आपके पास, और पैसे कहीं भी यूज करें, पीछे ना रहो, आपके आस पड़ोस वाले सब अप्लाई करके फंडिंग लेके इधर उधर लगा के आगे बढ़ रहे हैं, आप पीछे ना रहो। हमारी फीस कितनी है सर? $200 काम होने के बाद, फंडिंग किसके खाते में? आपके खाते में। आप $200 नहीं दोगे, आपका पड़ोसी दे देगा।
1: बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने। आप भी ग्रांट ले सकते हैं, आप भी फंडिंग ले सकते हैं, आप भी लोन ले सकते हैं। अब लोन ले लीजिए, लोन का टाइम है और इंटरेस्ट फ्री लोन है। पहले 2.5 साल कोई 1 रुपया नहीं देना इंटरेस्ट के तौर पर, आप 15 साल तक की किस्तें बनवा के भी लौटा सकते हैं। ये रहा नंबर नागपाल जी का, यही मिलाइएगा 4372643175। नंबर दोबारा बता रहे हैं, 4372643175। 437-264-3175। बहुत शुक्रिया नागपाल।
3: और इसी के साथ शिवानी और आमिर आपसे लेते हैं इजाजत, इस वादे के साथ की होती है आपसे कल मुलाकात, रखिएगा अपना बेहद ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस 416। 3033639.

0: You're listening to CMR FM 101.3.
1: Listen to us around the universe. www.cmr.fm.
2: The opinions stated by the various contributors to Sean Express are not to be considered as endorsed by Sean Express or CMR. They represent the opinions of the individual or business in question. All information given on this radio show is for education and entertainment purpose only. Moreover, the health tips given on this radio show should be cleared with a physician or nutritionist. We make no guarantee about the accuracy of information presented on this show.
3: Attention please, Sean Express, Masiki Rail Gari, CMRP Station, 101.3 FM par aa chuki hai.
4: Jag mein sunane aayi, subah manane aayi, chatpate gossip ke saath masti lutane aayi. Aayi Sean Express, Masiki Rail Gari, aayi Sean Express, Masiki Rail Gari.
5: Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी,
6: एक ड्राइव इन मस्ती शो जिसमें है आज के जमाने के टॉप सॉन्ग्स, ताजा तरीन खबरें और चटपटी गॉसिप्स जो आप ड्राइव को बनाएंगे पावर ड्राइव. Sean Express, मस्ती की रेलगाड़ी, ड्राइव टाइम शो विद शालिनी,
5: ब्रॉट टू यू बाय Sean Media.
7: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं शालिनी आप लोगों को वेलकम करती हूँ मस्ती की रेलगाड़ी पर. और वेंसडे की ये दोपहर है, हफ्ते का आधा सफर तय हो चुका है और आधा अभी बाकी है, तो क्यों ना आज थोड़ा हिसाब बदल दें. काम का प्रेशर थोड़ा कम और पॉजिटिव एनर्जी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि जिंदगी में हर चीज हमारे प्लान के मुताबिक हो ये तो जरूरी नहीं, लेकिन हर सिचुएशन में

0: लगने वाली यूएस टैरिफ्स को कुछ कम किया जा रहा है। ट्रंप ने अग्रीमेंट को दोनों देशों के लिए वेरी गुड डील बताया और कहा कि इससे अमेरिकन फार्मर्स को भी होगा फायदा। ओबीपी कांस्टेबल तरुण बाली की मौत के मामले में अक्यूज्ड 18 साल के जस्टिन वेरोन्यू के आज वीडियो के जरिए कोर्ट अपीयरेंस हुई है। वेरोन्यू पर फर्स्ट डिग्री मर्डर, पुलिस ऑफिसर पर असॉल्ट, डेंजरस ड्राइविंग, रेजिस्टिंग अरेस्ट और पुलिस से भागने जैसे चार्जेस लगे हुए हैं। कांस्टेबल बाली की 9 जून को हियरेस्ट ऑन्टारियो में ड्यूटी के दौरान मौत हुई थी, जब वो एक भागते हुए सस्पेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहे थे और उन्हें एक व्हीकल ने हिट कर दिया था। एक नई टीडी बैंक की स्टडी के मुताबिक कनाडा के 76% पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट्स का कहना है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस उनकी वेलबींग और स्टडीज को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। करीबन 20% स्टूडेंट्स को स्कूल से ज्यादा पैसे की चिंता है, जबकि 23% का कहना है कि उन्हें प्रॉपर बजट बनाना और मेंटेन करना नहीं आता है। वहीं पर 89% स्टूडेंट्स इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज के बारे में और सीखना चाहते हैं। चलेंगे ब्रैम्पटन, जहां आज सुबह ट्रांजिट बस और एक मोटरसाइकिल की कोलिजन में एक मोटरसाइकिलिस्ट की मौत हो चुकी है और ये क्रैश बवे ड्राइव ईस्ट एंड ग्रेट लेक्स ड्राइव के पास हुआ। पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिलिस्ट अपने 50s में था और उसे सीन पर ही डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। बस ड्राइवर को भी हॉस्पिटलाइज किया गया। और अब चलते हैं ओशवा की तरफ, जहां पर ओशवा एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट से फ्राइडे को उड़ान भरने के बाद गायब हुए 73-year-old पायलट डेविड डगलस की मौत की पुष्टि ओपीपी ने कर दी है। मंडे को वोल्फी लेक से एयरक्राफ्ट का डेब्री मिला था और अब पायलट की डेड बॉडी को भी लोकेट कर लिया गया है। स्कारब्रो के क्लिफ क्रेस्ट नेबरहुड में आज सुबह कुछ सस्पेक्ट्स एलिजली एक घर की ड्राइववे से व्हीकल चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस दौरान घर के एक रेसिडेंट ने फायर आर्म डिस्चार्ज किया और उस रेसिडेंट को चार्ज किया गया और पूरे इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन जारी है। नजर डालते हैं आज के वेदर के हालचाल के ऊपर। आज रहेगा मिक्स ऑफ सन एंड क्लाउड्स, हाई ऑफ 25 डिग्रीज, ह्यूमिडेक्स के साथ फील हो सकता है करीबन 29 और रात का लो रह सकता है 17 डिग्री सेंटीग्रेड। मस्ती की रेलगाड़ी रहेगा सवार पूरे 4 बजे तक। शालिनी के साथ गुड आफ्टरनून।
1: आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी। अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड। फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
2: Another Don Clean with the Don Dux.
3: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
4: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
3: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
4: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
3: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
4: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
3: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
2: Dawn Platinum, the better grease getter.

0: at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: जी दोस्तों, 905-206-1008 ये नंबर है विन लाइफ टाइम का, और ये नंबर सही मायने में आपकी जिंदगी बदल सकता है. कैसे जाने के लिए यहाँ से एक्सपीरियंस ट्रेडर एंड ट्रेनर राफे जी हमारे साथ जुड़ेंगे. राफे जी, आपका स्वागत है मस्ती की रेलगाड़ी पर. कैसे हैं आप?
2: ठीक ठाक, थैंक यू वेरी मच. गुड आफ्टरनून टू यू एंड योर लिसनर्स.
1: गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे राफी जी. और बहुत सारे लोग जो आपके सेमिनार्स में जाते हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, बड़े हैप्पी होकर आते हैं और बड़े अच्छे उनके बड़ी पॉजिटिव बातें करते हैं विन लाइफ टाइम के लिए. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेडिंग करी हुई है और उन्हें अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा.

0: ट्रेडिंग करने से। तो मैं चाहूंगी कि आज हम उन लोगों को बताएं कि क्या गलती करी, क्या उन्होंने नहीं किया जिस वजह से ट्रेडिंग उनके लिए अच्छी नहीं साबित हुई और डेफिनेटली उन्होंने विन लाइफ टाइम का रुख नहीं किया है अभी। तो मैं चाहूंगी कि बताएं कि क्या गलती हम कर देते हैं कभी कभी ट्रेडिंग में।
1: प्राइमरली दो मेन चीजें हमने देखी हैं जो कुछ स्टूडेंट्स आते हैं किसी और तरफ से जिनका थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था। एक तो होता है कि सीख उनसे रहे होते हैं जो प्रोफेशनली ये काम नहीं करते। तो हमारे एक कहावत होती है कि नीम हकीम खतरा जान, के आपको कुछ आधा पता होता है आधा नहीं पता। आपको ट्रेडिंग में किसी ने डाल दिया, आपको पता ही नहीं था कि हुआ क्या और आपका नुकसान हो गया। नंबर टू, आपने ट्रेडिंग अकेले की, किसी सुपरविजन के बैठ के नहीं की। हमारा एक ऐसा इंस्टीट्यूट है, दो ऑफिस हैं, 12,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं। आज भी सुबह 9:35 पे सेशन शुरू हुआ और 9:45 पे हमारे सीईओ ने कहा कि आप लोग सारे घर जा सकते हैं और टारगेट पूरा हो गया है।
0: अच्छा।
1: तो हम लोग इसलिए बकायदा प्रोफेशनल तरीके से करते हैं, ऐसे नहीं है कि कहीं आपको किसी रेस्टोरेंट में बैठ के ट्रेडिंग सिखाएंगे। बकायदा क्लासेस होती हैं, बकायदा सॉफ्टवेयर है, तो इट्स नॉट ए वन मैन शो। तो ये दो गलतियां मोस्टली करते हैं कि सुने सुनाए किसी ने कहा ट्रेडिंग में पैसे डाल दें, ऐसे नहीं होता। नंबर टू, ट्रेडिंग में हम लोग कहते हैं अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने।
0: वाह, क्या बात है। तो अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, आर देयर सम कंपनीज हु आर हेल्पिंग अस ग्रो यू नो आवर बिजनेस एट विन लाइफ?
1: एब्सोल्युटली, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास बहुत मिलियंस ऑफ डॉलर्स, जो हाफ अ मिलियन डॉलर नॉर्मली अवेलेबल पड़ा होता है। वो कोई रिस्क नहीं है, सारे का सिर्फ उनको ट्रेडर्स चाहिए जो सॉफ्टवेयर जानते हो, तो वो सारे का सारा रिस्क वो लेंगे और आप रिवॉर्ड आपको देंगे।
0: दैट्स अमेजिंग। तो राफी जी, जो आपका सेमिनार हो रहा है बिल्कुल फ्री सेमिनार दिस सैटरडे, उस हवाले से बताए हमारे लिसनर्स को कौन कौन इसमें आ सकता है और अभी कितनी सीट्स अवेलेबल है हमारे लिसनर्स के लिए?
1: लेकिन लास्ट टाइम सेमिनार किया था दूसरी लोकेशन में, तो हमने कहा था अपने पिकनिक चेयर्स रखे साथ गाड़ी में, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी उस वक्त भी। तो सेम हो जाता है, ओवरफ्लो ओवर क्राउड हो जाता है, लेकिन हम हर सैटरडे को सेमिनार करते हैं, तो कोई भी आ सकता है किसी भी बैकग्राउंड से। यू आर नेवर टू यू नो यंग टू स्टार्ट, नेवर टू अर्ली टू स्टार्ट। कभी भी आए, आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी हर हफ्ते सेमिनार के साथ मिलती रहेगी।
0: वंडरफुल। तो दोस्तों, 10 नंबर के फासले पर है ये अपॉर्चुनिटी, 905-206-1008, that's 905-206-1008, winlifetime.com, right away call करिए और सैटरडे के सेमिनार के लिए अपनी सीट बुक करें। थैंक यू राफी जी, फिर आपसे जुड़ेंगे। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।
1: थैंक यू जी, टेक केयर जी।
2: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस, म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
0: वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से शालिनी आप सभी लोगों का स्वागत करती है। और भाई, अब हमें जिसका इंतजार था वो आज आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं राहुल कश्यप जी, #homes के ब्रोकर ऑफ रेकर्ड हैं। और आपके लिए एक दो तीन चार नहीं, इनके पास पता नहीं कितने प्रोजेक्ट्स हैं आप लोगों के समय को और आप लोगों की इनफैक्ट पूरी जिंदगी को स्पेशल बनाने के लिए। क्योंकि एक बार जब आप इन्वेस्ट करते हैं इनके प्रोजेक्ट्स में, तो आपको स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता, क्योंकि एंड टू एंड सारी जिम्मेदारी होती है #homes की। चाहे रियल एस्टेट एजेंट्स हो, चाहे मॉर्गेज की बात हो, चाहे लॉयर्स की बात हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, एवरीथिंग इज सुपर परफेक्ट। तो नंबर सबसे पहले नोट कर लें, टू कॉल और टेक्स्ट राहुल जी, 6479934844, 6479934844। राहुल जी, कैसे हैं आप? वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी।
3: जी शालिनी जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू यू एंड ऑल आवर लिसनर्स।
0: गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी। एंड आई नो इट्स अ बिग डे टुडे, बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है या शायद हो चुका है, सो लेट्स हियर इट अबाउट द प्रोजेक्ट।
3: बिल्कुल शालिनी जी, फर्स्टली देयर इज नॉट वन नॉट टू बट थ्री अपॉर्चुनिटीज दैट वी आर ब्रिंगिंग फॉर आवर लिसनर्स। तो आपने बिल्कुल सही कहा, बहुत काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, चाहे आप फील्ड में देखना चाहते हैं, चाहे आप ईस्ट एंड में देखना चाहते हैं, वी आर ब्रिंगिंग समथिंग फॉर एवरीवन। So right now, the first thing that happened yesterday was the launch of Caledon Trails Wild Rose, which basically phase two of Caledon Trail, which is on Mayfield and Chinkuzi. There, traditional two-story freehold townhomes, 1,540 square feet minimum, three bedrooms, two and a half washrooms, traditional with a backyard. These townhomes are starting from $679,000. That's
0: very
3: the price.
0: Nice.
3: $679,000. ये कैलेडन का एरिया है, राइडर मेफील्ड एंड सिंकुजी, क्लोज टू 410, प्लस अगर आपको डबल कार गैराज चाहिए इन टाउन होम्स वी हैव दैट ऑप्शन एज वेल. डबल कार गैराज टाउन होम्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम 699,000.
0: ब्यूटीफुल.
3: इफ यू आर लुकिंग फॉर सेमी डिटैच वी हैव दैट टू. सेमीज आर स्टार्टिंग फ्रॉम 799,000. And if you're looking for detached may be home about 36 footers, 38 footers, and 41 footer lots available hai yahan pe, starting for 1.1 million. These are amazing price point for Caledon.
0: Beautiful.
3: For a project that's coming at Mayfield and Chinguzi Road. Ka ye area hai. It's a master plan community. Aur iski booking humne already shuru karwa di hai, and our clients will be signing this weekend. So any of our listeners, if you're सोच रहे थे आपको फ्री होल्ड प्रोडक्ट लेना है उसके वेट कर रहे थे, गेट इन टच विद आवर टीम राइट अवे बिकॉज 679 से लेके ओवर 1.2 मिलियन तक की प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है. टाउन होम,
0: क्या बात है,
3: डबल डबल कार गैराज टाउन होम, सेमी डिटैच, डिटैच प्लॉट, यू नेम इट वी हैव इट. ऑन टॉप ऑफ दैट नाउ आई एम गोना टेक एवरीबॉडी इन ब्रैम्पटन फ्रॉम कैलेडन बिकॉज ब्रैम्पटन में कल इसका लॉन्च होने वाला है विच इज रोजमॉन्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, हेरिटेज रोड एंड स्टील्स एवेन्यू वेस्ट के ऊपर 59 लॉट्स आने वाले हैं, 38 फुटर्स एंड 41 फुटर्स. जो प्राइसिंग शुरू होने वाली है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1,099,000. सो बेसिकली 1.1 मिलियन के नीचे ये प्रोजेक्ट शुरू होगा. नाउ दैट प्राइसिंग फॉर दैट नेबरहुड इज बिलो रीसेल प्राइस पॉइंट एवरेज. वहां की जो रीसेल एवरेज है आज के डेट में दैट्स 1.3 मिलियन फॉर 35 फुट लॉट्स. ये जो लॉट्स हैं ये 38 है मिनिमम, वी हैव 41 फुटर्स एज वेल. और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनकी जो डेप्थ भी है 90 से लेकर 120 फीट की डेप्थ है यहाँ पे. सो दीज आर बिगर लॉट्स अवेलेबल हियर कंपेयर टू द रीसेल मार्केट. प्लस बिल्डर अपग्रेड्स आर गोना बी देयर, यू आर गोना बी गेटिंग केयर एंड वारंटी, एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर, लाइक देयर्स सो मच हियर. सो इफ यू आर इन द मार्केट, आप ब्रैम्पटन में घर देख रहे थे, स्पेशली हेरिटेज रोड एंड स्टील्स का जो एरिया है वेस्ट एंड का, अगर आपको वहां चाहिए था, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. गेट इन टच विद आवर टीम. कल इस प्रोजेक्ट का ऑफिशियल प्लैटिनम लॉन्च है एंड वी आर गोना स्टार्ट बुकिंग यूनिट्स फॉर आवर क्लाइंट्स from tomorrow itself. So get in touch with our clients that way. On top of that, Sonny G, now I'm going to take everybody to Whitby. Whitby mein, townhomes, minimum two bedrooms, with two car parking, starting from 439,000.
0: Unbelievable, Rahul Ji. Two car parking ke saath town home
3: aur
0: 400s mein. Wow.
3: Bilkul. Two car parking ke saath, minimum two bedroom, अपने अर्बन टाउन होम्स हैं जो शुरू हो रहे हैं फ्रॉम 439,000. 10% का डिपॉजिट स्ट्रक्चर है, वो भी आपको एक साल के अंदर पे करना है. सो यू हैव एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर. क्लोजिंग इस प्रोजेक्ट की होने वाली है 2028 के अंदर. सो यू हैव अबाउट अ ईयर एंड अ हाफ राइट अवेलेबल टू यू. सो प्राइसिंग इटसेल्फ इज फिनोमिनल. आप उस एरिया को अगर आप जब देखेंगे आके और आप रीसेल से भी कंपेयर करेंगे, दीज यूनिट्स आर चीपर देन व्हाट इवन द फेज वन वाज सेलिंग बिफोर. So 439 for two bedroom minimum. If you're a first time home buyer, agar aap East End mein dekh rahe hain, chahe Scarborough ho, chahe Pickering ho, this is in Whitby. This price point is unreal. 439 se shuru ho rahe hain. And the most expensive unit, Chani Ji, is below $540,000. Below 540. For the largest unit. And every single townhouse comes with two car parking. So jo bhi humare listeners hain, हमेशा कंप्लेन ही होती है कि भाई चैलेंज के एक ही पास की मिलती, देन यू हैव टू वेट फॉर द सेकंड वन और यू डोंट गेट अ सेकंड वन.
0: दैट्स राइट, बिल्कुल.
3: एवरीबॉडी गेट्स टू पार्किंग.
0: ओह वाओ.
3: अच्छा 430, यू हैव अ पोटेंशियल.
0: या 439 से 540 आपने बताया, राइट?
3: दैट्स द रेंज, यस.
0: तो उसके बीच में ही टाउन होम्स आ रहे हैं. दो बेडरूम्स मिनिमम है, दो कार पार्किंग है, अर्बन टाउन होम्स है. विटबी का एरिया इज अ फ्लरिशिंग एरिया. तो ये बहुत ही अमेजिंग आपने तीनों प्रोजेक्ट्स बताए हैं राहुल जी. ब्रैम्पटन में भी जो आपने प्रोजेक्ट बताया है उसमें भी आपने कहा कि टाउन होम भी है, सेमी डिटैच्ड है, डिटैच्ड है. यू नो दिस इज वन ऑफ दोज मेनी थिंग्स दैट आई लाइक अबाउट यू एंड योर सर्विसेज राहुल जी, कि आप कभी भी बहुत छोटा एक सिंगल दायरा नहीं रखते किसी भी इन्वेस्टमेंट का. यू गिव सो मेनी ऑप्शंस टू पीपल टू चूज फ्रॉम. सो दिस इज एन अमेजिंग थिंग दैट यू आर डूइंग.
3: थैंक यू सो मच. हमारी कोशिश यही रहती है कि एवरीबॉडी हैज अ डिफरेंट बजट. इफ यू आर अ स्टार्टर, यू आर गेटिंग इनटू द यू नो होम परचेसिंग, आप उसमें आना चाहते हैं, आपका बजट थोड़ा कम है, उसके हिसाब से भी चीजें अवेलेबल हैं. इफ यू आर समबडी हु इज लुकिंग टू डाउनसाइज, उसके हिसाब से भी हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, प्राइसिंग अवेलेबल है. और अगर आप बड़े घर में जाना चाहते हैं, अगेन इन टुडेज मार्केट यू हैव टू अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स. प्राइसिंग इज किंग. पहले हम कहते हैं लोकेशन इज किंग, आज की डेट में प्राइसिंग इज किंग, बट लोकेशन इज सेकंड टू दैट फॉर श्योर. क्योंकि लोकेशन लॉन्ग टर्म में आके ही आपको वो पैसा बना के देगी. सो एज लॉन्ग एज यूर बाइंग इन अ गुड लोकेशन फ्रॉम अ गुड बिल्डर ऑन टॉप ऑफ दैट यूर गेटिंग अ ग्रेट प्राइसिंग. बिकॉज ये सब जो आपको प्राइसिंग हमने बताए ये नेट ऑफ HST है, और ये जो नेट ऑफ HST का जो अभी चल रहा है incentive from the government, this is only good for 1 year until next March 31st, 2027 तक का time है. So we have a very small window. Anybody who's buying in this time frame will be eligible for the HST rebate. So why not take advantage of it and save yourself up to $130,000? That's the whole plan here.
0: Yep, exactly. तो राहुल जी बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है, और एक बार से तो बात नहीं बनती, आपसे फिर जुड़ेंगे हम अपने नए लिसनर्स के लिए कुछ और डिटेल्स के लिए. आई नो आप आज भी किसी बिल्डर लॉन्च में काफी ज्यादा बिजी है राहुल जी, बट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे. एनीथिंग एल्स वुड यू लाइक टू एड, प्लीज गो अहेड.
3: That's it, Chani ji, for all our listeners. Agar aap Brampton mein lena chahte hain, we have products available for you. If you're looking into Caledon, we have products available. We have products available in the East End as well. And stay tuned, because very soon, maybe later this week or early next week, I'm going to be announcing a project that's coming up at the lakefront in Port Credit in Mississauga.
0: Oh, nice. Pricing, very nice area.
3: We have to remember someone next week, because it's going to be one of the best price point that's coming up. And these are going to be for somebody who's looking to downsize. For first-time home buyers, this is a great opportunity to get in that project as well.
0: Okay, क्या बात है राहुल जी, इंतजार रहेगा. तो आपका नंबर फिर से 6479934844, 6479934844. थोड़ी देर में फिर आपसे जुड़ेंगे राहुल जी towards end of the show. Thank you so much for joining us.
3: Thank you so much, Shanji.
0: ऑल द बेस्ट. तो भाई आज के मौसम को देखते हुए एक बहुत प्यारा सा गाना है जिसकी रिक्वेस्ट काफी दिनों से आई है, और ये गाना आपकी नजर हम करने जा रहे हैं फ्रॉम द मूवी आर राजकुमार. और यहाँ पर बता दें ये गाना आप तक पहुंचाया जा रहा है यश विंडोज एंड डोर्स के सौजन्य से. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स आपको मिलते हैं रीजनेबल प्राइस में, पूरे ओंटारियो में सर्विसेज देते हैं, खुद ही मैन्युफैक्चरिंग है, खुद ही इनका इंस्टॉलेशन है. यहाँ पर आपको स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ मिलता है, और साथ ही फ्रेंचाइज ऑप्शन भी अवेलेबल है. इफ यू आर लुकिंग फॉर अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द राइट टाइम. यश विंडोज एंड डोर्स, 416-732-3600, दैट्स 416-732-3600. देओल ट्रैवल की लेटेस्ट डील्स आ चुकी हैं, टोरंटो से मुंबई राउंड ट्रिप अक्टूबर टू नवंबर 1290 में विद टू बैग्स. नाउ टोरंटो से दिल्ली 10 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक स्पेसिफिक डेट्स हैं, 1800 में जा सकते हैं दो बैग्स के साथ. और दिल्ली से टोरंटो आ सकते हैं अक्टूबर में 850 में वन वे. अक्टूबर में 850 में वन वे यू कैन कम टू टोरंटो फ्रॉम दिल्ली. नाउ दिल्ली से टोरंटो राउंड ट्रिप अक्टूबर से जनवरी फरवरी 1370 विद वन बैग. और टोरंटो से दिल्ली दिवाली स्पेशल है, दिस इज अ स्टील, दो बैग्स के साथ वन वे 1150 में. कॉल कीजिएगा देओल ट्रैवल टू लोकेशन से टोबिको एंड ब्रैम्पटन 905-588-5100 एंड 905-588-4200.

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: Hum honge aapke saath hamesha.
2: संजीव पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो, या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232
3: घर या बिजनेस के लिए चाहिए पैटियो कवर, परगोला, बेसमेंट कैनोपी या रिट्रैक्टेबल ऑनिंग्स,
4: तो कॉल करें कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, ब्रैम्पटन का ट्रस्टेड नाम फॉर रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स.
3: बेस्ट क्वालिटी, स्टाइलिश डिजाइंस और ग्रेट प्राइसिंग, चाहे सनरूम हो या हो कस्टम कैनोपी, सब कुछ मिलेगा यहाँ.
4: फ्री कोटेशन के लिए अभी कॉल करें 416-831-4790, दैट्स 416-831-4790, या पहुँचो 24 रीगन रोड, ब्रैम्पटन.
3: कैलिफोर्निया ऑनिंग एंड कैनोपी, बनाए आपकी स्पेस सुंदर और फंक्शनल. हैशटैग होम्स एंड राहुल कश्यप आपके लिए लेकर आए हैं ब्रैम्पटन एंड कैलेडन बॉर्डर पर एट मेफील्ड एंड गोर फ्री होल्ड टाउन्स फ्रॉम मिड 700s, सेमीज फ्रॉम मिड 800s एंड डिटैच्ड होम्स फ्रॉम मिड 900s. मास्टर प्लान कम्युनिटी ऑफ 2500 होम्स विद क्रिकेट पिच, टेनिस, बास्केटबॉल एंड पिकल बॉल कोर्ट्स, डॉग पार्क एंड किड्स स्प्लैश पैड्स एज नेबरहुड अमेनिटीज. ओनली 10% डिपॉजिट ओवर 365 डेज एंड क्लोजिंग लेटर 2027 टू 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844, 647-993-4844. अगर आप लंबे वक्त से किसी हेल्थ प्रॉब्लम से परेशान हैं और एक नेचुरल आयुर्वेदिक सॉल्यूशन की तलाश में हैं, तो आइए सहज आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर पर. यहाँ खानदानी परंपरा के अनुसार नब्ज देखकर कई तरह की बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से किया जाता है. इलाज से बहुत सारे लोगों को राहत और फायदा मिला है, चाहे एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम्स, गैस, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस, सोराइसिस या फिर किसी अन्य हेल्थ इश्यू की बात हो, बीमारियों का जड़ से इलाज करने में मदद मिलती है. आज ही कॉल करें वैद्य रत्न पीवी राज को, लोकेटेड इन ब्रैम्पटन, 647-327-8111, 647-327-8111.
5: जी दोस्तों, मस्ती की रेलगाड़ी पर शालिनी आप लोगों का फिर से वेलकम करती है. और आज आपकी भारी डिमांड पर फिर से हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हेल्थ के सॉल्यूशन मास्टर केरला वैद्य रत्ना पीवी राज जी, जो सहज केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर से जुड़े हुए हैं. दोस्तों, पीढ़ियों से इनका जो परिवार है नब्ज देखकर शरीर की जो प्रॉब्लम्स है, हेल्थ इश्यूज हैं, उनको समझता है और आयुर्वेदिक हर्बल उपचार के माध्यम से लोगों को एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ ले जाने की कोशिश करता है और उसमें सफलता भी मिलती है. और अगर आप भी अपनी सेहत को, अपनी हेल्थ को नेचुरली बेहतर बनाना चाहते हैं, तो जरा ध्यान से सुनिएगा आज की बातचीत, आपके बड़े काम क्या जो है ये चीज हो सकती है. सबसे पहले आप नोट कर लें वैद्य रत्न पीवी राज जी का डायरेक्ट नंबर. ब्रैम्पटन एंड स्कारब्रो दो लोकेशन से सर्व करते हैं, 647-327-8111, 647-327-8111. तो वैद्य जी, सबसे पहले आपका हमारे शो में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं और आपसे हम पूछते हैं आज, थोड़ा हमारे लिसनर्स को अपने बारे में बताइए, कुछ जानना चाहते हैं आपके बारे में, कैसे आयुर्वेदा का सफर शुरू हुआ, कैसे लोग आपसे मुलाकात कर सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट अप्रोच होती है, जरा डिटेल में आपके बारे में जानना चाहते हैं हमारे लिसनर्स. वेलकम.
6: सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल. मेरा नाम वैद्य रत्ना पीवी राज है, मैं साउथ इंडिया से हूँ. हम हमारा खानदान से नाड़ी देखकर सभी बीमारियों के लिए जड़ी बूटियों का दवाई देते हैं। हमारा खानदान नौ जनरेशन से यही काम करते हैं। हमारा केरला दवाइयों से बहुत लोगों को बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि हम बीमारियों का जड़ से इलाज करता है। हम ब्राम्पटन और स्कारबोरो दोनों जगह में अवेलेबल है। आयुर्वेदा आजकल का बात नहीं है, आयुर्वेदा 5000 सालों से ये दुनिया में है। पुराना टाइम पे किसी को सांप होता है ना, स्नेक बोलता है ना, स्नेक वो काटेगा तो, बिच्छू बोलता है ना, स्कॉर्पियन वो काटेगा तो कुछ पत्ता लेके खाने के लिए पीने के लिए कुछ दिएगा तो ऑटोमेटिकली शरीर से जहरा होता है ना पॉइजन, वो सब कुछ चले जाता है। इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स भी घर में नॉर्मल डिलीवरी हो जाता है। ये दुनिया में सब बीमारी हार्मोनल इम्बेलेंस का कारण से, वेदर का कारण से होता है। आप लोगों को भी पता है हार्मोन्स का बारे में, इसको आयुर्वेदिक भाषा में पित्त वात और कफ बोलता है। आयुर्वेदिक दवाई खाने के बाद लोगों का शरीर में हार्मोन्स पूरा इम्बेलेंस टू बैलेंस में आ जाता है। दैट इज कॉल्ड पावर ऑफ आयुर्वेदा, दैट इज कॉल्ड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस।
5: वंडरफुल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पीवी राज जी और वैद्य जी। नंबर यहाँ पर आपका एक बार अनाउंस कर दूं, 6473278111। और अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ एक और बड़ा जरूरी सवाल। आजकल ओवरवेट और साथ ही वेट गेन की जो प्रॉब्लम है बड़ी कॉमन हो गई है वैद्य जी। कई लोग डाइट और एक्सरसाइज करने के बावजूद अपना वेट कंट्रोल नहीं कर पाते, तो अब आयुर्वेदा के हवाले से मैं पूछूंगी, क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, क्या नेचुरल तरीके से हेल्दी वेट लॉस जो है, इज इट पॉसिबल, आप कैसे मदद कर सकते हैं?
6: आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है अपना लिजनर्स के लिए। नाउएडेज द मेन प्रॉब्लम इज ओबेसिटी, ओवरवेट। आजकल बहुत लोगों को ये ओवरवेट का कारण से बहुत तकलीफ हो रहा है। लोगों को पेट भी ब्लोटिंग हो जाता है और उठने में, बैठने में, चलने में भी बहुत दिक्कत होता है। ये ओवरवेट का कारण से वो वेट का इफेक्ट पूरा कमर में पड़ता है, उसीलिए कमर में पेन हो जाता है, घुटनों में भी पेन हो जाता है, आर्थराइटिस बढ़ जाता है, नी रिप्लेसमेंट भी हो जाता है ओवरवेट का कारण से। ये ओवरवेट का कारण से कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है, हार्ट स्ट्रोक्स भी आने का भी चांस होता है। इसीलिए वेट तो जरूरी कम करना है। ज़्यादा वेट रहेगा तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होते रहते हैं। तो ऐसा ओवरवेट पेशेंट्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा केरला दवाई है। ये दवाई खाने के बाद बहुत लोगों को फायदा हो गया, तो आप लोग हमारे पास आइए। ये ओवरवेट का कारण से लोग देखने के लिए भी थोड़ा सा उम्र ज़्यादा वाला जैसे दिखता है, हमारा दवाई खाने के बाद वेट भी कम हो जाता है, देखने के लिए एंगेज जैसे भी दिखता है और फेस में भी ग्लोइंग आ जाता है, बॉडी में भी एनर्जी आता है, इम्यूनिटी पावर भी अच्छा तरफ बढ़ जाता है। तो इसीलिए आप लोग आराम से हमारे पास आ सकते हैं। हमारा तो दो लोकेशन है इधर जीटीए में, एक तो ब्राम्पटन में है, एक स्कारबोरो में है।
5: जी बहुत बहुत शुक्रिया वैद्य जी हमसे जुड़ने के लिए। नंबर फिर से 6473278111, 6473278111। तो मस्ती की रेलगाड़ी पर दोस्तों आप जुड़े हुए हैं शालिनी के साथ और बहुत प्यारा सा गीत आपकी नजर करेंगे छंद लाइनों के साथ, कि तुम सामने रहो तो दिल को करार रहता है, तुम सामने रहो तो दिल को करार रहता है, तुम दूर रहो तो बस इंतजार रहता है। मोहब्बत की भी अजीब सी आदत है, जिसे होती है उसी का हर पल ख्याल रहता है। चलते हैं 1970s की फिल्म हीर रांझा की तरफ, और बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ है लता मंगेशकर थी की, और म्यूजिक मदन मोहन का, बोल लिखे थे महान शायर कैफी आजमी साहब ने। मस्ती की रेलगाड़ी पर

0: नहीं, अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी जिंदगी में भी ऐसा प्यारा सा इंसान हो या प्यारी सी इंसानी हो, जो व्हाट अ वर्ड, इंसानी, तो ऐसा कोई पर्सन हो ना आपकी लाइफ में जो ऐसा गाना आपके लिए गाए, बस ये सपनों से आप बाहर आ जाइए, क्योंकि आपके लिए ना ये सब हकीकत बनने वाला है। क्योंकि मैच फाइंडर्स से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डॉक्टर फरवा, ढेर सारे आपके लिए खूबसूरत से खूबसूरत बेस्ट ऑफ द बेस्ट मैचेस लेकर। नंबर सबसे पहले नोट कर लें, हॉटलाइन नंबर 6477017973, 6477017973। डॉक्टर फरवा, वेलकम टू मस्ती की रेलगाड़ी, कैसी हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ शालिनी, इतना प्यारा सॉन्ग था, मजा आ गया सुन के।
0: बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी सर्विसेज भी बड़ी प्यारी हैं, क्योंकि आप ना दिलों को दिलों से जोड़ती हैं। कहते हैं कि रिश्ता जो है ना ऊपर वाला बनाकर हमें यहाँ भेजता है, लेकिन आप तो इतना नोबल काम कर रही हैं कि वो रिश्ते आप खोज कर लाती हैं। और बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए, तो हमारे लिसनर्स को बताएं जो हैरान परेशान है, जिन्हें अपने लिए या अपने बच्चों के लिए कोई एक परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा, हाउ कैन यू हेल्प देम?
1: एक्चुअली शालिनी, होता है ऐसे कि जब हम एक नई कंट्री में जाते हैं, कल्चर नया होता है, ट्रेंड्स नए होते हैं, और अब तो जेन जी के साथ बिल्कुल ही हर चीज चेंज हो गई है।
0: सही बात
1: है। वहाँ पे इस तरह की चीज करना मुश्किल हो जाता है। जोड़े तो भगवान ने बनाए हुए हैं, लेकिन यू हैव टू टेक अ स्टेप टू गेट वन स्टेप क्लोजर टू देम। तो आप एक स्टेप वो लीजिए ताकि आपके लिए आपको ज्यादा आसानी हो जाए मिलने में, क्योंकि कितना अच्छा है ना कि अगर आप घर पर बैठे हैं और आपके लिए एक टीम है जो काम कर रही है, कम्युनिटी इवेंट्स में जा रही है, डिफरेंट जगहों पे रीच आउट कर रही है लोगों को कि इनके लिए हमें कोई ढूंढना है, तो आप अपने घर में बैठे हैं लेकिन आपके लिए लोग काम कर रहे हैं, तो जाहिर आपने वो स्टेप तो आपने लेना ना कि आपने मुझे कॉल करना है और मुझे कहना है कि ये हमारी ढूंढ के दे, हमारी ये डिमांड्स है, हमें ये चाहिए, और फिर आगे का काम मेरा और मेरी टीम का है।
0: अरे वाह, क्या बात है। तो अच्छा, मैच मेकिंग के
1: वो अपने लिए ये स्टेप लें ताकि वो अपने अगर पार्टनर की तरफ एक कदम बढ़ाना चाहते हैं तो हमें कॉल करें और हमसे बात करें। हमारे पास इतने प्यारे प्यारे लोग हैं इस टाइम जिनके लिए मैं सबके लिए ढूंढ रही हूँ। मैं पहले बता देती हूँ कि अच्छा ये मुझे प्रोस्पेक्ट है, ये है, तो वो मुझे मैसेजेस कुछ लोगों के आए हैं कि जी आपने हमारा नहीं बताया, हमारा नहीं बताया। फिर मैंने सोचा मैं थोड़ा सा जनरलाइज करूंगी कि इतना ज्यादा नहीं बोलना, लेकिन अब जाहिर है जो जहन में होता है वो निकल जाता है मुंह से।
0: जरूर, नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल। तो कुछ थोड़ा बताएं हमारे लिसनर्स को किस तरह के रिश्ते हैं इस वक्त। मैं चाहती हूँ जरा एक्साइटमेंट बढ़ जाए लोगों का कि कौन कौन से रिश्ते। आई नो आपके पास तो थाउजेंड्स ऑफ रिश्ते होंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा जो आपके टॉप ऑफ योर हेड जो अभी आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे।
1: जी मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूंगी कम्युनिटी में लोगों को कि प्लीज टेक योर स्टेप एंड कम फॉरवर्ड एंड टेल अस। उससे आपको ये देयर इज नथिंग टू लूज ना, आप सिर्फ हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बता रहे हैं, फिर हम आपको जो ऑप्शंस दिखाएंगे आपको फिर समझ लगेगी कि आप किन किन लोगों को चूज कर सकते हैं। देयर इज सो मच आउट देयर। तो घर बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला, कॉल करना जरूरी है।
0: और
1: मेरे पास इस टाइम पाकिस्तान से दो लेडीज है जिनका मुझे बिल्कुल इस टाइम याद है कि ये है, एक तो 23 एज है, एक 33 एज है, और वो दोनों लेडीज जो है उनकी बैकग्राउंड चेक मैंने की है, बहुत अच्छी फैमिली से हैं, सो वो स्पॉन्सरशिप के लिए रिश्ता नहीं कर रही हैं, वो अच्छी फैमिलीज के लोग हैं, मैंने उन्हें चेक कर लिया है। तो मैं जिन लोगों को पाकिस्तान से रिश्ता करना है कि हमें कोई चाहिए है, वो जरूर मुझे कॉन्टैक्ट करें। और एक हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी इंडियन लेडी है, शी इज 52 ऑफ एज। तो इंडियन मेल्स जो के 50 प्लस हैं, प्लीज डू कॉन्टैक्ट मी, आपके लिए एक बहुत अच्छा सा रिश्ता हमारे पास है। और इंडियन एक लड़की है जो 25 है। मैं इस टाइम ज्यादा बताने की कोशिश कर रही हूँ शालिनी ताकि बहुत सारे लोगों का बताया जा सके, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल ऑफ कोर्स।
0: जी जी,
1: तो और इतने सारे हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या क्या बताऊं।
0: कोई बात नहीं, मैं पहले ये काम करती हूँ कि आपका वेबसाइट, आपकी जो है बड़ी खूबसूरत वेबसाइट है matchfinders.ca, दोस्तों matchfinders.ca जरूर विजिट करें, 6477017973। अब डॉक्टर फरवा, बहुत सारे लोग इस लाइन में इस तरह का काम कर रहे हैं और बाकी भी प्रोफेशनल्स यू नो लगे हैं, लेकिन हाउ आर यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स? इसमें कैसी फील डालती हैं आप अपनी सर्विसेज में कि लोगों को लगता है भाई ये तो मैच फाइंडर्स से आया हुआ रिश्ता लगता है?
1: शालिनी, सबसे पहली तो ये बात है कि वी डोंट बिलीव इन क्वालिटी, वी बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। राइट right?
0: yeah.
1: मैं आपको वैसे रिश्ते नहीं दिखाना चाहती कि मुझे एक सेट नंबर पूरा करना है कि मैं तो आपको 5 रिश्ते दिखा रही हूँ और 10 दिखा रही हूँ और 15, नहीं मैं उस पर नहीं जा रही हूँ. मैं आपको मोस्ट सूटेबल लोग, आई टेक मोर टाइम एंड आई रिजेक्ट सो मेनी पीपल. मैंने कितने लोगों को इवन रजिस्ट्रेशन के बाद उनके मनी बैक कर दिया कि नहीं आप लोगों को मैं ट्रस्ट नहीं कर सकती. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं उन पर ट्रस्ट कर सकती हूँ, उनका फैमिली बैकग्राउंड मुझे समझ में आता है, मैं सिर्फ उन लोगों को रेफर करती हूँ. एक चीज दूसरी, जो पाकिस्तानी लेडीज हैं मुझे लग रहा है कि वो जरा कम है, थोड़ी थोड़ी पीछे हैं, तो मैं उन्हें कहूँगी कि जो 40 एंड प्लस जो पाकिस्तानी लेडीज हैं, डू कम फॉरवर्ड एंड कॉन्टेक्ट मी. मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे 5-6 जेंटलमैन है इस टाइम जो वेट कर रहे हैं आपका.
0: अच्छा, वेरी नाइस, क्या बात है. तो यहाँ पर दोस्तों matchfinders.ca विजिट करें, नंबर है, डॉक्टर फरवा से बात कर सकते हैं 6477017973. डॉक्टर फरवा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और फिर आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होती है. टेक केयर.
1: थैंक यू फॉर हैविंग मी शालिनी. थैंक यू सो मच.
0: ओके जी, नो प्रॉब्लम्स. और वेल दोस्तों, अगला सेगमेंट आप तक हम पहुंचा रहे हैं, व्हाट इज सो स्पेशल टुडे, आज का दिन क्या कहता है. और ये सेगमेंट स्पॉन्सर कर रहे हैं एक बार फिर से यश विंडोज एंड डोर्स. वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के विंडोज एंड डोर्स लगा सकते हैं अपने घरों में, अपने ऑफिस में. 30 सालों की वारंटी के साथ आते हैं ये डोर्स एंड विंडोज. खुद ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग है, खुद ही इनकी इंस्टॉलेशन है. यहाँ पर स्टाइल, लुक्स, क्वालिटी, सिक्योरिटी, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी एफिशिएंसी सब कुछ मिलती है. और बड़ी खबर, आप अगर ग्रोइंग टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इनके साथ फ्रेंचाइज खोल सकते हैं, इनकी फ्रेंचाइज ले सकते हैं. कॉल कीजिएगा राइट अवे, दे आर लुकिंग फॉर बिजनेस ओनर्स. 416-732-3600, that's 416-732-3600. और co-sponsor कर रहे हैं सेगमेंट को देओल ट्रैवल. टोरंटो से मुंबई राउंड ट्रिप लगा है अक्टूबर टू नवंबर 1290 में दो बैग्स के साथ. टोरंटो से दिल्ली 10 नवंबर से 16 दिसंबर तक, लिमिटेड सीट्स 1800 में दो बैग्स के साथ. नाउ दिल्ली से टोरंटो अक्टूबर में आ सकते हैं 850 में वन वे. दिल्ली से टोरंटो राउंड ट्रिप अक्टूबर टू जनवरी फरवरी 1371 बैग. एंड टोरंटो से दिल्ली आइए, दिवाली स्पेशल में जा सकते हैं दिल्ली वन वे 1150. टू लोकेशंस, इटोबिको एंड ब्रैम्पटन. दे ऑल ट्रैवल 905-588-5100 एंड 905-588-4200. और आज का स्पेशल सेगमेंट है नेशनल पोटैटो डे. फ्राइज हो, समोसा हो, आलू पराठा हो, आलू के बगैर हमारी फेवरेट डिशेस शायद अधूरी हैं. फिर है आज वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे. उन सभी को सैल्यूट जो मुश्किल वक्त में दूसरों की मदद के लिए आगे आते हैं. इंटरनेशनल बो डे है. फैशन में थोड़ा क्यूट और स्टाइलिश टच ऐड करने का दिन है. प्यारा सा बो लगा लीजिए, बो टाई. फिर आज है नेशनल एविएशन डे. सपनों को ऊंची उड़ान देने का रिमाइंडर, आसमान लिमिट नहीं, शुरुआत भी हो सकता है. और आज है नेशनल फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड फोटो डे, क्योंकि तस्वीरें सिर्फ फोटो नहीं, हमारी यादों की टाइम मशीन है. आखिर में नेशनल सॉफ्ट आइसक्रीम डे, जरूर खा लीजिए एक चिल्ड सॉफ्ट सर्विंग आइसक्रीम की, फेवरेट आइसक्रीम की. तो ये है आज के स्पेशल डे. आप तक पहुंचाए मस्ती की रेलगाड़ी पर. छोटा सा ब्रेक, वी विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड. आप एंजॉय कर रहे हैं अपनी पावर ड्राइव विद शॉन एक्सप्रेस, मस्ती की रेलगाड़ी. अपने बिजनेस को दीजिए एक्सप्रेस स्पीड. फॉर एडवर्टाइजिंग कॉल 416-569-7812, 416-569-7812.
2: You work hard, manage to make both ends meet. Right combinations do miracles. If tax and accounting is your need, think Rajiv Madan. Depth of experience, passion for accounting. Tajurba wahi jo kaam aaye, aapko fayda pahunchaye. Certified General Accountant, Rajiv Madan. Tax accounting ke sabhi pehluon par paini nazar. Fark aazmane pe pata chalega. Call CGA Rajiv Madan, 905-362-2200. 905-362-2200.
3: 2970 Drew Road, Suite 214B, Mississauga.
2: CGA Rajiv Madan. Thoughts become things.
4: Another Don Clean with the Don Ducks.
5: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
6: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
5: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
6: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
5: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
6: What are you quacking on about? He's gonna... make enchiladas.
5: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
4: Dawn Platinum, the better grease getter.
7: Hashtag Holmes and Rahul Kashyap आपके लिए लेकर आए हैं Brampton and Caledon border पर at Mayfield and Gore, freehold towns from mid 700s, semis from mid 800s and detached homes from mid 900s. Master plan community of 2500 homes with cricket pitch, tennis, basketball and pickleball courts, dog park and kids splash pads as neighborhood amenities. Only 10% deposit over 365 days and closing later 2027 to early 2028. To book your lots, call Rahul Kashyap 647-993-4844. 647-993-4844.
8: ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪੈਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਪੈਣਾ।

0: ਉੱਚੀ ਬਾਰਾ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਦਿਲ ਤੇ ਥਵਾਰੀ ਏ
1: ਫੋਰ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਫਰੇਮਸ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸਨਗਲਾਸਿਸ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਡਾਟ ਕਾਮ ਔਰ ਕਾਲ 416-922-5263 ਕਾਂਡਾ ਆਪਟੀਕਲ ਦ ਨੇਮ ਯੂ ਕੈਨ ਟਰਸਟ
2: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट 31 मेलनी ड्राइव यूनिट 5 ब्रैम्पटन 9054586808।
3: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam Sanjeev Puri.
4: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walking clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai.
3: You will get full refund if super visa is declined.
4: Iske ilawa bachcho ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance के लिए भी कॉल करें संजीव पुरी 416-890-3232-890-3232।
5: आप सुन रहे हैं शॉन एक्सप्रेस ऑन CMR FM 101.3। शॉन एक्सप्रेस म्यूजिक जो करे आपको इम्प्रेस।
6: दोस्तों थैंक यू सो मच, आप लोगों का मैसेज आया कि ये जो नेशनल सॉफ्ट आइसक्रीम डे है, एक प्यारा सा डेजर्ट खाने का आपका मन हो गया है। डोंट वरी, आपके लिए हमने जलेबी प्लान की है बिफोर एंड ऑफ द शो, और डेफिनेटली वो जलेबी आपका जरूर टेस्ट कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले एक बड़ा हैवी मील खाने के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे अमेजिंग प्रोजेक्ट्स और ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ आपके खूबसूरत घर का जो ड्रीम है ना, वो पूरे करने की पूरी की पूरी जिम्मेदारी उठा ली है हैशटैग होम्स ने। ये इनके बारे में एक चीज बड़ी मशहूर है कि ये मार्केट के हिसाब से चलते हैं, जैसा मार्केट वैसा प्रोडक्ट आप तक पहुंचाते हैं, उसको अफोर्डेबिलिटी में लेकर ही आते हैं। राहुल कश्यप, ब्रोकर ऑफ रेकर्ड फ्रॉम हैशटैग होम्स इज जॉइनिंग अस अगेन। राहुल जी, वेलकम बैक।
7: जी शान जी, गुड आफ्टरनून टू यू एंड आवर लिसनर्स वंस अगेन।
6: गुड आफ्टरनून राहुल जी, और आई नो आज आप बहुत बहुत बिजी हैं, तमाम बिल्डर्स जो है ना आपको छोड़ते नहीं है, दे ऑल वांट टू बी विद यू, बिकॉज आप जो है ना बल्क में उनके लिए डील्स तैयार करते हैं और इतने लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। और कौन सोच सकता था कि ब्रैम्पटन के एक ही इलाके में आप टाउन होम्स भी ले आएंगे, सेमी डिटैच भी ले आएंगे और फिर डिटैच भी ले आएंगे। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम देयर।
7: जी बिल्कुल, यू सेड इट राइटली कि जो ये प्रोजेक्ट आया है, दिस इज राइट एट द बॉर्डर ऑफ कैलेडन एंड ब्रैम्पटन, क्योंकि मेफिल ऊपर है, राइट बिसाइड चेंकोजी। इट्स अ मास्टर प्लान कम्युनिटी और दिस इज अ सेकंड फेज, बट द प्राइसिंग इज अमेजिंग, बिकॉज अगर हम फ्री होल्ड ट्रेडिशनल टू स्टोरी टाउन होम विद अ बैकयार्ड, ड्राइववे, गैराज, हम उसकी बात करें, थ्री बेडरूम्स, टू एंड अ हाफ वॉशरूम, 1,550 स्क्वायर फुट के आसपास के यूनिट हों, उसकी प्राइसिंग स्टार्टिंग एट 679,000।
6: Awesome.
7: 679,000 is the starting price point for these freehold, completely freehold traditional townhomes. और साथ ही साथ हमारे पास dual car, double car garage townhomes भी हैं, वो भी absolutely freehold हैं. We have options for semi-detached as well, जो शुरू होंगे from 799. और जो detached हैं, हमारे पास उसमें lot sizes हैं 36, 38 and 41 footers, starting from 1.1 million. So we have something for everybody. This is a master plan community. तो ये नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ 100 घर बनेंगे या 200 बनेंगे. It's a large master plan community है. This is phase two, but the pricing is even better than the phase one at this point, because HST rebate is already taken out. So these pricing are net of HST, extended deposit structure है, cap levy है यहाँ पे, and you know this is a growing neighborhood. So anybody that's looking कि आप Brampton में नहीं रहना चाहते, आप Caledon में रहना चाहते हैं, because you want to pay less taxes, you want to have a better insurance rates. I know this because I live in Brampton, so मुझे पता है कि उसकी value क्या है, जो आपकी property tax से थोड़ा कम हो जाए वो भी अच्छी बात है, आपकी insurance थोड़ी कम हो जाए, so that's also a good thing. So this project offers that to all the buyers. So absolutely, if you are in the market, even if you're first time home buyer, 679 से यहाँ पे free hold down homes शुरू हो रहे हैं, and double car garage down homes they're starting from 699. So it has something for everybody. Now that's one site that got launched yesterday. और इस प्रोजेक्ट की जो साइनिंग है वो इस वीकेंड से शुरू हो जाएगी, एंड वी आर ऑलरेडी रिजर्विंग यूनिट्स फॉर आवर क्लाइंट्स, सो गेट इन टच विद आवर टीम, डोंट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी गाइस, वी वांट टू मेक श्योर वी सिक्योर्ड यू द बेस्ट प्राइसिंग, बेस्ट लॉट्स ऑफ योर रिक्वायरमेंट, एंड वी वांट टू मेक ऑल आवर बायर्स हैप्पी। नंबर टू जो हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसकी मैं कल लास्ट वीक से बात कर रहा हूँ, विच इज डिटैच होम कमिंग अप इन ब्रैम्पटन राइट एट हेरिटेज रोड एंड स्टील्स एवेन्यू वेस्ट. ये कल लॉन्च होने वाले हैं. रोजमॉन्ट का प्रोजेक्ट का नाम है बाय हैले होम्स एंड यहाँ पे 38 फुट और 41 फुट लॉट्स आने वाले हैं. ओनली 59 ऑफ देम. तो ये वेस्ट ब्रैम्पटन हेरिटेज रोड स्टील्स का एरिया है और यहाँ पे जो प्राइसिंग शुरू होने वाली है दैट्स स्टार्टिंग एट 1,099,000. Meaning you are below the resale average right now in that neighborhood for the last 90 days. 35 foot ke purane ghar wahan pe bike hain 1.3 million ke average pe. Hum lekar aaye 38 footers, standard lots, you know, with extra deep lots as well, starting from 1,099,000. So you really can't go wrong with something like that. Aur sirf yahi project nahi challenge, we have another one secured. That's a great opportunity for first-time home buyers, even investors. Bridgeview mein hum town homes lekar aaye hain. Minimum two bedrooms, but every townhome comes with two-car parking. And the starting pricing on those townhomes is $439,000.
6: Unbelievable, so, Rahul ji.
7: $439,000 stayed, two-bedroom units with dual-car parking included. Aapko second parking buy karne ki koi zarurat nahi, aapko extra pay karne ki zarurat nahi. That is included in that price range. Aur hamare paas price range jo hai, wo $439,000 se leke less than 540 ke jo ye threshold hai uske beech mein hai. 10% ka yahan pe deposit hai. That's over 1 year. Aapki closing 2028 ki hai. So if you are a first time home buyer, you want to get into the housing market, aap east end mein dekhte hain, especially aap Scarborough, Pickering, Ajax, Ottawa ka area aap dekhte the, but aap Ridley miss out kar gaye. Don't miss out guys. This is the best pricing. 439 mein double car parking, two bedroom minimum, you can't go wrong with something like that. Aur saath hi
6: saath
7: अगर आपको इस प्रोजेक्ट की डिटेल चाहिए, यू हैव टू ऑल यू हैव टू डू इज गेट इन टच विद आवर टीम एंड ऑन दिस साइड इज व्हाट चैलेंज ही यू नो व्हाट वी आर गोना ऑफर 100 एचडीवी.
6: सो एनी बायर
7: हु बाइज दीस टाउन होम्स इन विडवी विद अस, वी आर गोना मेक श्योर ऑल आवर बायर्स इन दिस साइट इज गोइंग टू बी रिसीविंग 100 एचडीवी. वी जस्ट वांट टू ऐड समथिंग एक्स्ट्रा टू देम ऑन टॉप ऑफ ऑल दीस अमेजिंग इंसेंटिव्स दैट वी आर लॉकिंग इन फ्रॉम द बिल्डर. सो ऑल आवर लिसनर्स हैव टू डू इज गेट इन टच विद अस एंड चाहे आप विडवी में देख रहे हैं, कैलेडन में देख रहे हैं या ब्रैम्पटन में देख रहे हैं, वी हैव समथिंग अवेलेबल फॉर यू.
6: क्या बात है राहुल जी, दैट वाज फैंटास्टिक. और इतनी अच्छी प्राइस रेंज और इतनी बड़ी प्रोडक्ट्स की रेंज, सारा कुछ है दोस्तों राहुल जी के पास. तो अगर आपको बड़े घर चाहिए, डिटैच्ड होम चाहिए, सेमी डिटैच्ड चाहिए, टाउन होम चाहिए, किसी भी इलाके में चाहिए, इवन हार्ट ऑफ डाउनटाउन टोरंटो, एंड लेट्स हियर इट राहुल जी, इज दैट अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेलेबल? जो आपके पास कुछ यूनिट्स थे डाउनटाउन में, हम बात कर रहे थे 400s की रेंज में, तो कुछ लिसनर्स ने पूछा है इज दैट अपॉर्चुनिटी स्टिल अवेलेबल?
7: एब्सोल्युटली, वी स्टिल हैव दोस अपॉर्चुनिटीज टू बेस्ट प्राइस पर स्क्वायर फुट यूनिट इन क्लोजर टू डाउनटाउन टोरंटो. 2030 की क्लोजिंग है, एक्सटेंडेड डिपॉजिट स्ट्रक्चर है वहाँ पे.
6: अच्छा.
7: और साथ ही साथ जो ये आपको हम इंसेंटिव दिला रहे हैं, द टू मेन वंस, वन जीरो ऑक्यूपेंसी फी, यू आर नॉट गोना बी पेइंग एनी ऑक्यूपेंसी फी फॉर दैट साइट, ऑन टॉप ऑफ दैट जीरो डेवलपमेंट चार्जेस एंड योर क्लोजिंग कॉस्ट विल बी कैप्ड एट जस्ट $5,000. दिस इज अ स्पेशल इंसेंटिव दैट वी हैव लॉक्ड इन ओनली फॉर टीम हैशटैग होम साइंस. तो आपको ये कहीं और नहीं मिलने वाला. विल शो द रेगुलर प्राइस लिस्ट and then we'll show you our price list. And the price difference is enormous because we're not only getting you reduced pricing, we're not only getting saving you money on occupancy fees, which can range anywhere between, you know, $30,000 to $50,000, depending on how long it takes for the unit to close. Plus, we're going to save you thousands in levy charges, development charges, and we're making sure your closing cost from the developer is capped at only $5,000. And this is for a project जो कुछ मिनट दूर है डाउन टाउन टोरंटो से. सो गाइस, दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी एज वेल. एंड चैलेंज अगेन, जो भी हमारे लिसनर्स हैं, ऑल दे हैव टू डू इज गेट इन टच विद अस फॉर देयर रियल एस्टेट रिक्वायरमेंट एंड वी आर गोना मेक श्योर कि उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वी रेकमेंड द प्रोडक्ट. बट अगेन, द डिसीजन मेकिंग वी लीव इट ऑन द ऑन टू आवर क्लाइंट्स. दे हैव टू डिसाइड व्हिच वन वर्क्स फॉर देम बेस्ट.
6: That's right. तो इसीलिए दोस्तों नंबर नोट कर लें, हॉटलाइन नंबर है राहुल कश्यप जी जो ब्रोकर ऑफ रेकर्ड है हैशटैग होम्स के, कॉल या टेक्स्ट भेजिए राइट अवे 6479934844 6479934844. राहुल जी, थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे, और फिर आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी. ऑल द बेस्ट
7: जी. बिल्कुल, थैंक यू सो मच
6: जी. You're most welcome. And thank you so much, दोस्तों. अब मुझे decide करना था जलेबी और जलवा के बीच में, तो फिर मैंने चुना है आज जलवा, क्योंकि सलमान खान की खबर है कि नई इंटरनेशनल एक्शन फिल्म सेवन डॉग्स इंडिया में 21 अगस्त को थिएटर्स में रिलीज होने जा रही है. आई एम श्योर यहाँ पर भी होगी. और फिल्म के जो डायरेक्टर्स हैं आदिल एल अरबी और बिलाल फराह, उन्होंने सलमान के साथ काम करने का अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. उन्होंने कहा कि सलमान जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं कुछ मैजिक सा हो जाता है. और फिल्म में संजय दत्त भी एक बड़े इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे और हॉलीवुड के स्टार्स भी होंगे इसमें. $40 मिलियन के बजट में बनी है और इसका बड़ा हिस्सा रियाद सऊदी अरब में शूट हुआ है. और सलमान खान और संजय दत्त के फैंस के लिए सेवन डॉग्स एक जरूर एक्साइटिंग फिल्म होने वाली है 21 अगस्त से थिएटर्स में. इसी के साथ आप तक पहुंचाते हैं जलवा फ्रॉम द मूवी वांटेड, मस्ती की रेलगाड़ी के आज आखिरी प्रेजेंटेशन आज की. आप शालिनी को दे इजाजत शो के बाद. फॉर ऑल योर एडवर्टाइजिंग नीड्स हमारा डायरेक्ट नंबर 416-569-7812, 416-569-7812. कल तक के लिए दे इजाजत. नमस्कार.

मित्र भाइयों, ये है जेएम 101.3 विद अमिताभ जी और जतीन। बंदर भाइयों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और वनकम। टैरिफ की तलवार थी सर पर 3 दिन टल गई है आफत। टैरिफ की तलवार थी सर पर 3 दिन टल गई आफत। अमेरिका और कनाडा के बीच कुछ तो सुधरी है सियासत। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास सफर में। जानिए क्या है इसके पीछे की असली हकीकत, बस कुछ ही पल में। हाँ जी बिंदर भाइयों, जेम 101.3 जरा सुनिए तो।

0: Haan, Mom. Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
1: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
0: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo fettis, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi and my favorite, samosa chaat and bhel.
2: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
3: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर. हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं. हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है. अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111. अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर अर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस. आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111.
4: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ मैं.
5: जी बिल्कुल, बच्चे और बड़े बुजुर्ग सभी को अपनी मनपसंद कहानियाँ सुनने आना है हर रोज शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 टू एक्सपीरियंस अ न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.

0: पुरी ऑफ स्टार लाइफ इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंक एक ब्रोकर है और डील करते हैं सारे मेजर कंपनीज के साथ. ही कैन शॉप अराउंड फॉर यू फॉर द बेस्ट प्लान्स ऑफ इंश्योरेंस दैट विल सूट योर बजट एंड नीड्स. संजीव पुरी इंश्योरेंस प्लान्स में तो माहिर है ही, लेकिन हाई रिस्क इंश्योरेंस प्लान्स के बेस्ट रेट्स दिलाने में बहुत ही माहिर है. तो अगर किसी को ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट अटैक, बाईपास सर्जरी, लिवर या किडनी के इश्यूज हो या इंश्योरेंस कंपनी ने आपकी इंश्योरेंस डिक्लाइन की है, तो संजीव पुरी को आप कॉल करेंगे फ्री कोट के लिए. और अगर आपको लगता है कि आप इंश्योरेंस पॉलिसी के बहुत हाई प्रीमियम पे कर रहे हैं, तो पॉलिसी रिव्यू करवाने के लिए भी संजीव पुरी 416-890-3232.
1: Another Don Clean with the Don Ducks.
2: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
3: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
2: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
3: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
2: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
3: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
2: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
1: Dawn Platinum, the better grease getter.
4: मम्मा, इस बार मैं भी कृष्णा बनूंगा
5: और मैं कृष्णा के लिए मक्खन लेकर आऊंगी.
6: अच्छा जी, तो ठीक है, इस बार भी हमेशा की तरह हम चलेंगे इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर और अपने कृष्णा के लिए सुंदर सा क्राउन, पीकॉक फेदर और बांसुरी भी लेंगे और कृष्णा की दीदी के लिए भी बहुत सुंदर सी ड्रेस लेंगे.
7: इंडिया सजावट एंड पूजा हट पर आएं और कृष्ण महोत्सव की ढेरों खुशियां मनाएं. खरीदिए कृष्ण जी के ब्यूटीफुल स्टैचूज, जगमगाती ढेरों ड्रेसेस और सजावट का सामान भी. इंडिया सजावट एंड पूजा Hut, 31 Melanie Drive, Unit 5, Brampton, 905-458-6808.
8: Craving something truly authentic? Mumbai Grill in Ajax has been delighting taste buds for 18 years. Jo specialized in mouth-watering momos plus tandoori and butter chicken momos. Jahan milenge best of South Asian cuisine. Miss out mat karna unka famous lunch and dinner buffet. Signature dishes like butter chicken and shahi paneer. Agar food aapko karta hai excite, to zarur pahunche Mumbai Grill at 619 Kingston Road, Ajax. Call kare at 905-239-4077 ya visit kare MumbaiGrill.com. Available for small and very large group catering services. Mumbai Grill, yummy food that thrills.
9: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
10: जी हाँ, करण अर्जुन, राम श्याम, सीता गीता और आप सभी को बस ट्यून करना है हर शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 फॉर अ ब्रांड न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो.
11: हाँ जी मित्र भाइयों, ये है जेएम 101.3 विद अमिताभ जी और जतीन. अजीब दास्तान, आज खय्याम जी के बारे में बात करेंगे क्योंकि आज 19 अगस्त 2019 को खय्याम साहब ने आखिरी सांस ली थी. क्या आप जानते हैं खय्याम साहब ने अपने करियर की शुरुआत शर्मा जी वर्मा जी जोड़ी के रूप में शर्मा जी नाम से की थी. बाद में उन्होंने अकेले काम किया और अपना नाम खय्याम रख लिया. हाँ जी, ये मंजिल कौन सी है जिंदगी में पता नहीं चलता, क्योंकि संगीत की दुनिया में आने से पहले खय्याम साहब ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी. केएल सहगल के दीवाने खय्याम फिल्मों में काम करने की जीत को लेकर कम उम्र में बिना बताए घर से दिल्ली भाग गए थे, जिसके बाद उन्होंने कड़ा संघर्ष किया. फिल्म शोला और शबनम के गाने जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें, इसके लिए महान गायक मोहम्मद रफी साहब ने 21 रिटेक दिए थे, जबकि रफी साहब आम तौर पर पहली बार में ही गाना परफेक्ट गा देते थे, लेकिन उन्होंने कहा खय्याम साहब के बोल है, उनके बोल को मुझे मेरी आवाज से जिंदा करना है. वैसे फिल्म उमराव जान से पहले आशा भोसले ने कभी कोई गजल नहीं गाई थी, खय्याम साहब ने ही उनसे उस फिल्म में अमर गजलें गवाई और आशा जी ने धुनों के अभ्यास के लिए रिकॉर्डिंग 8 दिन तक टाली थी. खय्याम साहब और उनकी पत्नी जगजीत कौर जी ने अपनी पूरी कमाई लगभग 10 करोड़ रुपए नए कलाकारों और टेक्नीशियनों की मदद के लिए एक चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी, है ना बहनर भाइयों? खय्याम साहब की जिंदगी की ये है अजीब दास्तां। ये है जेएम 101.3।

0: अगर फ्यूचर ट्रेडिंग और क्रिप्टोकरेंसी में है आपका इंटरेस्ट, लेकिन आपको पता नहीं शुरुआत कैसे करें या इसमें सक्सेसफुल कैसे हूँ, तो कॉल कीजिए कुमार 9059294881। कुमार आपको अपनी कई सालों की ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आपको गाइड करेंगे एक्सपर्टली यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यानी आप इजिली 100 से $300 बना पाएंगे हर दिन। बस चाहिए एक फास्ट कंप्यूटर, इंटरनेट कनेक्शन, टाइम, डेडिकेशन और कुमार के एक्सपर्ट गाइडेंस। टू बिकम एन एक्सपर्ट ट्रेडर कॉल 9059294881 और विजिट kumartradesolutions.com।
1: घर कहीं भी लेना हो या

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: Dad is in a jolly good mood today. What is the reason?
4: This is the effects of famous masala chai by Navigator's Cafe.
3: I know this place. They're also famous for delicious snacks like aloo patties, samosa, vada pav, spring rolls, mango lassi, and my favorite, samosa chaat and bhel.
5: Navigator's Cafe, located at northwest corner of Queen Street East and Airport Road in Brampton. They are conveniently open 24/7.
6: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियां इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा। ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट, 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन, 9054586808।
7: अगर बॉलीवुड आपके दिल में है और क्रिकेट आपके खून में, तो ये प्रोग्राम है आपके लिए। Get the latest community updates, filmy masala and cricket ka tadka, Hindi, English aur Urdu ke apne pyare andaaz mein. Maza bhi, malumat bhi. Jam 101.3, zara suniye toh.

0: Lifetime. Learn to earn at Win Lifetime. Call 905-206-1008.
1: Medical insurance for new immigrants, the visitors insurance and super visa insurance ke best rate and best plan ke liye ek hi naam.
2: Sanjeev shop around karke aapko behtareen rate aur plan ki guarantee dete hain jisme khansi, zukham, bukhar, slip and fall, walk-in clinic doctor ke fees, medicine and test ke kharche se lekar ambulance hospitalization and funeral tak sab covered hota hai. Iske ilawa bachon ki RESP, life insurance, mortgage insurance, funeral insurance, critical illness insurance, disability insurance ke liye bhi call kare Sanjeev Puri 416-890-3232.
3: Another Don Clean with the Don Ducks.
4: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
5: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
4: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
5: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
4: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
5: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
4: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
3: Dawn Platinum, the better grease getter.
6: सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर. हम हमारे खानदान से नब्ज देकर सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों द्वारा करते हैं. हमारे क्लाइंट्स को हमारे इलाज से बहुत फायदा हुआ है. अगर आप इन समस्याओं का जड़ से इलाज चाहते हैं तो तुरंत हमारा कांटेक्ट करें 6473278111. अस्थमा और एलर्जी, त्वचा की बीमारियां, कमर या घुटनों में दर्द या फिर आर्थराइटिस, बालों की समस्याएं, गैस अल्सर और पेट से जुड़ी समस्याएं, लेडीज प्रॉब्लम्स, वेट लॉस और सोराइसिस. आज ही संपर्क करें केरला वैद्य रत्न पीवी राज, ब्रैम्पटन और स्कारब्रो, 6473278111, 6473278111.
7: याद रखना दुर्जन, मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे.
8: जी हाँ, करण अर्जुन, राम श्याम, सीता गीता और आप सभी को बस ट्यून करना है हर शाम 4 से 5 बजे ऑन CMR 101.3 फॉर अ ब्रांड न्यू ड्राइव टाइम शो जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ. जरा सुनिए तो. वेलकम बैक. जैम 101.3 पर एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूं आपका दोस्त अमिताभ. दोस्तों, अपना पहला घर खरीदने का प्लान हो, प्रॉपर्टी बेचने का फैसला हो, इन्वेस्टमेंट का सवाल हो या रिटायरमेंट में डाउनसाइजिंग की तैयारी, रियल एस्टेट हर फैमिली के लिए सिर्फ मार्केट की बात नहीं, जिंदगी का एक बड़ा ही अहम फाइनेंशियल डिसीजन होता है. और इसीलिए हर वेंसडे जैम 101.3 पर हम लेकर आते हैं जीटीए भर का एक बड़ा ही रिस्पेक्टेड टॉक शो, रियल एस्टेट पर चर्चा विद पी के सबरवाल. कई दशकों के तजुर्बे के साथ सबरवाल साहब जीटीएचए हाउसिंग मार्केट की ग्राउंड रियलिटीज, नए ट्रेंड्स और आपके प्रैक्टिकल रियल एस्टेट सवालों पर बातें करते हैं. तो अगर रियल एस्टेट का को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो फोन उठाइए और सबरवाल जी से डायरेक्टली बात कीजिए. स्टूडियो की लाइन्स अब खुल चुकी हैं और स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055. That's 593-0055. सबरवाल साहब आज तकरीबन 4:50 तक हमारे साथ जुड़े रहेंगे, तो आप भी इस मौके का फायदा जरूर उठाएं और तुरंत कॉल कीजिए. सबरवाल साहब, वेलकम बैक टू योर वीकली शो ऑन जैम 101.3. स्वागत है. हेलो सबरवाल साहब, क्या हम आपके आपके हम आपको सुन पा रहे हैं? आर यू एबल टू हियर अस?
9: यस प्लीज. या वी कैन, आई कैन हियर यू.
8: हेलो.
9: यस आई कैन हियर यू.
8: हेलो सबरवाल जी की आवाज हम तक अब नहीं पहुंच पा रही. वी विल ट्राई अगेन इन 2 मिनट्स. लेट्स मूव टू अ सॉन्ग.

0: सॉरी अबाउट दैट, सम टेक्निकल इश्यू, तकनीकी खराबी के कारण सबरवाल जी से हमारा संपर्क थोड़ी देर के लिए जुड़ गया था, पर अब वो हमारे साथ हैं। चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। सबरवाल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका जैम 101.3 पर।
1: थैंक यू वेरी मच अमिताभ जी, एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल अवर लिसनर्स।
0: जी सबरवाल साहब, मार्केट के हालात और रियल एस्टेट से जुड़ी खबरें तो हम आपसे लेंगे ही, पर पहले ये बताइए कि इस ये हफ्ता आपका अभी तक का कैसे जा रहा है, अच्छा बुरा, या आजकल जैसे लोग कहते हैं इट्स कॉम्प्लिकेटेड, क्या कहेंगे आप?
1: नहीं मतलब कॉम्प्लिकेशन तो हमारे दिमाग में होती है सर
0: जी,
1: और तभी फिर वो आसपास मंडरा जाती है और हमारे आसपास के हालात हमारी हमारी सोच पे डिपेंड करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो मेरे ख्याल से तो मैंने कभी नेगेटिव सोचा ही नहीं और कभी नेगेटिव कुछ हुआ ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: बाकी रियल एस्टेट की अगर मुतलक बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है, बल्कि जो जो खराब चल रहा था
0: जी
1: वो होना नहीं चाहिए था। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड,
0: राइट।
1: जब बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ रहे थे वो भी गलत है, जब बहुत ज्यादा नेगेटिव चल रहे थे तो भी गलत है, और अब अगर मार्केट में थोड़ी एक्टिविटी स्टार्ट हुई है तो आई वुड से कि ये कुछ तो शुरू हुआ,
0: दैट्स अ गुड साइन।
1: बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन मैं अगर रियल एस्टेट की अगर आपको फिगर्स बताऊं तो इंडियन हाउसिंग स्टार्ट जो है वो गिर गए हैं, 19% ईयर ओवर ईयर डाउन हुए हैं जुलाई के महीने में
0: जी,
1: और इसका रीजन बताया जा रहा है डेवलपमेंट कॉस्ट
0: ओके
1: और वीकर बायर डिमांड, ये दो बातें बड़ी वीक हैं, बड़ी कमजोर हैं, जिसकी वजह से डेवलपर जो है हाथ नहीं डाल रहा प्रोजेक्ट।
0: सबरवाल साहब, अगर मैं एक मिनट पूछूं आपसे, क्योंकि दिस इज अगेन अ न्यू टर्म फॉर मी एंड आई एम श्योर फॉर लॉट ऑफ अदर लिसनर्स, गवर्नमेंट कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मैं समझ नहीं पाया, आपको जानकारी डेफिनेटली होगी।
1: मतलब बिल्डिंग कॉस्ट कह लो चलो, एक किस्म से डेवलपमेंट कॉस्ट मतलब बिल्डिंग बनाने की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कह लो चलो।
0: अच्छा,
1: बिल्डिंग डेवलप करने की कॉस्ट टोटल जमीन से लेकर हाथ में चाबी देने तक
0: जी,
1: वो प्लस इसके अंदर डेवलपमेंट फीस और चार्जेस होते हैं
0: जी,
1: वो तो इंक्लूड है, लगभग 100,000 से ऊपर है। डेवलपमेंट चार्ज अलग बात है, डेवलपमेंट कॉस्ट अलग बात है, यानी मैं कह रहा हूँ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कह लो चलो वो ज्यादा अच्छे,
0: गॉट इट,
1: इसको अच्छा कहना। और उसके ये 19% और सीएमएससी जो है कनाडा मॉर्गन हाउसिंग कॉर्पोरेशन, इन्होंने अभी रिकॉर्ड दिया है कि 18,834 एक्चुअल स्टार्ट्स शुरू हुए हैं इन द सिटी सेंटर्स वेयर द पॉपुलेशन इज मोर देन 10,000 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई, विच इज डाउन फ्रॉम 23,155 यूनिट्स इन जुलाई 2025। बहुत जबरदस्त कम हो गया। ईयर टू डेट जो है ये हाउसिंग स्टार्ट 131,851 रहे हैं, मतलब अब तक जुलाई तक, जो कि 4% ऑफ फ्रॉम द सेम पीरियड लास्ट ईयर, यानी कि कंस्ट्रक्शन दिन ब दिन कम होती जा रही है, जो कि डर पैदा कर रहा है कि अगले आने वाले 2-3 सालों में बहुत बड़ी शॉर्टेज होने वाली है। एक इसके अंदर और प्रॉब्लम आ रही है कि यूनिट जो अप्रूव हुए हैं, परमिट जिनके अप्रूव्ड हो गए हैं जिन बिल्डर्स के पास, डेवलपर्स के पास, वो भी उसमें हाथ नहीं डाल रहे। वो परमिट पास होने के बावजूद, परमिट का खर्चा होने के बाद भी, प्रिलिमिनरी परमिट कहते हैं इसको, वो होने के बावजूद भी हाथ नहीं डाल रहे, और वो एक और बड़ी डर वाली बात है। और वो यूनिट पता कितने हैं, आप हैरान हो जाओगे, 141,000।
0: वाओ, दैट्स अ बिग नंबर,
1: 1,480,000। तो इतना जबरदस्त जो है परमिट पास होने के बाद हाथ ना डालना, मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं अमिताभ जी की कितनी जबरदस्त शॉर्टेज होने वाली है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। तो आने वाला वक्त मतलब थोड़ा सा टेंशन वाला ही रहने वाला है, ऐसा मेरे को समझ में आया।
1: जैसे आप उस दिन मेरे को मिले तो मैं आपको कह रहा था कि मैंने 7 प्रॉपर्टियां खरीदी हैं
0: जी,
1: और ये भी आपको मैंने कहा था कि मैं तंग हो चुका हूँ
0: जी,
1: तंग होने के बावजूद भी मैंने खरीद ली,
0: राइट,
1: क्योंकि मुझे फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है।
0: ओके।
1: और मैंने एक बात ये भी कही थी कि मेरे वक्त में, मेरी जिंदगी में, मेरी लाइफ में, मुझे नहीं लगता ये वक्त ऐसा दोबारा आएगा फॉर ए बायर। जब प्राइस आपके 8 से 9 साल पीछे चले जाए, आप यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना जबरदस्त आपके हाथ में अपॉर्चुनिटी। आप 2017 के 2018 के प्राइस ले रहे हो इस वक्त, खरीद रहे हो, तो ये मौका मेरे हिसाब से खरीदने का नहीं आ सकता। चाहे तंग होके ले लो, पर ये बाइंग का टाइम है, और जो लोग ले चुके हैं वो पैनिक होके ना बेचें, उनको होल्ड करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी कमा के देगी। मेरी जिंदगी में ये 8वां झटका है,
0: 8वां,
1: और हर झटके मेरी खुद की जिंदगी में 55 डिकेड के अंदर, और हर झटके में मैंने कमाया है ना कि गवाया है। अगर आप भीड़ के पीछे चल पड़ोगे तो जो भीड़ करेगी वही करोगे,
0: बिल्कुल।
1: तो अगर आप भीड़ के साथ ना चलो और अपने हिसाब से चलो तो नेचुरली डिमांड एंड सप्लाई में गैप पड़ जाएगा। भीड़ बाय कर रही है आप बेचना शुरू कर दो
0: जी,
1: बेच रही है आप खरीदना शुरू कर दो
0: जी,
1: बिल्कुल रिवर्स चलो मेरे हिसाब से।
0: हाँ जी, तो सबरवाल जी का कहना है कि भीड़ के साथ ना चले, अपने अपने अपने जजमेंट को ट्रस्ट करें और अपने जजमेंट अपने डिसीजन को सही बनाने के लिए सबरवाल जी बैठे हैं हमारे स्टूडियो में। फोन की लाइंस खुली हुई हैं, बस आपको फोन उठा के कॉल करना है। स्टूडियो का नंबर है 416-593-0055। सबरवाल जी हमारे साथ जुड़े रहेंगे करीबन 4:50 तक, लेकिन आप वेट ना करें, अभी फ़ोन करें। सबरवाल जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए मेरा एक क्वेश्चन था, लेकिन आपने शायद उसका आंसर ऑलरेडी दे दिया है, फिर भी मैं पूछ लेता हूँ। मान लीजिए एक यंग मिसिसागा कपल ने 2021-22 में कॉन्डो लिया था, आज कंपेरेबल यूनिट्स उनके परचेज प्राइस से नोटिसिबली नीचे सेल हो रहे हैं, मॉर्गेज रिन्यूअल भी उनका आ चुका है, सो वुड यू टेल देम टू टेक द लॉस एंड सेल, बिकम अ लैंडलॉर्ड और सिंपली होल्ड ऑन फॉर अनदर 2 or 3 years? आई थिंक आपने आंसर कर दिया, फिर भी अगर थोड़ा और बोलना चाहे प्लीज।
1: हाँ बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि 2021 में जिसने दिया था
0: जी,
1: अगर वो रीसेल से लिया था या प्री कंस्ट्रक्शन से
0: जी,
1: दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट 20%।
0: ओके,
1: अब मुझे बताइए घाटा खाने के लिए तो नहीं लिया था उन्होंने।
0: ओके,
1: और ये जो है अगर उनका
0: जी
1: गुजारा बिन लॉस खा के चलता है और उनकी दिनचर्या ठीक चलती है और दे हैव कैपेसिटी टू टेक दैट लॉस, आई विल नेवर एवर सेल दैट प्रॉपर्टी, नेवर वेट टू बाय रियल एस्टेट, बाय रियल एस्टेट एंड वेट। ये मेरा डायलॉग आपने सुना होगा।
0: Got it. जैसा आप अक्सर और एवरी थर्ड वीक ये आप जरूर बोलते हैं कि डोंट वेट टू बाय रियल एस्टेट,
1: बाय रियल एस्टेट एंड वेट। अगर आप वेट नहीं कर सकते थे तो आपने लिया क्यों था?
0: राइट,
1: ये ग्राफ गिरता जाएगा उठता जाएगा, गिरता जाएगा उठता जाएगा
0: जी,
1: पर ना गिरने पे मैंने बेचना है
0: जी,
1: ना उठने में मैंने बेचना है, मैंने तो सिर्फ इसको रखे रहना है
0: जी,
1: जब तक मेरी इन्वेस्टमेंट 3 times नहीं हो जाती।
0: 3 times
1: मेरा थंब रूल है
0: जी,
1: मेरी इन्वेस्टमेंट मान लीजिए मैंने 1 million का घर लिया
0: जी,
1: और 1 million घर के तो मैंने 20% डाउन पेमेंट करी है
0: जी,
1: तो 2 lakh मैंने डाले हैं, जब तक मेरे 2 lakh 6 lakh नहीं हो जाते उससे पहले तो मैं सोचूंगा ही नहीं बेचने की।
0: वाह, ओके जी,
1: सिंपल फार्मूला है। और क्योंकि कीमत गिर रही है बेच दो, अरे भैया क्योंकि कीमत गिर गई है तो खरीद लो, बेच के लो। और अगर आप कहते हैं पैसे नहीं है खरीदने के लिए
0: जी,
1: तो बेच के पैसे क्या करोगे, मूंगफली खाओगे क्या? क्यों क्यों बेच के रहे हो अगर आपका घर का गुजारा चल रहा है
0: जी,
1: तो पड़े रहना तो ना, वो प्रॉपर्टी आपको कमाएगी प्रॉपर्टी। टेक केयर ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स एंड द इन्वेस्टमेंट्स विल टेक केयर ऑफ यू, ये डायलॉग आपने सुना ही होगा।
0: बिल्कुल सुना है सबरवाल जी, और हमारे 2 callers हमारे साथ जुड़ने की चेष्टा कर रहे हैं, तो क्यों ना एक एक करके उनसे वार्तालाप किया जाए। हेलो, आप जैम 101.3 पर लाइव हैं, सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड।
2: या गुड इवनिंग सर, हमने पैट्रिक में कॉन्डो बुक किया था।
1: कौन से में? सॉरी आपकी आवाज कट गई, कहाँ किया था?
2: पैट्रिक, पैट्रिक
1: फ्रेडरिक में किया था, कैमरोस का प्रोडक्ट है ये, और ये आपका ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन आगे क्या कहना चाहते हैं
2: आप? तो सर जब बुक किया था तो वो 1.18 में बुक किया था, आज उसकी वैल्यू कम है, तो अभी उसको क्लोज करने में मुश्किल आ रही है, और ऑक्यूपेंसी नेक्स्ट
1: नहीं आ रही मुश्किल, नहीं बिना पूछे बता रहा हूँ नहीं आ रही मुश्किल। मैं बताता हूँ, यू आर रिचर देन व्हाट यू थिंक। पहले तो मैं आपको जानता नहीं, अपनी इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आपका नाम क्या है?
2: मेरा नाम है सोनल।
1: सोनल, सोनल जी आपने किससे लिया था ये?
2: हमारे एजेंट है अतुल अग्रवाल करके,
1: कोई बात नहीं, नाम मत दीजिए, एजेंट का नाम मत दीजिए, वो बुरा मानेंगे। तो आपने, उनका फर्ज बनता है आपको बिठा के समझाएं, लेकिन अब अगर आपने ले लिया है, पहली बात तो ये कैमरोस्ट बिल्डर का प्रोजेक्ट है, और कैमरोस्ट इज ए लग्जरी बिल्डर, और मैं इनको इस फैमिली को पर्सनली जानता हूँ, डेविड फेल्डमैन जो बुजुर्ग है, उनका बेटा जो है जोसेफ फेल्डमैन, मैं पर्सनली जानता हूँ, और उनके 2 very senior वाइस प्रेसिडेंट्स क्रिस्टोफर कैस्टिलानो और सबरीना, ये चारों की टीम इतनी जबरदस्त है कि आप इसको प्रोजेक्ट को रख लो, प्लस प्रोजेक्ट की लोकेशन बड़ी अच्छी है, 5-star प्रोजेक्ट है। आप बोल रहे हैं कि भी अभी मुश्किल आ रही है, मुश्किल आपको नहीं आ रही, आपको मुश्किल सिर्फ यही आ रही है कि प्राइस गिर गया है, अगर यही प्राइस बढ़ गया था तो आपको कोई मुश्किल नहीं आनी थी। अब रही बात इसके अंदर अप्रेज वैल्यू कम आने की, जो सोनल मुझे लगता है जो आपको मेन डर है कि इसके अंदर अप्रेज वैल्यू कम आ जाएगी, एम आई करेक्ट? एक तो इसमें क्लोजिंग में टाइम लगना है, अभी तो अभी बहुत जल्दी क्लोज होने वाला नहीं है। आपको लेटर लेटेस्ट आया कोई? अभी लेटर आया है कोई?
2: नहीं, ऑक्यूपेंसी का नेक्स्ट मंथ का आया है, क्लोजिंग का नहीं आया सर।
1: नेक्स्ट मंथ का आपका फ्लोर कौन सा है?
2: वो मुझे चेक करना पड़ेगा सर, अभी मुझ पे याद नहीं है।
1: बता देते तो मैं आपको डेट दे देता किस दिन ऑक्यूपेंसी होनी है आपकी, लेकिन कोई बात नहीं, अगले महीने का आपका क्लोजिंग ऑक्यूपेंसी आ रही है, लेकिन आपकी इसकी क्लोजिंग जो है कम से कम 8 महीने बाद है, यानी आपको मॉर्गेज चाहिए अगले 7-8 महीने के बाद। अगर आप मुझे फ्लोर बता देते तो मैं आपको एग्जैक्ट फिगर दे देता, अब अप्रॉक्सीमेट दे रहा हूँ, 7-8 महीने के बाद इसकी क्लोजिंग आ रही है और 7-8 महीने के बाद मुझे मार्केट ठीक होती नजर आ रही है। एक और खुशखबरी मैं आपको दे दूं कि आरबीसी इसको टेक ओवर कर रहा है, मैंने सुनने में आया है कि आरबीसी इसको टेक ओवर कर रहा है, और जब आरबीसी टेक ओवर कर लेगा तो वो ब्लैंकेट मॉर्गेज देगा, अप्रेज वैल्यू की आपको जरूरत ही नहीं है, जितने का लिया उसके ऊपर मॉर्गेज दे देगा। ये बात में खुश हुए सुन के कि नहीं हुए आप?
2: हाँ जी वो सही है सर, पर जितना ब्लैंकेट देगा पर उसको करने के लिए उतना पैसा होना ना, अभी हैंड में कैश नहीं है, ये मुश्किल है।
1: नहीं नहीं, नहीं ब्लैंकेट का मतलब होता है आपको नहीं लाने पैसे, जो 20% दिए उतने ही चाहिए, बाकी पैसे नहीं लाने, बाकी लोन मिल जाएगा।
2: अच्छा
1: ब्लैंकेट का ये मतलब है, अगर अप्रेजल करते हैं और 2 लाख कीमत कम आ गई तो आपको 2 लाख लाने पड़ते हैं। ब्लैंकेट का मतलब है कि जितने का लिया उतने का मान लेगा वो, उसकी अप्रेजल वैल्यू नहीं करेगा, तो आपको एक्स्ट्रा अच्छा। नहीं लाने।
2: ठीक है
0: सोनल जी, बहुत सोनल जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। सबरवाल साहब क्यों ना दूसरे कॉलर के पास चले जो काफी देर से इंतजार कर रहे हैं।
1: हेलो सोनल जी को कह दीजिएगा अगर मिलना चाहती हैं तो मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के मिल भी सकती हैं, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जिससे भी लिया है, मैं आप लोगों के दिया हुआ खाता हूं और मेरा फर्ज है कि आपकी मैं सेवा करूं, नो ऑब्लिगेशन नो चार्जेस। आप सोनल जी मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल के कभी भी मिल सकती हैं, आई कैन डू द नंबर्स फॉर यू। ओके
0: सोनल जी, सबरवाल जी का नंबर है 6472994757, तो अगर आपको उनसे डायरेक्टली बात करनी है तो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए दूसरे कॉलर के पास चलते हैं। सबरवाल साहब हेलो, आप जैम 101.3 पर लाइव हैं, प्लीज अपना प्रश्न पूछिए डायरेक्टली सबरवाल साहब से।
3: सबरवाल जी
1: जी
3: सर, मार्केट किस तरफ जाती हुई दिख रही है, मतलब
1: कुछ नाम बताएंगे सर?
3: सर विनोद नाम है मेरा।
1: विनोद?
3: हाँ जी विनोद,
1: विनोद नाम है आपका। हाँ जी, तो मार्केट किस तरफ जा रही है? मार्केट बैलेंस की तरफ जा रही है। मार्केट पहले बायर्स के हाथ में थी, सेलर्स के हाथ में जब थी तो सत्यानाश हो गया था 20 के बाद, अब उसका बायर्स के बाद चली गई और सेलर सारे परेशान हो गए, अब धीरे धीरे बैलेंस की तरफ जा रही है। लिस्ट टू सेल रेशियो 51.4% हो चुकी है, विच इज कंसिडर्ड गोइंग टूवर्ड बैलेंस। लिस्ट टू सेल रेशियो 51.4 इज नॉट ए बैड रेशियो, तो ये जो है बैलेंस की तरफ जा रही है और मुझे वर्स्ट जाता हुआ नजर आ रहा है कि वर्स्ट जो टाइम निकल गया निकल गया। 3 साल लोगों ने अगर बर्दाश्त कर लिया है तो 1-1.5 साल और बर्दाश्त कर लें। विनोद जी
3: अच्छा जी, और इंटरेस्ट रेट कुछ कम होने का चांसेस है?
1: सर बढ़ने के चांसेस बन गए थे, ये तो बच गए आप। सर ये जो इन्फ्लेशन आई है 3%, इसका मतलब ये होता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए, लेकिन ये जो अलग अलग बैंक्स हैं उनकी मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, अलग अलग इकोनॉमिस्ट की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि ये इन्फ्लेशन जो है ये सिर्फ गैस की वजह से इन्फ्लेशन जो है इतनी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि गैस के अंदर गैसोलीन के अंदर 25.7% का जंप आया कंपेयर टू जुलाई लास्ट ईयर, और जून से 20.5% का जंप था। गैसोलीन को ये लोग टेम्परेरी मान रहे हैं, हरमूज का जो पंगा पड़ा हुआ है, ऊपर से रेड सी के अंदर इन्होंने राउट चेंज कर दिया तो उसकी वजह से महंगा पड़ना शुरू हो गया, तो इसको टेम्परेरी मान रहे हैं, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे। ये तो इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस हो गए थे, गिरने के चांसेस तो मुझे अब नजर ही नहीं आ रहे, अनलेस हमारे भाई साहब बड़े वाले भाई साहब साउथ जो बैठे हुए साउथ ऑफ द साउथ साइड बैठे हुए हैं, कहीं इनको कोई और नया सपना आ गया तो अलग बात है, सपने में कुछ और चीज उन्होंने देख ली और कल आके बोल दी। अब देखो जैसे आज फैसला हुआ कल रात को या आज हुए कि 3 दिन तक उन्होंने और इसको छोड़ दिया जो उनका 50% जंप आ रहा था, तो उससे रिलीफ मिल गया और उसने फट रिपोर्ट दे दी, बिल्कुल बिल्कुल हमारा फैसला हो गया। फैसला हो गया तो फिर 3 दिन के लिए क्यों डिले किया तूने? अब वो जो समझ रहे कीस्टोन की जो पाइपलाइन है जिसके ऊपर मैंने कह दिया करने के लिए, अरे भैया तूने क्या कह दिया, तुम लोगों ने तो मना कर रखा था, कनाडा चाहता था करने के लिए और वो क्रेडिट अपने ऊपर लगे, मैंने कह दिया करने के लिए, हम जीत गए हमने कर दिया, मतलब क्या करें, वो खसाई बिल्ली क्या करते क्या नोचे क्या करें खंबा नोचे, तो वो वाली बात हो गई। तो इसलिए भाई साहब मुझे तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता नजर आ रहा है जो इन चक्रों में बढ़ नहीं रहा, घटने की बात मेरे को तो नजर नहीं आ रही।
3: ओके सर ठीक है,
0: विनोद साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए. सबरवाल साहब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं. मेरे को लगता है सबरवाल साहब, ट्रंप साहब का एक ही है कि कुछ भी पॉजिटिव हो तो उनका क्रेडिट उन्हीं को मिलना चाहिए. वो उनकी थिंकिंग इस तरह की है. और कुछ गड़बड़ हो जाए तो पूरा वर्ल्ड इज टू ब्लेम, बट इफ समथिंग गुड इज अबाउट टू हैपन देन ही वॉन्ट्स टू जस्ट प्रीएम्प्ट एवरीथिंग एंड टेक द क्रेडिट फॉर इट.
1: आपने सुना ना, अभी 4-5-6 साल से कीस्टोन का जो चक्कर चल रहा था, हम चाहते थे
0: जी,
1: और वो मना कर रहे हैं
0: जी,
1: क्योंकि हमको तो चाइना तक हम एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं गैसोलीन,
0: exactly.
1: क्रूड ऑयल
0: जी,
1: जिसकी उनको फिक्र लगी हुई है.
0: राइट,
1: पाइपलाइन हमें चाहिए.
0: बिल्कुल,
1: वो मना कर रहे थे और आज हाँ करके कह रहे हैं कि हमने अपनी बात मना ली.
0: राइट राइट.
1: तो यार हम बुद्धू बैठे हुए हैं यहाँ पर, क्या हमारा दिमाग खराब है, क्या हम लोग कोई ड्रग्स लेके बैठे हुए हैं? मतलब उनको क्रेडिट हर बात का चाहिए.
0: right.
1: हर बात का क्रेडिट चाहिए. वो जैसे वो होता है ना जी कि पिट के आ गया कोई
0: जी,
1: तो कहता है क्यों पिट गया, कहता है यार वो दो थे, दो लोग थे वो लोग
0: जी.
1: और हम सिर्फ 12 थे, हम सिर्फ 12, हम पिट गए. मतलब टोन बदल दी.
0: right.
1: भाई सिर्फ 12 का तुम ज्यादा हो, वो दो थे.
0: right.
1: नहीं, वो दो थे, हम सिर्फ 12,
0: right.
1: इसलिए पिट गए. इनकी टोन जो है ना, वो इनके एक तो होता है ना कहना कि मूड पे डिपेंड करती है.
0: बिल्कुल
1: नहीं, इनके लिए कहना गलत है, इनके लिए इनकी पर्सनालिटी पे डिपेंड करती है. इनकी पर्सनालिटी ऐसी.
0: राइट
1: जी.
0: राइट. सबरवाल साहब, बिना वक्त गवाए एक कॉलर हमारा वेट कर रहे हैं, तो सीधा उन्हीं से जुड़ते हैं. हेलो, जैम 101.3 पर आप लाइव हैं. सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन प्लीज पूछिए.
4: जी नमस्ते जी सबरवाल जी. नमस्ते जी अमिताभ जी.
0: नमस्ते नमस्ते
1: सहला राजपूत जी, आपकी आवाज बड़ी सुरीली है. जी जी जी.
4: थैंक यू. सबरवाल जी, मेरा दो क्वेश्चन है आपसे कि अभी जो पिछले 6 महीने के अंदर ऑलमोस्ट 3,325 लोग को डिपोर्ट किया गया हुआ है, और आगे भी उन लोग
1: क्या किया है,
4: डिपोर्ट किया गया हुआ है. और जो ऑलमोस्ट 8,000 जो है उनको भी डिपोर्टेशन की, ऑलरेडी उनके सर के पे बेचारे तलवार लटक रही है. और इसमें जो है कुछ फैमिलीज भी है, तो उससे क्या कोई मार्केट पे कोई फर्क गिरेगा?
1: सर बात ये है, जो इलीगल है उनको डिपोर्ट तो करना ही पड़ेगा ना.
4: जी जी. ओके.
1: आपका टैक्स, आपका दिया हुआ टैक्स उनके ऊपर जा रहा है
4: जी.
1: आपका टैक्स उनके ऊपर जा रहा है और वो इलीगल है. भाई इलीगल के लिए मतलब कि मैं तो शक में कभी भी नहीं हूँ मैं. हालांकि मेरे भाई बहन है वो लोग, मेरे अपने देश से भी बहुत लोग बिलोंग करते हैं, इस बात का दुख है. पर मैं उनसे ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप इलीगल आए क्यों थे यहाँ पर, काम करके आए क्यों थे, और टैक्स पेयर्स की मनी के ऊपर वो लोग चल रहे हैं क्योंकि शो नहीं कर पा रहे अपने आप को. मेडिकल पर आप पता चला ना कितना बिल आया था, पीछे रिपोर्ट देखी थी आपने, इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर कितना मेडिकल का बिल आ चुका है. इलीगल इमिग्रेंट्स के ऊपर मोर देन 1 बिलियन खर्च कर चुकी है सरकार. 1 बिलियन वो कहां से लिए, आपसे और मेरे से लिए ना सर.
4: जी जी.
1: मुझे तो बुरा नहीं लगा. प्लस एक बात और, सॉरी, प्लस जो कोई जेन्युइन है वो खुद ही वापिस जा रहे हैं. मेरे ऑफिस से ही 2 मेरे एम्प्लॉइज वापिस चले गए इंडिया.
4: मेरे खास बेस्ट फ्रेंड जो है वो भी वापस जा रहे हो, हालांकि उनके पास तो यहाँ के सिटीजन है.
1: हाँ, तो वो देखा जा रहे ना वापिस, तो फिर आपको दुख तो हो रहा है ना. मेरे चाहने वाले के वापिस चले गए, तो हमको उनका दुख मानना चाहिए जो टैक्स पेयर था वापिस जा रहा है, ना कि इनका बुरा मानना चाहिए जो कि डिपोर्ट किए जा रहे हैं. वापिस जाना और डिपोर्ट करने में बड़ा फर्क है ना सर. एक तो आदमी गले में हाथ पहन के गले मिलके जा रहा है और एक को डिपोर्ट किया जा रहा है. तो मेरे ख्याल से हमारे ऊपर ये बोझ है, और जो कि क्योंकि दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द सोसाइटी.
0: राइट.
1: दे आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द कंट्री. हालांकि मेरी बातें बुरी लग रही हैं, मुझे पता है बुरी लग रही हैं सुनने वालों को, कईयों को बुरी लग रही हो.
4: हाँ, जो व्यवहारिक है, जो सही है सही है,
1: जो सही है सही है, ठीक है ना. तो मैं मेरे एक मेरी लाइन बड़ी फेमस है. मैं कई बार जब आर्टिकल लिखता हूं तो मैं उसमें लाइन लिख देता हूं कि आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई से, नॉट फॉर व्हाट यू अंडरस्टैंड. तुम क्या समझ रहे हो मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं है, और मैं इसी बात का रिस्पॉन्सिबल हूं कि मैं क्या कह रहा हूं. दैट्स ऑल. अब जो मर्जी जो उसको समझता रहे. मैंने 2 जमा 2 जो भूखा उसने कह दिया 4 रोटी, और जो कार चोरियां करता है वो कहता है 2 जमा 2 4 कारें, वो भी स्टैंडर्ड की, वो भी अपना मर्सिडीज और BMW. मैंने तो 2 जमा 2 ही कहा था, और दूसरे बंदे ने उसको 4 रोटी अपनी सहूलियत के हिसाब से उसको कह दिया, ठीक है ना. तो ये जो है ना, ये बातें मैंने कह देनी है राहुल जी आप तो मुझे कई बार मिल चुके हो, आप तो मेरी आदत को समझते हो
4: और सबरॉल जी अगर जो इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो हाउस की प्राइस थोड़ी सी डाउन नहीं हो सकती है?
1: जो मुझे बता जो गिरा था तो क्या बढ़ गई थी जो नहीं ना अब इन दिनों में गिरा था ना पिछले दो साल में उल्टा बढ़ी रही है ना, थोड़ा बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। देखो पीपल आर नॉट वरीड अबाउट द इंटरेस्ट रेट, आई एम टेलिंग यू वेरी फ्रेंकली। गिरने के बाद फर्क नहीं पड़ा था, वो बात अलग थी जब हमें फ्री मिल रहा था, जब ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट 0.25 हो चुका था वो बात अलग थी, वो तो एक लॉटरी थी सबके लिए। पर ये जंप जो है लोग इस वक्त इंटरेस्ट रेट से परेशान नहीं है, लोग इस वक्त अफोर्डेबिलिटी से परेशान है, लोग इस वक्त अपनी इनकम के हिसाब से मकान नहीं ले पा रहे इस बात से परेशान है, लोग इन्हीं बातों से परेशान है, इंटरेस्ट रेट से कोई परेशान नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट से ही परेशान होते तो अमिताभ जी लोग ट्रिपल ए बैंक को छोड़ के बी लेंडर से भी लेने को क्यों तैयार हो जाते?
0: एग्जैक्टली।
1: और बी लेंडर को छोड़ के प्राइवेट लेंडर से लेने को तैयार हो जाते, यानी कि पैसा लेने को तैयार है उनको घर फिर भी नहीं मिल रहा, यानी कि इंटरेस्ट रेट फर्क। देखो ट्रिपल ए बैंक अगर मान लीजिए वो आपको दे रहा है 3.5, बी लेंडर दे रहा है आपको 5.5, 2% आप ज्यादा दे रहे हैं वो देने को तैयार है, 2% 200 basis points। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं 25 basis points, जहां पर 200 basis points से फर्क नहीं पड़ रहा वहां 25 basis points से राजपूत जी क्या फर्क पड़ जाएगा?
4: बिल्कुल सही बात आपकी। जी जी
1: ये बात बड़ी जो है एक इम्पोर्टेंट थी और बाकी तो चलो
0: थैंक यू दीपक साहब कॉल के लिए। आप हर हफ्ते कॉल करते हैं और बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न पूछते हैं जिससे हमारा कॉन्वर्सेशन और इंटरेस्टिंग हो जाता है, सो थैंक यू फॉर दैट।
4: थैंक यू जी, थैंक यू सर।
0: सबरवाल साहब चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपकी इजाजत हो तो आप ही की बातों से इंस्पायर होके कुछ अर्ज करो दो शब्द।
1: थैंक यू सर, जरूर सर। आप तो वैसे ही बड़ा मुझे आप जैसे कहते हैं ना एक पॉजिटिव वाइब्स आती है आपको मिलकर मुझे हमेशा।
0: जी तो अर्ज करता हूँ सर, किश्तों में सही ख्वाब तो अपना है, छोटा ही सही आशियाना तो अपना है।
1: वाह
0: ये मैं इंस्पायर हुआ हूं जो आप कहते हो ना कि घर घर बड़ा घर मत खरीदो, घर वो ही खरीदो, मतलब पैर अपने उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर अलाउ करती है, तो उसी पे बेस था कि मतलब घर हो छोटा हो तो भी ठीक है,
1: अपना आशियाना है भाई, अपना महल है वो, अपना महल है। और पता चला कि बड़ा बड़ा अपने महल और ये वो खरीद लिए जो आपके लिए एक मुसीबत बन चुका है।
0: राइट।
1: मैंने बहुत पहले ये बात जब मैं कॉलेज में था
0: जी
1: 71-72 की बात है, मैं लिखा करता था तब भी छोटी छोटी बातें
0: जी,
1: वो मैंने चार लाइनें लिखी थी, मेरी वाइफ मेरी स्टूडेंट थी सब, तो वो भी मेरे को कहती थी मेरे को बताओ मैंने भी कुछ लिखना है
0: जी।
1: मैं ये मेरी चार लाइनें थी, बड़े बड़े मकानों में
0: जी,
1: महलों में अटालिकाओं में कॉटेज कुटिया या कुटीर लिखा हुआ देख मैं ये सोचता हूं, अगर ये भव्य भवन है मात्र भर कुटीर तो मुझ जैसे निर्धन की झोपड़ी को क्या कहें।
0: क्या बात है, क्या बात है, ब्यूटीफुल। सबरवाल साहब हमारा वक्त ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है लेकिन एक कॉलर हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं तो क्यों ना हम उनसे डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं और उनको उनसे बात करते हैं। हेलो जैम 101.3 पर आप लाइव है, सबरवाल साहब से अपना क्वेश्चन डायरेक्टली पूछिए प्लीज, गो अहेड।
5: मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि अभी मेरी मार्केट जो है वो अपना फिक्स नहीं है, फ्लेक्सिबल है, तो मैं उसको फिक्स करा लूँ क्योंकि आपने तो डरा दिया कि भाई अभी जो है ना ये तो भरे।
1: मैंने ड्रा नहीं दिया, मैंने वही कहा, मैंने बोला आपका नाम क्या भाई साहब?
5: अब्दुल अहमद
1: जी। मैं बता दूं छोटी सी बात, घर इंटरेस्ट रेट गिरने की बात मत करें, बढ़ने की बात ना बढ़े ज्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरी बात को पकड़ मत लेना, आज के हालात देखते हुए मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट घटेगा क्योंकि हमने ऑलरेडी बॉटम पकड़ लिया। इन्फ्लेशन जहां पर 3% आ जाए, तो आप सोचते हैं कि वहां इंटरेस्ट रेट घटेगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ता है क्योंकि बाइंग पावर कम की जाती है, खींच ली जाती है। जब इंटरेस्ट रेट जब इन्फ्लेशन कम होता है तब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। तो मैं सिंपल बात कर रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ गया चाहे वो सुपरफिशियल बढ़ा, और आगे जो हालात नजर आ रहे हैं उस हिसाब से मुझे हालात ठीक होते नजर नहीं आ रहे, तो इंटरेस्ट रेट घटने की बात मत करो। हाँ वो जो मैंने कहा था भाई साहब को कोई और सपना कल को आ जाए तो कुछ और पंगा डाल दे तो अलग बात है, अनहोनी जो है वो अगर हो जाए तो मैं कह नहीं सकता, पर सिचुएशन वर्ल्ड वाइड यही है कि मुझे नहीं लगता कि अगले 8-8 साल के अंदर इंटरेस्ट रेट कम होगा।
5: अच्छा, एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, अगर कहें तो मैं बताऊं।
1: सॉरी,
5: आप इतने मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप कहें तो मैं कहूँ आपको।
1: जी जरूर कहिए सर।
5: मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आप इतने हम्बल इंसान हैं और इतने यानी हेल्पफुल पर्सन हैं, तो भाई आप यहाँ हमारे ब्रैम्पटन के लिए एमपी वगैरह का इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते?
1: मतलब आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो, यानी कि आप मेरी जिंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो। मतलब मेरा जो आराम से
5: जिंदगी बर्बाद नहीं, जिंदगी बनाने में आया तो। क्योंकि आप
1: मैंने
5: नहीं देखा यहाँ पर।
1: सर जी, आप मेरे को इतना मान दे रहे हैं, ये मेरे को वहां जब जाऊंगा तो गालियां देनी शुरू कर दोगे। एक कहावत है,
5: आपको हम जानते हैं।
1: सर मैं बदनामी नहीं, मैं शांति से जीना चाहता हूँ। अपनी बीवी के साथ बैठ के शाम को, अभी शो खत्म होने का, मैं बढ़िया सी एक कप चाय पीऊंगा, फिर मैं उसको बोलूंगा डार्लिंग एक कप और बना दे। वो टाइम आना नहीं है। संयम एक युद्ध
5: भाई, जब आप बन जाएंगे दुनिया के काम करेंगे, जैसे अभी फ्री में काम कर रहे हैं आप, उस टाइम दुनिया के आप जो है ना सीधे सीधे जन्नत में जाओगे। फिर ये भी बता दूं।
1: हेलो, देखो जन्नत में जाने की बात सुनिए, सुनिए जन्नत की भी एक बात सुन लीजिए, बड़ी इंटरेस्टिंग। क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, रिजवान जन्नत का जो संभालने वाला रिजवान है ना जी, वो क्या ही रिजवान से लड़ाई होगी, खुल्द में घर ये घर याद आया, वहां जाकर भी मेरी लड़ाई हो जाएगी। जन्नत तो वो थी जो अपनी बीवी के साथ पीछे छोड़ के आ गया अपने बच्चों के साथ, तेरी जन्नत से अच्छी जन्नत वो थी जो मैं पीछे छोड़ के आ गया। संयम एक युद्ध जो अपने ही विरुद्ध,
5: ये संयम बच्चे जन्नत में मिल जाएंगे आपको।
1: जी सर,
5: मैं कह रहा हूँ आपके अमाल अच्छे है ना, तो ये बीवी बच्चे भी आपको जन्नत में मिल जाएंगे। यही
1: जी जी जी जी जी जी, चलो ये अपना अपना सोच है, पर मेरी तो जन्नत यही है। मैं तो इस जन्नत से बहुत खुश हूँ, और मेरे को कई बार आती हैं, बड़ी ऑफर्स आती हैं, बहुत आती हैं ऑफर्स, तो मैं कहता हूँ भाई मैं जहाँ बैठा हूँ मुझे वही बैठ। मैं अभी आपके पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ अमिताभ जी। अब ये पोरस, जब ये पोरस यहाँ पर विन करके वापिस जा रहा था जीतता हुआ, तो उसको किसी ने बताया कि बहुत महान एक संत ज्ञानी है जो कि हरिद्वार के आगे डेरा लगा के बैठे हुए हैं, उनको मिलते हुए जाओ
0: जी।
1: तो उसने कहा चलो चल पड़ते हैं। जब वो यहाँ से वापस अफगानिस्तान की तरफ जा रहे थे तो उनके हाथी वगैरह ऊंट हाथी जो घोड़े वो रुके, वो रुकने के बाद अपने हाथी में बैठे बैठे वो संत को बोलते हैं कि भाई मैं सिकंदर। कहता कौन सिकंदर? कहता है मैं जो मैं जीत के आया हूँ। कहता किसको जीत के आए हो? कहता दुनिया को जीत लिया मैंने, अब हिंदुस्तान के बाद मैं वहां जा रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, इसको जीतूंगा। कहता उसके बाद क्या करेगा? कहता उसके बाद वो चुप हो गया। कहता और क्या करेगा? चल दुनिया जीतेगा और क्या करेगा, उसको कोई क्वेश्चन नहीं है। कहता तो उसका फिर आराम से ही बैठेगा ना? कहता हाँ। वो संत कहता है कि बिना कुछ किए मैं आराम से पीपल के पेड़ के नीचे बैठा, मुझे क्यों तंग करने आ गया तू?
0: बहुत बढ़िया।
1: बिना कुछ किए मैं पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और तू मुझे डिस्टर्ब करने आ गया। तू इतना कुछ करने के बाद आराम करेगा? मैं बिना कुछ किए आराम कर रहा हूँ और जो मैं जिंदगी के मजे ले रहा हूँ तूने रोक दिया मेरे को। कहता कैसे रोक लिया? कहता इतनी बढ़िया धूप आ रही थी, तेरा हाथी सामने खड़ा हो गया, धूप भी तूने मेरी रोक ली। हटा इसको यहाँ से, हटा अपने हाथी को मेरे आगे से, मुझे धूप लेने दे जो कुदरत ने मुझे दे रखी है। तो अब्दुल जी, जो कुदरत ने मुझे आराम दे रखा है वो मत छीनो।
5: नहीं छीन नहीं रहे, आपसे प्यार है, प्यार करते हैं आपसे, तो इसलिए कह रहे हैं, और किसी को क्यों नहीं कह रहे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, आपका शुक्रिया। पर मुझे बस एक दो बातें आपकी बात से याद आ गई और मैंने क्या दी।
0: सही है, ठीक है अब्दुल साहब, कॉल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और सुझाव के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि जितना हम मैं जानता हूँ सबरवाल साहब को, वो इस पॉलिटिक्स के दलदल में कभी नहीं घुसेंगे। सबरवाल साहब हमारा
1: अभी सब कुछ है, अभी अभी अभी 13 तारीख को कार्नी साहब से मुलाकात भी है। 13th को हमारी 13 सितंबर को मिलता हूँ सब लोगों को, सारे मिलते हैं उस दिन। डॉक्टर साहब के साथ मेरी मुलाकात थी रिगार्डिंग HST, बात करनी थी।
0: जी,
1: मिलते हैं लोगों को, बड़े अच्छे लोग हैं, सब कुछ है, पर मैं उस कैटेगरी का नहीं हूँ, मेरी वो पर्सनैलिटी नहीं है सर।
0: जी जी, पीपल हु नो यू विल ऑलवेज से कि यार ही इज नॉट गोइंग टू गो इनटू पॉलिटिक्स एट ऑल, ही वांट्स टू एंजॉय हिज लाइफ एज वेल एज मैनेज हिज हिमसेल्फ क्वाइट वेल हेल्थ वाइज एज वेल। सबरवाल साहब, वक्त हमारा खत्म हो चुका है, लेकिन आज की चर्चा काफी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रही हर हफ्तों की तरह। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते अगले वेंसडे ठीक 4:25 पर। तो हमारे जो लिसनर्स आज अपना प्रश्न नहीं पूछ पाए उनसे इल्तिजा है कि अगले वेंसडे 4:25 to 4:50 के बीच हमें कॉल ज़रूर करें, सबरवाल जी से अपना प्रश्न डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सबरवाल जी, जाते जाते
1: बस मैं यही कहूंगा जाते जाते कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, अगर आप कोई एडवाइस मांग रहे हैं, देयर इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, इट इज ऑल फ्री। ओनली आपने मेरे को टेक्स्ट मैसेज डालना है, जैसे वो लेडी आई थी अभी, सोनम नाम था शायद उनका, सोनल
0: जी,
1: तो उन्होंने किसी और से लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, हर एक ने रोटी खानी है, आई एम वेल विशर, और आप मुझे मिल सकते हैं, इस बात की फिक्र मत करिए कि आपने किसी और से लिया, मेरा फर्ज बनता है, आप लोगों ने मुझे यहां तक पहुंचाया है, और ये तुच्छ भेंट, छोटी सी भेंट अगर मैं वापस कर सकता हूँ, अपना आपको विचार आपके आगे रख सकता हूँ, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी। तो आप इस बात से मत झांकिए कि आपने किसी और, कई ऐसे भी मिलते हैं मेरे को जिनको मैंने मना किया था मत लो, मुझे मिल गए तो कहीं और से ले लिया, अब वो शर्म के मारे नहीं आते, नहीं शर्म की बात नहीं है, गलतियां हर एक इंसान से होती हैं, आप आके मुझे मिल सकते हैं। तो मेरा नंबर है 6472994757, 6472994757। यहाँ टेक्स्ट मैसेज डालिए, नाम जरूर लिखिए, बिना नाम के मैं जवाब नहीं देता, तो मैं आपको मिलने के लिए न्योता दे दूंगा, इट इज नो ऑब्लिगेशन, नो चार्जेस, फ्री। और दूसरी बात, मेरे को आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी बहुत कुछ जिंदगी के बारे में मैं जो मन में आता है बोल देता हूँ। पी के सबरवाल ऑफिशियल यहाँ पर जाके फॉलो करिए, वहां पर भी शायद आपको बहुत कुछ सुनने को देखने को मिलेगा। प्लस फॉर एनी रियल एस्टेट नीड, आई चैलेंज, आई गारंटी द लोएस्ट प्राइस, जो मर्जी प्राइस लेके मेरे पास आ जाइए, मैं उसको बीट करके दिखा दूंगा, बिकॉज ऑफ माई बल्क परचेज, जो मेरी वॉल्यूम है वो ज्यादा होता है, इसकी वजह से उसका बेनिफिट मैं आपको पास ऑन कर सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी, आपके साथ मुलाकात होगी अगले वेंसडे 4:25 पर। और हमारे सुनने वालों से भी हम आज के लिए इजाजत लेना चाहेंगे। कीप लिसनिंग टू जैम 101.3 विद जतिन एंड अमिताभ, जरा सुनिए तो।

मीट अगेन ऑन द डे, जहां याद आती है वो बात कि भाई जो होती है ना उड़ान, उसका सपना देखता है हर इंसान, है ना। वो पंख होते तो उड़ाती रे वाला, वो पतंग सा आसमां में लहराती वाला, वो बादलों सा डोलती वाला, और वो हवाओं सा बहती वाला, और वो सभी नहीं तो वो ख्वाबों ख्यालों की उड़ान, वो तो हम सभी भरते हैं, है ना, हमेशा से हमेशा तक भरते हैं। Well, today is actually उड़ान वाला दिन। It's aviation day। Leonardo da Vinci से लेकर George Kelly और Wright brothers तक आज याद सब किए जा रहे हैं और उन्हें थैंक यू भी कहा जा रहा है। Well, लोग बाग इतने तो शुक्राना है ही। On social media, it's a trending trend day। साथ में it's a soft ice cream day as well, जो मैं देख रही हूँ। तो मौसम है दस्तूर है और मौका भी है, आइसक्रीम का मजा लिया जा सकता है। And it's also national potato day, बोले तो आलू, जो हर सब्जी में फिट हो ही जाती है ना, हो जाता है, most adjusting and congenial सब्जी बोले तो। So on this be like आलू in life of others and खुद की and in your relationships वाली note, this is Swati and Tanvi on Filmy Nukkad CMR 101.3 FM पर saying कि आलू जैसे मोटे तो नहीं पर मिलनसार जरूर बने। बाकी रही काउच पोटैटो की बात, तो लुकर लो बात।

0: ली सर्व करता है एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है ट्रस्टेड केयर कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर विजिट veinsautogroup.com
1: ऑटो एंड होम इंश्योरेंस के बिना तो काम चलता नहीं इफ यू हैव अ कार एंड अ हाउस है ना अब ऐसे में सोचिए अगर आपके पास एक कार और एक घर है और इंश्योरेंस पर सालाना आपके 400 से 500 डॉलर्स की बचत हो जाती है या आपके पास दो कार और एक घर है और ऑटो एंड होम इंश्योरेंस पर आपकी बचत हो सकती है अप टू 2029 डॉलर्स तो कितना अच्छा हो है ना यानी कि रेट्स भी सही मिल जाए कवरेज कॉम्प्रोमाइज ना हो एंड सेविंग्स ही सेविंग्स तो भाई ये पॉसिबल है कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की मिसिसागा साउथ एजेंसी एट 6474535353 उनको कॉल करेंगे तो आपको और ऑप्शंस भी पता चल सकते हैं 6474535353

0: पहुंचाना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
2: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129। 35 रेजोल्यूशन ड्राइव, ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
1: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस, स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
3: क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो। ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं। खान दानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है। कॉल इन टुडे एट 6473278111, 6473278111।
4: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1.

0: डॉन वैली नॉर्थ हंडे के हंडे अपग्रेड योर राइड सेल्स इवेंट का फायदा उठाइए। सिर्फ 0.99% से फाइनेंसिंग और साथ में 90 दिन तक कोई पेमेंट नहीं और पाए $1,000 तक का अपग्रेड बोनस भी। ऑफर सिर्फ August 31st तक है। At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit DonValleyNorthHyundai.com या Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamberg.
1: Don Valley North Hyundai,
2: a proud member of Wayne's Auto Group.
3: Fresh Breeze, new release on CMR at 5 p.m.
4: फिल्मी नुक्कड़ स्टफरी टाइम पे ये टाइम है आपको एक फ्रेश प्रीस न्यू रिलीज सुनवा देने का। आज ही रिलीज हुआ एकदम ताजा तरीन। मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस विनी और हम हैं CMR 101.3 FM पर मिल मिलकर ट्यून्ड इन। 7 बजे तक रहता है मेरा आपका साथ, सोचे याद दिला दूं। अच्छा, ये जो गाना है ना, इट्स अ लवली सॉन्ग जिसमें पूरा पूरा पोटेंशियल है कि वो बन सकता है फादर्स डे का एक सिग्नेचर सॉन्ग। पापा की परियां हैं अगर आप, या पापा के पैम्पर्ड सन्स अगर आपको अपने पापा से है प्यार, तो इस गाने से भाई आप कर ही नहीं पाएंगे इनकार। एक्चुअली हम सभी को ना अपने पापा में अक्सर ही देखा गया है कि एक हीरो दिखा है, बस उसी फीलिंग को यहाँ जावेद अख्तर साहब ने बखूबी लिखा है। टाइटल ही गाने का कहता है, मेरा हीरो है वो। शान ने बहुत ही प्यारे तरीके से इसे गाया है अलॉन्ग विद वनीका नायक और प्रीतम धा की एक सिंपल सी धुन है। इट्स फ्रॉम अपकमिंग साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर जिसका नाम है हैवान, जो मलयालम फिल्म उपम का हिंदी एडेप्टेशन बताई जा रही है एंड इट्स रिलीजिंग ऑन September 11th। इसमें सैफ अली खान है एंड ही इज प्लेइंग द रोल ऑफ विजुअली चैलेंज्ड मैन, जो आंखों से बेशक नहीं देख पाते पर उनकी बाकी सेंसेस जो है ना वो बहुत अच्छे से काम करती है, उसको एक्चुअली कॉम्पनसेट कर रही होती है एक जो सेंस मिसिंग है उसको। और यही पेयर सेंसेस जो है उसकी मदद भी करते हैं एक बच्चे को बचाने में, सीरियल किलर जो कि अक्षय कुमार है इस फिल्म में, उनसे बचने में, और खुद पर जो उनके मर्डर चार्जेस लगे हैं उनको भी कहीं ना कहीं गलत प्रूव करने में। पर गाना जो है इट्स एन इमोशनल वन जो आपको अपने पापा की और उनके साथ बीते अपने बचपन की याद जरूर दिला देगा। मुझे लगता है कि पापा बाप के आपके पास है या नहीं, दूर है या बहुत दूर है, तो भी आज फादर्स डे है या नहीं, तो भी ये गाना सुनते ही पापा का प्यार जो हमें मिला है इस बात के लिए हमारे मन को ग्रेटफुलनेस से जरूर भर देगा। सुनिए और मुझे बताएं आपको कैसा लगा। स्टूडियो का नंबर 416-593-0055।
5: लिख रहे हो ना, तुम भी गाओ।

0: जेनेसिस मार्कम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट Woodbine Avenue एंड John Street, Markham. Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: काव्या होम्योकेयर, काफी इलाज जहां बेअसर हो जाते हैं वहां से शुरू होता है होम्योपैथी का असर। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, नए से लेकर कई पुरानी बीमारियों तक, जैसे एलर्जीज, एस्मा, आर्थराइटिस, हेयर लॉस, स्किन डिसऑर्डर्स, हेडेक्स, माइग्रेन्स, मेल या फीमेल हेल्थ इश्यूज, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स या पाइल्स, मेंटल हेल्थ इश्यूज, हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज और फॉर एनी काइंड ऑफ अक्यूट और क्रॉनिक डिजीजेस हमारे होम्योपैथ से मिले जिनको 20 साल का ज्यादा तजुर्बा है। काव्या होम्योकेयर, जहां से शुरू होता है हेल्दी लाइफ का सफर। 10 कोट्रेल बुलेवार्ड, Unit 104 in Brampton, 647-760-2779, 647-760-2779.
2: ऑलराइट, आप सुन रहे हैं फिल्मी नुक्कड़। मैं हूँ स्वाति, साथ है पायस्विनी और इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं वो जिनसे हम आपकी इसलिए बात करा देते हैं हर हफ्ते जिससे कि आप अपने जीवन में एक स्वस्थ लाइफस्टाइल अपना सकें। कोई छोटी बड़ी समस्या घर में बड़े या बूढ़ों को या बच्चों को या आपको चल रही है तो भी आप उसका ट्रीटमेंट कर पाएं, उससे निजात पा पाएं और एक अच्छी सी जिंदगी, हेल्दी लाइफ की तरफ अपने कदम बढ़ा पाए। मैं बात कर रही हूँ यहाँ काव्या होम्यो केयर से मीता जी की। और यहाँ पे सिर्फ अच्छा सा ट्रीटमेंट ही नहीं होता है आपका, इट इज़ अ साइड इफेक्ट फ्री ट्रीटमेंट क्योंकि होम्योपैथी का होता है और होम्योपैथी कितनी प्रूवन है हम सभी को पता है। प्लस इनका ट्रीटमेंट भी प्रूवन है, ये आपको कम्युनिटी में पता चल जाएगा व्हेन यू टॉक टू पीपल इन द कम्युनिटी, जिसमें हमेशा कहती हूँ आप खुद एक रेफरेंस बन जाएंगे। अगर आप उनसे ट्रीटमेंट लेंगे तो आप खुद वो नाम बन जाएंगे कि भी पूछ के देख लो किसी से, हाँ हमें पता है, बहुत अच्छा होता है। प्लस आपके घर बैठे भी कई बार कंसल्टेशन पॉसिबल होती है क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है वेदर की वजह से, कन्वीनियंस प्रॉब्लम की वजह से, समय की वजह से या कोई और दिक्कत की वजह से हम क्लिनिक तक नहीं आ पाते तो भी कंसल्टेशन पॉसिबल है। आपकी सेहत में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और अब तो क्लिनिक पे मसाज थेरेपी जैसे भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं बिसाइड्स होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। पर और क्या है और कैसे होता है और कुछ खास ट्रीटमेंट के बारे में भी आज बात करेंगे। तो मीता जी वेलकम।
3: थैंक यू सो मच स्वाति जी एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय लिसनर्स।
2: थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस। मीता जी, मैं बिफोर आई गो अहेड विद द क्वेश्चन दैट आई हैव इन माइंड फॉर टुडे, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो मसाज थेरेपी भी है और जितनी आप बताती हैं कि किस किस तरीके से ट्रीटमेंट पॉसिबल होता है वो जरूर बताएं, क्योंकि बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बताया, कुछ लोग दूर रहते हैं तो वो सोचते हैं अरे हम तो इतनी दूर रहते हैं हम कैसे ले पाएंगे। कई बार पीपल वॉन्ट टू कम टू योर क्लिनिक, आपसे ट्रीटमेंट करवाना भी चाहते हैं पर डिस्टेंस उनके लिए कई बार एक समस्या बन जाता है। कई बार वो ये सोचते हैं कि इंश्योरेंस का क्वेश्चन आता है, कई बार दवाइयों का प्रश्न आ जाता है और कई बार जैसे आपने बताया मसाज थेरेपी भी है, तो सिर्फ मेडिसिन से होता है या कैसे कैसे होता है, इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन जरूर दें।
3: जी डेफिनेटली स्वाति जी, सो फार जिनको होम्योपैथी का कंसर्न है तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ये मेडिकेशन आप क्लिनिक पे आके भी ले सकते हैं एंड अगर आ नहीं सकते क्लिनिक तक, ऑल ओवर कैनेडा, यूएस तो यूरोप में हम मेडिकेशन जो है वो अपनी मेल करते हैं, शिपिंग प्रोवाइड करते हैं, वीडियो कॉल वगैरह की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है, आपके पिक्चर्स रिपोर्ट्स वगैरह सारा कुछ देख के मेडिकेशन जो है वो हम मेल कर देते हैं एंड थेरेपी के लिए आपको क्लिनिक तक आना जरूरी बन जाता है क्योंकि वो हम भेज नहीं सकते, तो उसके लिए आप वी आर ओपन 6 days a week, नहीं कई बार होम सर्विसेज होती हैं लेकिन हम प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो उसके लिए आपको क्लिनिक पे आना है। वी आर ओपन 6 days a week, मंडे टू सैटरडे 10 AM to 6 PM, सेम डे कॉल करके आप अपना टाइम ले सकते हैं बुक करके या फिर आगे से कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करें फॉर द थेरेपी। सो बॉडी पेन से आपको कहीं पे भी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम कह लें या बैक पेन, गर्दन अकड़ जाना, काम के हिसाब से आपको जो पेन्स हो रही हैं बॉडी में, फ्रोजन शोल्डर डेवलप हुआ है, हेडेक, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, तो ये सारों के लिए वी डू हैव थेरेपी एज एज वेल। तो ये जो कॉम्बिनेशन हो रहा है होम्योपैथिक मेडिकेशन एंड थेरेपी का, सो लोगों को काफी उससे बेनिफिट मिल रहा है। एंड फॉर दैट आप कॉल करके सारी जो है डिटेल्स जान सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट है वो बुक करा सकते हैं।
2: चलें, ये तो अच्छा, क्या एक क्लैरिफिकेशन भी मिल जाता है और हमें ये भी पता चल जाता है कि व्हाट इज पॉसिबल एंड व्हाट इज नॉट इन दिस। मीता जी, एक चीज और बताएं कि कई बार हम लोग डिफरेंट ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जो बाय चॉइस वीगन नहीं होते, उनकी प्रॉब्लम होती है जिसमें वो लैक्टोज इंटॉलरेंस कई बार हमें बच्चों में भी देखने को मिलता है और बड़े होने तक कई बार ये कम हो जाता है, लेकिन वो आदत ही पड़ चुकी होती है उनको। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस की जो स्पेशली बच्चों को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बड़े लोग भी ना कई बार ये सोचते रहते हैं दूध नहीं पी रहा तो हड्डियां कैसे मजबूत होंगी, यू नो, दूध नहीं जा रहा, ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते भी हैं और उसमें भी कई बार नहीं मिलते। तो क्या ऑप्शंस रहते हैं कि लैक्टोज इंटॉलरेंस जो है क्या ये ठीक हो सकती है, हाउ डज इट वर्क विद होम्योपैथी?
3: जी बिल्कुल स्वाति जी, और अक्सर आप देखोगे कि कोई भी मिल्क प्रोडक्ट्स लिए तो उसके साथ कुछ लोगों को हम कहते सुनते हैं कि मुझे ज्यादा म्यूकस बनना स्टार्ट हो गया है, कोई कहेगा कि ब्लोटिंग या अफारा सा ज्यादा हो रहा है, तो ये जो है हो सकता है आपको शायद कि लैक्टोज इंटॉलरेंस है। और छोटे बच्चों में भी जब भी लैक्टोज इंटॉलरेंस है ना, तो कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि वो ज्यादा वॉमिट कर रहा है या टमी एक है, तो मदर उसको थोड़ी सी चाय पत्ती मिल्क में डाल के देती है ताकि वो डिफरेंट फॉर्म का प्रोटीन बन जाए, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। या रेगुलर मिल्क से आपको प्रॉब्लम आ रही है लेकिन जब आप गोट मिल्क लेते हो तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं है। तो ये क्या इश्यू है, ये लैक्टोज इंटॉलरेंस है जो एक डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है जिसमें मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स आप लेते हैं उसमें जो लैक्टोज है उससे आपको इंटॉलरेंस प्रोड्यूस होता है। और ये तब प्रोड्यूस होता है कि जब आपकी बॉडी लैक्टोज के डाइजेशन के लिए एंजाइम्स चाहिए वो आपकी बॉडी में नहीं होते हैं, जिससे क्या होगा कि लैक्टोज जो है वो सिंपल फॉर्म की शुगर में कन्वर्ट नहीं हो पाता और बॉडी में एब्सॉर्ब होने की बजाय ऐसे ही ये लैक्टोज आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में मूव हो जाता है और फिर आपके इंटेस्टाइन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया होते हैं वो अनडाइजेस्टेड लैक्टोज से इंट्रैक्ट करके साइन एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये सिम्टम्स आप कह लो कि लैक्टोज या मिल्क प्रोडक्ट्स आप लेते हो तो उसके हाफ एन आवर से लेके कपल ऑफ आवर्स में डेवलप होते हैं, जिसमें दूध पीने के साथ या डेयरी प्रोडक्ट्स लेने के कुछ टाइम में आपको टमी एक की कंप्लेन। अब हम देखते हैं, और उसका जल्दी ज्यादातर पता जो है अर्ली एज में ही चल जाता है, छोटे बच्चे भी कि स्कूल जाने का टाइम है सुबह सुबह और मदर ने मिल्क दिया तो उसके साथ ही टमी एक की कंप्लेन स्टार्ट हो गई, तो ये प्रॉब्लम है। या फिर उसको डायरिया, लूज स्टूल्स हो रहे हैं, या फिर कुछ भी खाने पीने के साथ राइट वे या थोड़ी देर में टॉयलेट जाना पड़ रहा है, ब्लोटिंग ज्यादा रहती है, गैस है, नॉशियस फीलिंग या वॉमिटिंग भी हो जाना। सो अगर इस तरह के सिम्टम्स आप फील करते हैं तो ऐसे में आपको डाउट जाता है कि हाँ कहीं मुझे मिल्क के साथ तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सारी चीजें फूड इंटॉलरेंस करके आप देख सकते हैं। सिमिलरली किसी भी तरह की इंटॉलरेंस है कि कोई आप वेजिटेबल से इंटॉलरेंट है वो खा लिया, या ग्लूटेन से इंटॉलरेंस है, तो सिमिलर सिम्टम्स आप देख सकते हैं। अब ये कोई भी एज ग्रुप में होता है लेकिन जो प्रीमेच्योर बोर्न बेबीज हैं तो उनमें ये ज्यादा कॉमन है कि कर्ड भी बना के वो निकाल देते हैं, जितनी बार भी मिल्क देते हो तो वो अंदर टिक नहीं पाता उनकी बॉडी में। और फिर क्रोन्स या सीलियाक डिजीज जिनको है, ग्लूटेन से प्रॉब्लम है, तो उनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस कई बार साथ में ही पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो ट्रीटमेंट है वो क्या करेगा कि यहाँ पे इसके साथ लैक्टोज इंटॉलरेंस के जो सिम्टम्स आप फील करते हैं तो उसमें आप इम्प्रूवमेंट देखोगे कि टमी एक है, डायरिया, गैस या ब्लोटिंग, तो ये सही होता जाएगा। छोटी एज में आप जब ये ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हो तो आप देखोगे कि कई बार ये बच्चे ओवरकम भी कर लेते हैं कि आगे जाके फिर वो मिल्क ले सकते हैं, लेकिन बड़ी एज में जब ये होता है ना फिर इसके सिम्टम्स तक ट्रीटमेंट रह जाता है कि उसके सिम्टम्स को मैनेज किया जा सकता है, जिस करके ज्यादा ब्लोटिंग या पेन या वॉमिटिंग ये सारा कंट्रोल में आएगा। का. सो किसी भी चीज से आपको इंटॉलरेंस फील हो रही है या खाना खाने के साथ ही, और जब भी इंटॉलरेंस एलर्जी होती है तो एक तो ये आपकी टमी पे इफेक्ट करेगा और फिर आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे कि ज्यादा म्यूकस बनना, साइनस या नेजल एलर्जीज की प्रॉब्लम, या फिर आपके स्किन पे आता है कि हाइव्स निकल रहे हैं, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस ट्रिगर हो रहे हैं, रैशेस आ जाते हैं. तो इसको कंट्रोल करने के लिए वी डू हैव वेरी गुड मेडिकेशन. सो कोई भी एक्यूट क्रोनिक डिजीज के लिए काव्या होम्योकेयर से आप मेरा कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं.
2: चलें, ये तो आपने बहुत एक अच्छी सी डायरेक्शन दे दी कि पॉसिबिलिटी है. और ये आपने ठीक कहा, कई बार हम बच्चों के लिए ही सोचते हैं लेकिन हम जो बड़े लोग हैं ना, हमें भी आपने जो सिम्टम्स बताए ये फील होते हैं और हमें पता नहीं होता क्योंकि वो शायद इतने इंटेंस नहीं होते हैं और हम उसमें ही जीते रहते हैं. तो देयर इज अ सॉल्यूशन. आप एक बार मीता जी से मिले, आपको आराम से आप फिर इन चीज़ों को कंज्यूम भी कर पाएंगे और ट्रीटमेंट भी हो जाएगा. तो उनको कॉल करने का नंबर आपको वैसे तो काव्या होम्यो केयर की वेबसाइट से भी मिल जाएगा, विच इज़ kavyahomeyocare.com, या फिर आप इस नंबर पे भी उन्हें कॉल कर सकते हैं 6477602779. थैंक यू मीता जी, अगले हफ्ते फिर बात करते हैं.
3: श्योर स्वाति जी, थैंक यू सो मच.
2: Thank you.

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: It's time to Toyota at Markville Toyota. Corolla L lease kijiye from $84 weekly for 60 months. Ya Corolla Cross L front wheel drive lease kijiye from $98 weekly for 60 months. Or up Tundra 4x4 Crew Max TRD lease kijiye from $173 weekly for 36 months. Don't miss out. Inventory limited hai. Offer sirf jab tak supplies last kare. Hurry. More details ke liye Markville.com visit kare. Located at 5362 Highway 7 in Markham. Markville Toyota, a proud member of Vane's Auto Group.
2: फायदा उठाएं ऑगस्ट के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना 3 इयर्स फिक्स्ड 3.94% 5 इयर्स फिक्स्ड 4.04% 5 इयर्स वेरिएबल 3.50% और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500 कॉल अमित खुराना एट 6473412785 दैट्स 6473412785
3: राजधानी।
4: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर प्लेस्टेशन 5 डायसन एयर रैप निंटेंडो स्विच रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस
5: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें
4: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा
6: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca
7: घर कहीं भी ले

0: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। PZB इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। We pay top dollar for your trade. It's time to Toyota at Don Valley North Toyota.com. Located here, 3300 Steeles Avenue, East Markham. At Don Valley North Toyota. A proud member of Vane's Auto Group.
1: कोई भी सही शिक्षा कभी बुरी नहीं होती बेटी, और दुनिया की हर भाषा गंगा की तरह पवित्र है। मैं अंग्रेजी भाषा का विरोधी नहीं हूँ, मैंने खुद ही अंग्रेजी साहित्य में एमए किया है। दरअसल अच्छी शिक्षा है जो हमारे कुसंस्कार को तोड़ दे, हमें आगे बढ़ाए, लेकिन अंग्रेजी शिक्षा का नतीजा ये हो रहा है कि हमारे कुसंस्कार नहीं सारे संस्कार तोड़ दो, विदेशी संस्कार को अपना संस्कार मानो। ऐसी शिक्षा पाने वाले और देने वाले दोनों गलत है।
2: क्यों, मैं बड़ों का उद्धार नहीं करता क्या? छोड़िए ये सब, मुझे वो दे दीजिए, वो भारत रत्न।
3: वो ये नहीं दे सकते।
2: क्यों, मैं पैसे नहीं दे रहा हूँ क्या?
3: नहीं नहीं, वो बात नहीं है, भारत रत्न सिर्फ भारत सरकार ही दे सकती है।
2: अरे सरकार नहीं दे रही है, इसीलिए तो इन लोगों से मांग रहा हूँ।
3: पुलिस पकड़ के ले जाएगी।
2: किसको?
3: पदवी देने वाले को।
2: ले जाने दो।
3: नहीं, लेने वाले को भी।
2: ओ, मुझे नहीं चाहिए जाने।
4: इस साले घूंचू ये क्या? छी छी छी, वाजपेयी खानदान का लड़का होकर इस तरह बात करता है। आइंदा कभी साले घूंचू बोला तो मैं तेरा मुंह नहीं देखूंगा। सुन, मैं बनारस गया था शास्त्री जी के पास। क्या ज्योतिषी हैं, भाग्य तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे आकाशवाणी वाले समाचार पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि बाघ वाली कोठी का मामला इस बार हम जरूर जीतेंगे। और हाँ, मैंने उनको तेरी और प्रतापगढ़ के बाबू कृष्णानंद राय की बेटी की कुंडली भी दिखाई। उन्होंने कहा बहुत अच्छी जोड़ी है, शीघ्र शादी कर दो।
5: खाओ जी, भर कर खाओ, आज तो खाने का आखिरी दिन है ना
6: जी।
5: मेरा मतलब है शादी से पहले आज आखिरी बार खा रहे हो। तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या बात सुन रही है? लाना खाना। खाओ बेटा खाओ।
6: दिल्ली का सोन हलवा, मथुरा का पेड़ा, बनारस का कलाकंद खिलाऊंगा।
7: मगर सर इतनी सारी मिठाइयां।
6: अरे बेटा नहीं खाओगे तो ताकत कैसे आएगी, और ताकत नहीं होगी तो पुलिस की मार कैसे सहोगे बेटा?
7: पुलिस की मार।
6: पुलिस की मार।
5: यू चीट, धोखेबाज।
7: सर आप मुझे माफ कर दीजिए सर।
5: माफ? माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगा।
8: माफ नहीं, मैं तुझे साफ कर दूंगा, मतलब क्या तो डायलॉग और क्या ही डायलॉग डिलीवरी। ये सारा डायलॉग कंपाइलेशन था वैसे उत्पल दत्त साहब की फिल्मों से उठा के हमने ले लिया था। मतलब बहुत ही जबरदस्त एक्टर थे और जबरदस्त ही कॉमिक टाइमिंग थी। एंड ही वाज नॉट जस्ट अ ग्रेट एक्टर, डायरेक्शन में बहुत अच्छे थे, प्ले राइटर भी सॉलिड थे। लिटिल थिएटर ग्रुप बनाया था उन्होंने 1949, जिसमें मोस्टली इंग्लिश, शेक्सपीरियन या ब्रश प्लेस होते थे। आज भी उनके नाम से थिएटर फेस्टिवल होता है। बाकी हिंदी, बंगाली सभी फिल्मों में बहुत नाम कमाया उन्होंने, और अवार्ड्स भी, इंक्लूडिंग दैट नेशनल अवार्ड भी। बहुत कम लोग जानते हैं या उन्हें याद है कि अमिताभ बच्चन साहब की जो डेब्यू फिल्म आई थी ना सात हिंदुस्तानी, उसमें लीड रोल में ये ही थे। विलेन बन के भी आए काफी फिल्मों में, बट मुझे सबसे ज्यादा जो इनकी फिल्में पसंद आती है ना, वो है जहां इन्होंने कॉमेडी की है, जैसे कि गोलमाल, नरम गरम, रंग बिरंगी, शौकीन एंड दैट हमारी बहू अलका, ये सारी मेरी फेवरेट वाली हैं। कहते हैं कि पूरी 8 भाषाएं बोल पाते थे ये, और शेक्सपियर के ऑल 37 प्लेस उन्हें मूल जुबानी याद थे। आर्ट्स में नॉलेज और रुचि इतनी थी कि उनकी बेटी के बकौल एक बार इटली छुट्टियों में जब वो गए तो हर स्कल्पचर पर वो ऐसे टाइम स्पेंड करते थे जैसे कि पूरा दिन निकल गया है। गाइड की सर्विसेज भी ली थी, पर उस गाइड ने भी एक दिन फाइनली रियलाइज कर ही लिया कि उत्पल साहब नोज मोर देन हिम, और फिर उसने कहा कि अगर आप रेडी हैं तो गो ऑन योर ओन, वो बेहतर होगा। वेल, आर्टिस्ट हो तो ऐसा जो तन मन धन से ही नहीं, सिर्फ पढ़ाई लिखाई और नॉलेज से भी पूरी तरह कमिटेड हो, अपनी आर्ट को हर पल जीता हो, आने वाले पल में भी, जाने वाले पल में भी, है ना?

0: हाइब्रिड के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस लेक्सस आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? डॉन वैली नॉर्थ लेक्सस पर NX350 और RX350 प्रीमियम पैकेजेस इमीडिएट डिलीवरी के लिए अवेलेबल हैं। और वेलकम बैक लॉयल्टी ऑफर के साथ आप सेव कर सकते हैं थाउजेंड्स। लीज स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट $618 पर मंथ फॉर 48 मंथ्स। आज ही विजिट करें DonValleyNorthLexus.com। A proud member of Wings Auto Group.
1: August. Well, date मैंने इसलिए बताई क्योंकि जहां भले ही कुछ लोग ट्रेंड कर रहे हैं वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे, रिमाइंडिंग एवरीवन कि भाई इंसान का इंसान से हो भाईचारा, यही पैगाम हमारा। भले भले लोग देखें, वहीं काफी सारे लोग फोटोग्राफर्स डे मना रहे हैं, वर्ल्ड फोटो डे, दैट एम्ब्रेसेस अ पैशन फॉर फोटोग्राफी और उन खींची हुई तस्वीरों की एबिलिटी टू इंस्पायर ईच कम्युनिटी, और साथ में ये याद दिलाते हैं कि फोटो में कैद हो सकते हैं खूबसूरत लम्हे, हमेशा हमेशा के लिए जो चाहे दूसरों के खींचें, चाहे सेल्फी लें और चाहे जबरदस्ती कह के खिंचवाएं, पर फोटो लेकर मेक योर मोमेंट्स अलाइव फॉर एवर।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: इस बार रक्षाबंधन के पावन अवसर को बनाएं और भी ज्यादा स्टाइलिश। खरीदिए GTA में कहीं और न मिलने वाली बेहद खूबसूरत राखियाँ इंडिया सजावट एंड पूजा हट से, और आपके घर की सजावट के लिए भी बहुत कुछ मिलेगा ओनली एट इंडिया सजावट एंड पूजा हट। 31 मेलनी ड्राइव, यूनिट 5, ब्रैम्पटन। 9054586808।
2: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
3: हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है, और इस अगस्त वो आवाज गूंजेगी मिसेस सागा में। 10 से 23 अगस्त तक मिसेस सागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल 2026 लेकर आ रहा है 12 प्रोडक्शंस, 48 परफॉर्मेंसेस, ड्रामा, कॉमेडी, स्टोरी टेलिंग, पोएट्री और एक्सपेरिमेंटल थिएटर। हर शो एक नया एक्सपीरियंस। सावित्री थिएटर ग्रुप के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी लैंग्वेज और कल्चर को। टिकट्स और पूरे स्केड्यूल के लिए विजिट करें 2026.mississaugafringe.ca या कॉल करें 6476407999 पर।

फेल हो गए। पर बड़े बुजुर्ग मुझे लगता है ठीक ही कहते हैं कि अपनी दोस्ती यारी कंपनी ध्यान से चुनो, वरना कॉकटेल मॉकटेल होकर ही रह गए। तो सोचो सोचो। तुलसीदास जी की चौपाइयों में भी मुझे लगता है कई जगह ऐसा कुछ लिखा मिल जाएगा आपको, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लाइक एन उल्लेख है ना, अच्छे लोगों का, अच्छी सोच का संग हो, बोले तो सत्संग तो अपने आप इंसान को मिल ही जाता है विजडम, ऐसा कुछ। वैसे ये भी मुझे इंटरेस्टिंग ही लगता है कई बार कि मुझे काफी सारे लोग ऐसे मिले हैं जिन्हें सत्संग का मतलब मालूम क्या पता होता है, मिल बैठ के किया गया

टर किया जा सकता है, दिल में घर बनाया जा सकता है एंड अ लॉट मोर. वेल मानो तो उनकी लाइफ फ्रॉम अटैचमेंट टू अवेकनिंग टू पर्पस एंड देन टू सर्विस, हर स्टेप पर कुछ ना कुछ इंस्पायर कर सिखा जाती है. और ना मानो तो वेल ये पूरी एक इंसान की एक महज कहानी भर लगती है ना. पर एक बात तय है, इवन इफ यू अप्रोच हिज राइटिंग्स एंड लाइफ प्योरली फ्रॉम अ पोएटिक पर्सपेक्टिव कि भी एक राइटर थे अच्छे, तो भी अ टैलेंट लाइक हिम इज डेफिनेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, है ना, मानेंगे. वन ऑफ माय फेवरेट लाइंस बाय हिम इज तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, बस ये करण निक मंत्र है परिहरु वचन कठोर. इन शॉर्ट वो जो किशोरदा गा के गए ना मनपसंद फिल्म में कि लोगों का दिल अगर हाँ जीतना तुमको है तो बस मीठा मीठा बोलो. राइट.

0: you advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: Don Valley North Hyundai ke Hyundai upgrade your ride sales event ka fayda uthaye. Sirf 0.99% se financing aur saath mein 90 din tak koi payment nahi aur paye $1000 tak ka upgrade bonus bhi. Offer sirf August 31st tak hai. At Don Valley North Hyundai, we speak your language. Visit donvalleynorthhyundai.com ya Woodbine Avenue and Denison Street, Markhamper.
2: Don Valley North Hyundai,
3: a proud member of Wayne's Auto Group.
4: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑल स्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 647-453-5353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑल स्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 647-453-5353. 647-453-5353. 53 53.

कमाल का म्यूजिक था ये त्रिशूल फिल्म से. आपने गाना सुना किशोर दलाता की आवाज में खयाम साहब का. वैसे तो गजलों का काफी टच होता था उनकी म्यूजिक में, रूटेड इन इंडियन क्लासिकल आप कह सकते हैं म्यूजिक में रहता था. सोलफुल होते थे, मेलोडियस होते थे, इमोशनल होते थे, पोएट्री रिच गानों के लिए तो एक्चुअली बहुत एप्ट होते थे, लाइट एंड रिदमिक भी. पर ये काफी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक था जो सुन के लगता है कि खयाम साहब का तो नहीं था पर था उन्हीं का ही. तो कहते ना वर्सेटैलिटी भी थी, कहीं कहीं ऐसा नहीं है. ही वॉज गुड विद ऑल काइंड ऑफ म्यूजिक. आप कभी कभी का म्यूजिक सुन ले, मैं आपको चलवाऊंगी एक गाना आपके लिए भी. बट खयाम साहब की बात कर रहे थे, उनकी डेथ एनिवर्सरी तो उनके बारे में हम बात कर रहे थे. तो खयाम साहब के बारे में कहते हैं कि जब वो आए थे उन्हें बचपन से फिल्मों में कुछ करना था तो घर वालों ने सपोर्ट शुरू में नहीं किया तो भाग आए. और उसके बाद थोड़े दिन उन्होंने ट्रेनिंग ली चिश्ती साहब को, वहां जाके सुनाया उन्होंने. गुलाम अहमद चिश्ती जो थे उनको उन्होंने सुनाया, उन्होंने अपना असिस्टेंट उन्हें रख लिया. और जब उन्होंने असिस्टेंट रख लिया वहां से फिर उन्होंने थोड़ा सा काम सीखा किया और उसके बाद वो बॉम्बे आ गए. लेकिन उससे पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी उन्होंने थोड़ा सा अपने काम किया, वहां पर भी थोड़ी से अपनी करियर उनका रहा कुछ टाइम. एंड देन वेन ही केम टू बॉम्बे, वहां फिर होसलाल भगत राम जी ने उन्हें स्पॉट किया, उनसे वो मिले और उसके बात तो फिर इट वॉज नो लुकिंग बैक. जब उन्होंने फिल्मों में म्यूजिक देना शुरू किया था फुटपाथ से स्टार्ट किया था, एक्चुअली ही राजा फुटपाथ ये शुरू की उनकी स्टार्टिंग की फिल्में रही थी. और उनको लोग फिर कहने लगे माय नौशाद नाम से, उनको बहुत प्राउडली उनके बारे में बात करने लगे कि वैसा सा जॉनरा इनका म्यूजिक का रहता है. बट अगेन उनके गाने अधिकतर जो फेमस हैं वो थोड़े गजल टाइप के या क्लासिकल बेस्ड या बहुत ही सीरीन से रहते हैं, इस तरह के. जैसे मैंने अभी त्रिशूल का सुनाया और कभी कभी का मैं चलाने वाली हूँ, वो थोड़ा सा अलग पेपी म्यूजिक रहता है जो कि कम उन्होंने दिया है. एक चीज मैं और इनके बारे में पढ़ रही थी कि जब ये दुनिया से गए थे तो अपनी सारी दौलत, तो उस वक्त तकरीबन 10 करोड़ की बताते हैं, वो एक ट्रस्ट के नाम वो कर गए थे, बडिंग आर्टिस्ट को जो सपोर्ट करता है, टेक्नीशियंस को जो सपोर्ट करता है. तो एक उनके अंदर एक फिलोथ्रॉफिस्ट भी रहा है. खयाम साहब को करते हुए याद नेक्स्ट गाना फ्रॉम कभी कभी, किशोरदा की आवाज, लाइंड अप नेक्स्ट.

0: जेनेसिस माखम में लग्जरी मिलती है एक ऐसे एक्सपीरियंस के साथ जो एक्सपेक्टेशन से भी आगे हो। ब्यूटिफुली डिजाइंड 2026 GV70 या 2026 GV80 को लीज करें सिर्फ 2.4% से फॉर अप टू 39 मंथ्स। बुक योर टेस्ट ड्राइव टुडे। विजिट genesismarkham.ca, लोकेटेड एट वुडबाइन एवेन्यू एंड जॉन स्ट्रीट, मार्कम। Genesis Markham, doing luxury your way. A proud member of Vane's Auto Group.
1: And अगर आप वेट कर रहे हैं सेगमेंट नंबर्स डू वंडर्स का कुछ सवालों के साथ या कुछ टिप्स सुननी है आपको हमारे मिस्टर न्यूमरोलॉजिस्ट अनुज ओबरॉय जी से, तो बता दूं आज वो हमारे साथ किसी कारणवश नहीं जुड़ पाएंगे, पर इसी फ्राइडे, इसी हफ्ते, इस फ्राइडे को 6:15 बजे हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे। तो प्लीज अपना इंतजार थामे रखें, आपका इंतजार फ्राइडे को, इस फ्राइडे को 6:15 बजे जरूर पूरा होगा। ज्वाइन अस एट 6:15 फॉर हिज सेगमेंट नंबर्स यू वंडर्स दिस फ्राइडे फॉर दिस वीक। स्टूडियो का नंबर, चाहे ये सेगमेंट हो या वो सेगमेंट, चाहे आपकी कोई रिक्वेस्ट हो और चाहे आपको गेस द सॉन्ग में पार्टिसिपेट करना हो, वो हमेशा वही रहता है। पूछो क्या? 416-593-0055 इस नंबर को हैंडी रखें, सेव करके रखें, रट के रखें। आपको जब भी हमसे ऑन एयर बात करनी है, किसी सेगमेंट में पार्टिसिपेट करना है, कोई सवाल पूछना है, कोई रिक्वेस्ट करनी है, कोई फीडबैक देना है, किसी को कोई संदेश पहुंचाना है, ये नंबर रट के रखें।

0: अगर देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: समर ड्राइव का एक्साइटमेंट बढ़ाएं विद टंड्रा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा। आपके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए बिल्ट और फाइनेंसिंग सिर्फ 3.49% से फॉर 36 मंथ्स। बिग सिलेक्शन, बिग समर मोमेंटम। बीजीबी इन स्टॉक आपकी इलेक्ट्रिफाइंग एक्सपीरियंस के लिए। वी पे टॉप डॉलर फॉर योर ट्रेड। इट्स टाइम टू टोयोटा एट डॉन वैली नॉर्थ टोयोटा.com। लोकेटेड है 3300 स्टील्स एवेन्यू, ईस्ट मार्कम पर। A proud member of Vane's Auto Group.
2: BMK brings you the hottest South Asian festival of the year, Durham Summer Fest 2026, presented by TD Bank Group. Day 1, Mustafa Zahid on August 22nd.

0: नजर बदलो, नजारे बदल जाएंगे। आप भी अपनी जिंदगी की खूबसूरती को देखें स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ, जहां है वर्ल्ड क्लास क्वालिटी डिजाइनर सनग्लासेस, आई ग्लास फ्रेम्स एंड लार्ज सिलेक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज।
1: गेट सिलेक्टेड फ्रेम रेगुलर सिंगल विजन लेंसेज फॉर जस्ट $129, 35 रेजोल्यूशन ड्राइव ब्रैम्पटन इन वॉलमार्ट प्लाजा। कॉल 9054608888, दैट्स 9054608888।
0: सर्विंग फ्रॉम टू लोकेशंस, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस स्पेक्स एक्सप्रेस के साथ।
2: ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
3: इस रक्षाबंधन राजधानी लेकर आए हैं भाई बहन एंड ब्लेसिंग्स गिव अवे। जीतो इलेक्ट्रिक स्कूटर, प्लेस्टेशन 5, डायसन एयर रैप, निंटेंडो स्विच, रेबान मेटा ग्लासेस और भी बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस।
4: राजधानी की किसी भी लोकेशन पर विजिट करें, परचेज करें 12 से 29 अगस्त तक। QR कोड स्कैन करके अपनी इन्फो और एंट्री सबमिट करें।
3: 26 लोकेशंस अक्रॉस कनाडा।
5: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
6: Another Don Clean with the Don Ducks.
7: Oh, he's doing dishes with Dawn Platinum.
8: The only soap trusted to save wildlife affected by oil.
7: And Platinum removes up to 99% of grease and food residue, so he doesn't have to work so hard.
8: Well, flap my wings. What'll he do with all that unused elbow grease?
7: Organize the fridge, the spice rack, the junk drawer.
8: What are you quacking on about? He's gonna make enchiladas.
7: More dishes? That's giving this duck goosebumps.
6: Dawn Platinum, the better grease getter.
9: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

वेल, ये तो थी आसमां की परी की बात, पर वो एविएशन डे पर आसमां में एयरप्लेन्स की उड़ान की एक्चुअली होती है बात। पर असल जिंदगी में ना याद रखनी होती है एक ही छोटी सी बात, के घर बनानी हो अपनी पहचान, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में होती है जान। पंख से कुछ नहीं होता, क्योंकि हौसलों से होती है उड़ान। सो आसमान पर उड़ चले, चलो चलते।

0: advertise with Filmi Nukkad on CMR at 5 p.m. Your prime drive time show. Call Swati at 647-830-5042. That's 647-830-5042. It's the free time.
1: अब फायदा उठाएं ऑगस्ट के हॉट ट्रेड्स का विद अमित खुराना. 3 years fixed 3.94%, 5 years fixed 4.04%, 5 years variable 3.50%, और साथ में हॉट हॉट कैश बैक भी लें अप टू 5600 एंड आइसिंग ऑन द टॉप गिफ्ट कार्ड अप टू 1500. कॉल अमित खुराना एट 6473412785. दैट्स 6473412785. क्या आप भी एस्मा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम, कमर या घुटनों में दर्द से जूझ रहे हैं, या आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सिरोसिस जैसी किसी बीमारी से स्ट्रगल कर रहे हैं? सभी बीमारियों का जड़ से इलाज करते हैं केरला वैद्य रत्न पीवी राज फ्रॉम सहज केरला आयुर्वेदा एंड ब्रैम्पटन एंड स्कारबरो. ये सिर्फ नर्व्स देखकर ही सारी बीमारियों का इलाज जड़ी बूटियों के द्वारा करते हैं. खानदानी गुण है इनके इलाज से बहुत सारे लोगों का बहुत फायदा हुआ बताया जाता है. कॉल इन टुडे एट 6473278111 6473278111.
2: क्या आपके होम एंड ऑटो इंश्योरेंस के रिन्यूअल का टाइम आ गया है? क्या आप गुड रेट्स में एक सही कवरेज ढूंढ रहे हैं? तो कॉल सिमरन बेंस फ्रॉम ऑलस्टेट की बीसी सागर साउथ एजेंसी एट 6474535353. दो कारों और एक घर की इंश्योरेंस पर $2,029 तक की सेविंग्स कर सकते हैं. सिमरन बेंस एंड ऑलस्टेट के साथ आप हैं इन गुड हैंड्स. कॉल सिमरन बेंस एट 6474535353 6474535353. And yes, even for one car and a home, $400 to $500 की annual savings possible. Call Simran Benz 647-453-5353.
3: Hybrid के बारे में सोच रहे हैं? लेकिन क्या एक गैस Lexus आपके लिए ज्यादा सेंस बनाता है? Don Valley North Lexus पर NX350 और RX350 premium packages immediate delivery के लिए available हैं. और welcome back loyalty offer के साथ आप save कर सकते हैं thousands. Lease starting from just $618 per month for 48 months. Aaj hi visit kare DonValleyNorthLexus.com. A proud member of Wayne's Auto Group.
0: Follow us on Facebook. Filmi Nukkad, it's the free time.

0: मेनुकर्स CMR 101.3 FM पर यू आर विद स्वाति एंड पायस्विनी एंड अ क्विक रिमाइंडर, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं आफ्टर दिस शो एज वेल तो आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। हमारा हैंडल रहता है RJ Swati_Toronto, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फेसबुक या टिकटॉक या ट्विटर बोले तो एक्स या लिंक्डइन या कोई और, आप हर सोशल मीडिया पे हमसे RJ Swati_Toronto के अंडर में जुड़ सकते हैं। दैट्स माई हैंडल एट ऑल द सोशल मीडिया प्लेसेस। कई बार आप कोई विन जीतते हैं उसके बारे में बात करने, किसी स्पॉन्सर की कोई डिटेल चाहिए होती है, कोई फीडबैक देना है, और इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे कई बार मैं कुछ अलग अलग चीजें पोस्ट करती रहती हूँ, कंटेस्ट होते हैं, बहुत सारे क्विजेस चलते रहते हैं, एंड देयर इज अ डिफरेंट स्टफ जो सोशल मीडिया पे हम लोग डालते हैं, तो इट्स इन्फॉर्मेटिव, इट्स एंटरटेनिंग एंड इट्स गुड टू कनेक्ट देयर एज वेल, है ना। फैमिली है तो वहीं पे कनेक्ट होना भी अच्छा लगता है, सिर्फ 5 से 7 का इंतजार हमें रोज नहीं करना पड़ेगा एक दूसरे से मिलने के लिए, तो इट्स वेरी इजी टू स्टे कनेक्टेड थ्रू सोशल मीडिया। तो याद रखें RJ Swati_Toronto, एंड इफ यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉन्सर ऑन द शो, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस को हम करें प्रमोट, इसका फिल्मी नुक्कड़ फैमिली का स्पॉन्सरशिप्स का आप हिस्सा बनना चाहते हैं, तो प्लीज मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल पर। माई नंबर इज 6478305042, दैट 6478305042.
1: Where's the money? Where's the money? Let's dance.
2: Oh yeah.

0: देना चाहते हैं अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयां और नए आयाम, तो एडवरटाइज करें हमारे साथ ऑन फिल्मी नुक्कड़। इंटरेस्टिंग पैकेजेस अवेलेबल। 6478305042, 6478305042। विजिट filminukkad.com।
1: हर एक ग्रेट जर्नी शुरू होती है एक सही पार्टनर के साथ। वेन्स ऑटो ग्रुप में हमारे डीलरशिप्स का वाइड नेटवर्क डिवर्स कम्युनिटीज को प्राउडली सर्व करता है। एक्सपर्ट कार बाइंग गाइडेंस, प्रीमियम सर्विस और ऐसा सपोर्ट जो आपकी लैंग्वेज समझे। हर डीलरशिप का प्रॉमिस एक ही है, ट्रस्टेड केयर, कंसिस्टेंट सर्विस और कंप्लीट ऑटोमोटिव सपोर्ट। फ्रॉम फर्स्ट ड्राइव टू लाइफ टाइम केयर, वेन्स ऑटो ग्रुप इज ऑलवेज देयर। विजिट veinsautogroup.com।
2: घर कहीं भी लेना हो

0: For any information, call Sarab Sabarwal 647-864-8844. That's 647-864-8844.
1: Or visit teamsabarwal.com.
2: Your search ends here.
3: विंटर्स में हमारे व्हीकल्स थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और मेंटेनेंस मांगते हैं और उसके लिए गो टू माय मैकेनिक ऑटो एंड टायर सभी तरह की मैकेनिकल रिपेयर्स और टायर सर्विसेज के लिए अब वहाँ किसी भी ऑयल चेंज और सर्विसेज के साथ गेट अ कॉम्प्लीमेंट्री विंटर मेंटेनेंस इंस्पेक्शन गेट अ $20 ऑफ ऑन ऑल सिंथेटिक ऑयल चेंज सर्विसेज मिशलिन टायर्स के ऑथराइज डीलर है ये एंड यू कैन गेट अप टू $150 रिबेट जब आप 4 नए टायर्स खरीदते हैं इंश्योरेंस से ये डायरेक्ट डील करते हैं विजिट देयर मार्कम स्टोर एट मिडलैंड एंड स्टील्स और स्कारबरो स्टोर मिडलैंड एंड एल्समियर पर For details, visit mymechanicauto.ca.
4: हर कहानी की अपनी एक आवाज होती है और इस अगस्त वो आवाज गूंजेगी मिसेस सागा में 10 से 23 अगस्त तक मिसेस सागा मल्टीलिंगुअल फ्रिंज फेस्टिवल 2026 लेकर आ रहा है 12 प्रोडक्शंस 48 परफॉर्मेंसेस ड्रामा कॉमेडी स्टोरी टेलिंग पोएट्री और एक्सपेरिमेंटल थिएटर हर शो एक नया एक्सपीरियंस सावित्री थिएटर ग्रुप के साथ सेलिब्रेट कीजिए अपनी लैंग्वेज और कल्चर को टिकट्स और पूरे स्केड्यूल के लिए विजिट करें 2026.mississaugafringe.ca या कॉल करें 647-640-7999 पर
5: क्या आप एक रिलायबल ऑटो केयर ढूंढ रहे हैं इस सीजन तो जाएं एक्टिव ग्रीन एंड रॉस पे एट वार्डन एंड लॉरेंस वहाँ बदलवाएं अपने सीजनल टायर्स और करवाएं सभी मेक्स एंड मॉडल्स की फुल सर्विस साथ ही ले 30 पॉइंट इंस्पेक्शन फ्री मेजर टायर ब्रांड्स पर ग्रेट डील्स और फुल बॉडी रिपेयर सर्विस प्लस इंश्योरेंस कवर्ड रिपेयर्स भी पर सिर्फ वार्डन एंड लॉरेंस लोकेशन पर ही आज ही अपॉइंटमेंट लें कॉल रमेश एट 416-990-2462 एक्टिव ग्रीन एंड रॉस वे योर कार गेट्स द केयर It deserves.
6: You are tuned into CMR at 5 p.m. with RJ Swati on Filmy Nukkad. It's the free time.

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी। कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। अल्लाह रब करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मैं देते हैं मस्जिद नूरुल हरम। मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम जारी है, दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए। राबते का नंबर है 905-257-1342।

0: among plane debris in Quatra Lakes. Police in Peel region are urging potential victims of an online dating extortion scheme that come forward after a victim was allegedly extorted of $6,000 during a meetup in Brampton. Toronto Police have charged a resident after a firearm was discharged during an attempted vehicle theft in Scarborough. A large multi-vehicle collision on Highway 401 eastbound at the Highway 8 flyover in Cambridge has closed all Highway 401 eastbound lanes. A motorcyclist dead after collision with transit bus in Brampton. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
1: कनेडियन इंग्लिश एयरलाइंस वानी आपके लिए पेश कर रही थी. आप सुन रहे हैं पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 197.80 रुपये. डेबिट ई मेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के किसी भी बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट कर लीजिए. वहाँ अकाउंट नहीं है, कैश या बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पे लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 197.80 रुपये. कॉल कर लीजिए 9053060000. राजीव तलवार साहब मॉर्गेज के हवाले से हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं. उनसे आपको मुलाकात करवाएंगे. डेट कंसल्टेशन के हवाले से आयशा मुनव्वर साहब प्रोग्राम में शामिल होंगी. आईसीसी इमिग्रेशन से एमडी भाई हमारे साथ हुआ करते हैं. सफरुल मोमिन हज का जो ग्रुप है उस हवाले से कोशिश करेंगे आज आरिफ शेख साहब से भी आपकी मुलाकात करवाएं. तफसीली खबरें 7:30 और 8 बजे और लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सबको सुनने के लिए हमारे साथ रहना है. अब से 9 बजे तक मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रबीउल अव्वल का महीना जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाएं तो आपके वालिद हज़रत अब्दुल्ला इस जहां से रुखसत हो चुके थे. हज़रत अब्दुल्ला शादी के कुछ अरसे बाद एक तजारती काफिले के साथ शाम गए. वापसी पर यसरब के मकाम पर बीमार हुए और आलम जवानी में वहीं आपका इंतकाल हो गया. इनके इंतकाल के 2 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. 12 रबीउल अव्वल बरोज दो शंबा के मुताबिक 20 अगस्त 570 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत है. आपकी वालिदा आमना ने अपने बेटे की पैदाइश की खबर अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब को भेजी जो तवाफ़ काबा में मसरूफ थे. हज़रत अबू मुत्तलिब घर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा ले आए और अल्लाह ताला से हर किस्म के फितना और शर से महफूज रखने की दुआ की. अब्दुल मुत्तलिब ने आपका नाम मोहम्मद रखा. जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए तो सरजमीन अरब जो है वो सरसब्ज हो गई, शादाब हो गई, दरख्त फलों से झुक गए, मक्का में खुशहाली आ गई. इसी साल असाबुल फील का वाक़या पेश आया था जब रहा और उसके 60,000 फौजी और 13 हाथी संग्रेज़ों की बारिश से खाए हुए भुस में तब्दील हो गए थे. विलादत के वक्त कसरे शहनशाह फारस के महल के 14 किंगरे गिर पड़े थे. आतिशकदह फारस में सदियों से रोशन आग बुझ गई थी. अरबों में रिवाज था कि परवरिश के लिए कमसन बच्चों को देहात में भेज देते थे. देहातों में रहने वाली अरब औरतें साल के मुख्तलिफ हिस्सों में मक्का आती थीं. शेरखार बच्चों को परवरिश के लिए सहरा में ले जाती थीं. कबीला बनू साद बिन बकर की औरतों ने दूसरे बच्चों को गोद लिया और हज़रत हलीमा सादिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया. इब्तदाई उम्र के 4 साल आपने बनू सात में दाई हलीमा के रजात के जेर साए गुजारे. रजात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के पास आ गए. जब आप 6 साल के हुए तो आमिना अपने खामिंद के मज़ार की ज्यारत के लिए यसरब तशरीफ़ ले गई. इसी सफ़र में उम्मे ऐमन भी आपके हमराह थी. हज़रत आमिना एक माता यसरब में मुकीम रहीं. वहाँ रोज़ बरोज़ उनकी सेहत ख़राब होती रही और मक्का वापस आते वक्त सफ़र में अबवा के मकाम पर उनका इंतकाल हो गया. उम्मे यमन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का लेकर आईं और उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब के सपोर्ट कर दिया. 2 साल भी न गुजरे थे कि दादा अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो गया. दादा मरते वक्त अपने 8 साल यतीम पोते को अपने बेटे अबू तालिब के हवाले कर गए और मुतवस्सित हाल अबू तालिब की सरपरस्ती में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का फिर एक नया दौर शुरू हुआ. बाकी तफसीलात इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपको होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

0: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
1: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है, टीवी, फ्रिज, वॉशर ड्रायर, किचन रेंज हुड, माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
0: सेल तो अब चल रही है, पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
1: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
0: दैट्स वंडरफुल।
1: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
0: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
1: ऑन बोवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन appliances.ca।
2: Pride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। बारबेक्यू का असली मजा बारबेक्यू टुनाइट पर। चरगा, लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम्ब चॉप्स, अफगानी टिक्का, नेहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट। 9052680088। इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा। सहजा केरला आयुर्वेदिक हर्बल कंसल्टेशन सेंटर, जहां केरला वैद्या रत्ना पीवी राज, जो कि खानदानी वैद्य हैं, नबज देखकर जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। बेशुमार मरीज उनके हर्बल दवाओं से शफायाब हो चुके हैं। अस्थमा, एलर्जी, स्किन प्रॉब्लम्स, कमर या घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, हेयर प्रॉब्लम, गैस प्रॉब्लम, अल्सर, लेडीज प्रॉब्लम, वेट लॉस, सोरासिस और सारी ही बीमारियों का इलाज करके उनका जड़ से खात्मा करते हैं। ब्रैम्पटन और स्कारब्रो दो लोकेशन से आपको सर्व कर रहे हैं। कॉल कीजिए 6473278111। It's 6473278111।
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?
5: Jab koi baat bigad jaye.
6: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
2: Ji haan, 416-428-2165. Aisha Munawwar sahab ke rabte ka number hai. Khuda khas tha, aap karz ke bojh tale aa gaye hoon. Bilkul परेशान ना हूं, रابطہ कीजिए। मैक्सिमम कर्ज आपका माफ करवा देंगे, आसान एक साथ बनवा देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे आशा मनवर साहब, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो। हम जाएंगे आगाज में, थोड़ा सा अपनी सर्विसेज के हवाले से बताइएगा और ये भी बताइएगा कि किस तरह आप लोगों को कर्ज के बोझ से निजात दिला सकती हैं।
7: थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन एयर। आई एम आयशा मनवर। आई एम ऑफरिंग डेट सॉल्यूशंस सिंस लास्ट 25 इयर्स टू आवर कम्युनिटी। और बेताशा हमारे क्लाइंट्स जो हैं वो अब डेट फ्री हो चुके हुए और हंसी खुशी जो है वो अपनी लाइफ और अपने बिजनेसेस जो हैं उसको रन कर रहे हैं। तो हम कंज्यूमर प्रपोजल्स की सर्विसेज ऑफर करते हैं, बैंक्रप्सीज की भी सर्विसेज ऑफर करते हैं, इसके अलावा क्रेडिट काउंसलिंग सर्विसेज, लमसम प्रपोजल्स, अगर किसी का प्रपोजल्स टूट गए हैं तो उसके लिए भी आप एडवाइस के लिए कॉल कर सकते हैं। सो वी कैन एडवाइज यू कि क्या आपकी ऑप्शंस हैं। आपके एसेट्स जो हैं हम कोशिश करते हैं प्रोटेक्टेड रहें, इंटरेस्ट फ्री इंस्टॉलमेंट्स बन जाएं और लीगल एक्शन और कलेक्शन जो हैं वो रुक जाएं। All information is being kept confidential because हम आप ही की कम्युनिटी से हैं और मैं फुली अंडरस्टैंड करती हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन रिगार्ड्स टू योर फाइनेंशियल सिचुएशन इट्स नॉट ईजी टू डिस्कस विद एवरीबडी। और मैं ये सजेस्ट भी नहीं करूँगी कि आप हर एक से ये इन्फॉर्मेशन लें और गलत किस्म की एडवाइस जो है वो ले लें और बाद में उसका नुकसान हो आपको। तो ऑलवेज यू नो कंसल्ट द प्रोफेशनल्स। सो वी आर प्रोफेशनल्स और उसमें यह है कि आपको राइट एडवाइस प्रोवाइड की जाती है, दैट सूट्स यू द बेस्ट। जरूरी नहीं है कि अगर हमने आपके एक फ्रेंड को कोई सर्विस प्रोवाइड की है तो उसी सर्विस को हम आपको भी प्रोवाइड करेंगे या वो आपको सूट करती है। फर्स्ट वी हैव टू रिव्यू एंड सी आपके लिए क्या बेस्ट है, आपने किस तरह से इसमें से निकलना है, आपने फ्यूचर में किस तरह से दोबारा एस्टैब्लिश होना है और किस तरह से दोबारा क्रेडिट आपने जो है वो एस्टैब्लिश करना है, किस तरह एसेट्स प्रोटेक्ट करने हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको फर्स्ट कंसल्टेशन में प्रोवाइड करते हैं। आई टोटली एक्नॉलेज एंड ऑनर दिस थिंग दैट ऑल आवर क्लाइंट्स जो हमें कॉल करते हैं, किसी भी सोर्स से हमें कॉल कर रहे हों, चाहे वो दोस्तों ने रेफर की हो, चाहे एडवर्टीजमेंट रेडियो की हो, न्यूज़पेपर की हो, जहां से भी वो कॉल करते हैं, दे प्रेफर टू टॉक टू मी पर्सनली एंड आई हैव टू लेट यू नो कि हमारी ऑफिस से कोई मेरा ऑफिस कलीग मेरे बिहाफ पे अपॉइंटमेंट मेरी अपॉइंटमेंट्स नहीं लेता, मैं खुद पर्सनली अपने क्लाइंट्स की टेक केयर करती हूँ। तो अगर आप मुझे सेल नंबर के ऊपर टेक्स्ट कर दें, अगर आप देखते हैं कि फोन मेरा बिजी आ रहा है, तो ये you can text me and I'll get back to you and we will schedule an appointment taake aram se comfortably time deke hum aapki situation ko discuss kare aur solutions ko work out kare. And one call will make a difference to your life, that I guarantee. So my phone number is 416-428-2165. Again, it's 416-428-2165. Once you will call, that call will make a difference to your life. Thank you.
8: थैंक यू वेरी मच आशा मुनव्वर साहब, बहुत शुक्रिया आपका और अगले हफ्ते आपसे फिर बात करते हैं. नंबर नोट करें मोहतरम सामीन, 416-428-2165.
9: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. अमरीकी सदर ने जो टैरिफ कनाडा पे लगाने का ऐलान किया था लास्ट मतलब मिडनाइट पे, उसको जो है वो लागू होना था. फिर रात की खबर आई कि 3 दिन के लिए 50% जो टैरिफ है उसको 3 दिन के लिए मुअख्खर कर दिया गया है. और सदर ट्रंप ने कहा कनाडा और अमरीका के दरमियान मुआहदा तय पा गया है, तमाम दस्तावेजात को हतमी शक्ल देना बाकी है. उन्होंने कीस्टोन एक्सल पाइपलाइन जैसे बहुत अरसे से जो है उन्होंने स्लीपी जो बाइडन का ख़त्म कर दिया था, शायद वह दोबारा जिंदा हो जाए. अमरीका कनाडा के मुतद्दिद मसनूआत पर अमेरिका जो है 50% टैरिफ जो है वो आयद कर रहा था, जो अब 21 अगस्त तक मुलतवी किया गया है. वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्नी के दफ्तर ने भी इस हवाले से बयान जारी किया है और टैरिफ के मामले पर अमरीका के साथ नुमाया पेशरफ्त हुई है, तहम अभी अहम काम बाकी है. बयान में कहा गया कि उससे कई हफ्तों से तजारती मामला हल करने के लिए कनाडा के अमरीका के साथ मुज़ाकरात जारी हैं. कनेडियन प्रीमियर से भी कनेडियन प्राइम मिनिस्टर की मुलाकात हुई है और ये भी इतलात हैं कि जो अमेरिकन अल्कोहल है वो दोबारा शायद यहाँ शेल्स पे वापस आए. अगर तजारती मामला दुरुस्त होते हैं तो कुछ चीज़ें बहरहाल तो देनी पड़ती हैं और बाज़ुकात आप कुछ नहीं चाहते वो भी करना पड़ता है मुल्कों के लिए, बाज़ुकात अपनी सर्वाइवल के लिए बहुत से फैसले करने पड़ते हैं. लेकिन कनाडा ने अब जो दूसरे मालिक के साथ अपनी तजारत को बढ़ाने का जो काम शुरू किया है, मेरे ख्याल है उस कम से कम अमेरिका पर इन्हिसार ही कनाडा की तरक्की का रास होगा. 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम. मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga कनाडा में आए हर खानदान का ख्वाब होता है कि उनका एक अपना प्यारा सा घर हो या कारोबार हो, लेकिन मॉर्गेज के बढ़ते रेट्स और घरों की बढ़ती कीमतें अगर आपके ख्वाब को पूरा नहीं होने दे रही तो रॉयल फाइनेंशियल ग्रुप के शिराज हुसैन से राब्ता कीजिए। शिराज हुसैन और उनकी टीम 100 से ज्यादा लेंडर्स के साथ काम करते हैं। इनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम अपने सर्विसेज में एक्सपर्ट हैं। मॉर्गेज चाहे घर की हो या कमर्शियल, इंडस्ट्रियल, प्राइवेट या आपको चाहिए इक्विटी लाइन ऑफ लोन, पर्सनल लोन या बिजनेस लोन, 100% गारंटीड अप्रूवल। कॉल शिराज हुसैन 647-271-4147 647-271-4147
2: Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM Studios mein aapke number 416-593-0003 abhi aapne ad suna Al Khair group jo hai wo duniya ka number 1 Hajj group hai aur is saal Saudi ki taraf se behtareen unhe group ke taur pe jo hai wo award bhi diya gaya hai 30 years in ho gaye Hajj aur Umrah services ke hawale se aur proven inka record hai ab agar aap North America se jana cha rahe hain Hajj pe aur aapka Pakistani passport hai to phir aap Safrul Momin Arif Sheikh sahab aur Saad Sheikh sahab ne beeda uthaya hai वो आपके हज के लिए बेहतरीन इंतजामात में आपकी हेल्प करेंगे और मुकम्मल रहनुमाई भी देंगे। मैं आपको नंबर बता देता हूं आरिफ शेख साहब का, सफरुल मोमिन 416-678-2743 416-678-2743। खुश आमदीद कहेंगे शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम सलाम बटे साहब, आपको भी और आपके तमाम सुनने वालों की खिदमत में भी
2: बहुत शुक्रिया। अच्छा, बहुत से लोग हज पे जाना चाहते हैं, मुख्तलिफ सवालात उनके जहन में होते हैं। आप क्योंकि लगातार दो दफ़ा विद इन थ्री ईयर्स दो दफ़ा आप हज पे गए हैं, साथ भी हज पे होके आए और आपने वहाँ सारा कुछ देखा और फिर अल खैर ग्रुप से जो कि बड़ा ही पॉपुलर फर्स्ट उनको जो है इस दफ़ा अवार्ड भी दिए गए हैं, तो थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा, सफरुल मोमिन के हवाले से भी और फिर जो लोग हज पे जाना चाह रहे हैं उनका क्या तरीका, क्या प्रोसेस है, कैसे रब्ता करें।
3: एक तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, जैसा कि आपने बताया कि ये जो प्योर सर्विस है ये उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं।
2: ठीक है।
3: और जैसे कि आपने बता दिया कि अल खैर, जब मैं इस दफा हज पे गया था तो मैं अल खैर के साथ ही गया था और मैंने इनके साथ रब्ता जो है वो ऑनलाइन किया था, लेकिन लोगों की बहुत सारे कुछ और हमारे दोस्त थे उनसे भी हमने कहा चले, लेकिन उनका ये था कि जी आप ये वहां बैठे हैं, हम यहाँ पर हैं, अब अच्छे खासे पैसे हैं, वहां भेज देंगे तो ये कैसे होगा। लेकिन हमने ट्रस्ट किया, हम गए और एक बात मैं तुम्हें बता दूं कि जो सर्विसेज उन्होंने हमें बताई थी उससे ज्यादा डिलीवर किया।
2: ओके।
3: पूरे इस टूर में हम एक भी कोई ऐसी चीज नहीं ढूंढ पाए जिसमें हम ये कहें कि ये गलत है या उन्होंने वो चीज प्रोवाइड नहीं की जिसका वादा किया था।
2: ठीक है।
3: अब यहाँ पर यह है कि हमने एडिट सर्विस ये की, मैं और मेरा बेटा साथ, जैसे आपको आपने बताया, हमने कहा कि यार बाकी लोगों को भी जो कि हज पे जाना चाहते हैं हम क्यों ना ये आसानी उनके लिए भी मुहैया करते हैं। तो हम एक एक सॉर्ट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन के रोल में उनके साथ आ गए हैं। आपके आपका पैकेज भी उनके साथ बनेगा, आप उतने ही पैसे देंगे जितने उन्होंने अपने सिस्टम पे अनाउंस किए हुए हैं, हमें शामिल कर देने से कोई आपकी फीस नहीं बढ़ जाएगी। सिर्फ ये होगा कि आपके पास एक लोकल कॉन्टेक्ट मौजूद होगा, हम क्योंकि वहां से हो गया है हम आपको बता देंगे कि आपको पहले कहाँ जाना चाहिए, बाद में कहाँ जाना चाहिए और आपकी चीजों को सामने रखते हुए आपके पास कितना टाइम है, आपके साथ किस एज के लोग हैं, आपको पहले मक्का जाना है, मदीना जाना है, आपने अजीदिया कब जाना है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है क्योंकि अभी हम हो क्या है फ्रॉम वी आर इन बेटर पोजिशन टू एडवाइज एंड गाइड, तो अच्छा। वो इंशाल्लाह हम कर रहे होंगे, बाकी आगे जो अल्लाह करेगा।
2: अच्छा, एक्सक्लूसिव आप ऑथराइज इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं नॉर्थ अमेरिका के लिए, ऐसा ही। अच्छा, दूसरा आपने बताया पाकिस्तानी पासपोर्ट, इसका मतलब है कि आप क्योंकि हम ड्यूअल सिटीजन हैं तो कैनेडियन पासपोर्ट तो होता ही है लेकिन पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब क्योंकि पाकिस्तानी ड्यूअल सिटीजनशिप रख सकते हैं तो उसके लिए थ्रू पाकिस्तानी पासपोर्ट ही हज होगा, ऐसा ही है।
3: जी हाँ, इसमें यह होता है कि जो वीजा इशू होता है वो पाकिस्तान के लिए या तमाम इस्लामिक ममालिक के लिए दो प्रोग्राम होते हैं, इसको गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड प्राइवेट प्रोग्राम। ये जो पाकिस्तान का ये प्राइवेट प्रोग्राम होता है इसमें अब इस दफा उन्होंने कह दिया कि जो प्राइवेट ऑपरेटर होंगे वो मिनिमम 2000 लोगों के वीजे की फीस जमा कराएंगे तो ही उनका लाइसेंस मौजूद रहेगा।
2: सही।
3: आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, यहाँ से आप अपने कैनेडियन पासपोर्ट पर ट्रेवल करते हैं, आप यहाँ से कहीं भी जा रहे हैं, फर्ज करें अगर आपने दुबई जाना है, अबू धाबी जाना है, कतर जाना है, कहीं से भी जा रहे होंगे, अब आपको पाकिस्तान जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधा अपने पासपोर्ट पे जाएंगे, जब आप लैंड करेंगे तो आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे जाएंगे,
4: ठीक है।
3: आपका जो वीजा है वो ई वीजा होता है, वो आप तक पहुंच जाता है,
4: ठीक।
3: बहुत ही स्मूथ प्रोसेस है, बे इंतहा स्मूथ प्रोसेस है,
4: राइट।
3: आप हैरान हो जाएंगे जब ये सिलसिला शुरू होता है।
2: नंबर नोट करें 416-678-2743 साहब के रबते के नंबर। अच्छा, इसका क्या तरीके का रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, और जो इनिशियल कोई पेमेंट होती है क्या इंस्टॉलमेंट में पेमेंट दे सकते हैं?
3: पहली बात बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि अगर आप पाकिस्तान के कोटे के ऊपर अपना वीजा अप्लाई करेंगे तो आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है,
4: ठीक है।
3: वो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है, वो आप मुझे फोन करेंगे, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, वो बेतहाशा वो लिंक घूम रहा है, कहीं से भी आप ले लें। ये आपने नहीं जाना तो रजिस्ट्रेशन करवा ली हुई है तो ठीक है, अगर आपके लिए इस दफा अल्लाह ताला ने आपके लिए एक आवाज दे दिया तो आप जरूर जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करवा लें। अगर मैंने लिंक भेजा, वो लिंक भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, ए बी सी एक्स वाई जी भी लिंक भेजेगा, वो लिंक भी उसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है, रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आप किसी के साथ भी जाएं या ना भी जाएं, एटलीस्ट अपना नाम उस रजिस्ट्रेशन में डाल दें। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो छोटे मोटे मसले होते हैं उसके लिए आप रब्ता करेंगे तो हम बता देंगे, वंस यू एग्रीड कि मैं जाना चाहता हूं, हम आपको अपने पैकेजेस देंगे, आपका फुल तौर पर